सुप्रभात। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 6, तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:49 होने को हैं और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं अपनी पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए चिंतन।
1: अभ्यास का वास्तविक स्वरूप निरंतर कर्म है। कर्म की निरंतरता व्यक्ति के कौशल में वृद्धि करता है, अंततः वह व्यक्ति विजयश्री को प्राप्त होता है। अभ्यास का एक स्वरूप भय का पीछा करके उसे जीत लेना भी है। व्यक्ति को जिस काम को करने में ज्यादा घबराहट महसूस हो, उसे बार बार करने से उसकी योग्यता में वृद्धि होती है, तथा जिस काम को करने में वह असमर्थ होता है उसे भी कर डालता है। यही प्रक्रिया अभ्यास कहलाती है। जीवन में श्रेष्ठ और उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए अच्छे अंक एवं तीव्र

बुद्धि ही कारण नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत अधिक ऐसे उदाहरण हैं जो लगातार जीवन में असफल होते हैं, लेकिन वे चलना नहीं छोड़ते। वे असफलता के साथ आनंद लेते हुए निरंतर कर्म में लगे रहते हैं, ठोकर से घबराते नहीं और न ही ठहरते हैं, वे चलते रहते हैं। यही तप और सफलता की भूख उन्हें एक दिन अचानक आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। जबकि मेधा एवं योग्यता के धनी सुविधाओं से समझौते कर संघर्ष के थपेड़े नहीं सह पाते और जीवन यात्रा में आराम करने लगते हैं, इसलिए उनकी दुनिया सीमित हो जाती है। अतः असफल लोगों को कम आंकना हमारे लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। रामायण की अवधि रचना से पूर्व गोस्वामी जी ने संस्कृत में रामचरित की रचना प्रारंभ की, लेकिन पारलौकिक अस्वीकृति उनके बूढ़े शरीर के मजबूत इरादों को नहीं डिगा सका। वे निराश नहीं हुए और आगे चलकर वे अवधि भाषा में रामायण की रचना किए, जो आज तक विश्वविख्यात एवं पूजनीय धरोहर बनी हुई है। व्यक्ति का जीवन यदि पूर्ण रूप से अभ्यासमय हो जाए तो उसे अपनी कमी या भूतकाल के बारे में चिंतन का बीजा बहुमूल्य समय बच जाएगा। अधिकतर लोग इस संसार में योग्य हैं, लेकिन वे अभ्यासी नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी अधिकतर ऊर्जा एवं अत्यधिक समय अपने भूलों के बारे में सोचने और कोसने में बर्बाद चला जाता है। यदि यहाँ पर हम संयम एवं नियंत्रण सीख लें, तो हम अभ्यास के बल पर पूरी दुनिया को जीतने का मादा रखते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरियावत जाते सिल पर पड़त निशान। इस पंक्ति से यह स्पष्ट है कि जब निर्जीव एक कोमल रस्सी अपने से कठोर पत्थर को बार बार घिसकर पतला कर सकती है, तो क्या हम परेशानी को घिसकर पीछा करके उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते? क्या मानव के अच्छे इरादों से बड़ी परेशानियां ज्यादा ताकतवर होती हैं? नहीं, जरूरत है बस कर्म करने का संकल्प। कर्म ही जीवन है का उद्घोष, यही निरंतरता प्रत्येक सफलता की कुंजी है। याद रखें, आप कितने विद्वान हैं समाज इसका प्रमाण नहीं चाहता। आपके पास क्या क्या दिखाने लायक वस्तु है समाज उसे देखता है। इसलिए सफलता प्राप्त करके स्वयं को सिद्ध करें।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप चिंतन सुन रहे थे और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि सूचनाएं।
1: किसान भाइयों नमस्कार। बैगन रबी खरीफ एवं गर्मा तीनों मौसम में उगाई जाती है, यानी कि इसकी खेती तीनों मौसम में की जाती है। बैगन को लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, अत्यधिक सर्दियों में फसल में क्षति की संभावना बनी रहती है। बैगन की खेती के लिए दोमट एवं हल्की भारी मिट्टी जरूरी होती है। इसके अतिरिक्त सभी मिट्टियों में भी खेती संभव है। खेत में नमी न होने की दशा में हल्की सिंचाई करके 3-4 जुताई करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और अन्य जुताइयां कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाना जरूरी होता है। बैगन में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे लंबी बैगन, लंबा हरा सफेद, छोटा कलौंजी बैगन एवं गोल बैगन। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय मांग के आधार पर किसानों द्वारा चयन

0: किस्मों का किया जाता है। प्रमुख संकर किस्मों में पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा अनमोल, अर्क नवनीत, NDBH 1 प्रमुख है इसकी किस्में। इसके अलावा पंत बैगन, पंत सम्राट, पंत ऋतुराज, राजेंद्र बैगन 2, सोनाली, पूसा पर्पल लॉन्ग, अर्क निधि, KS 331, स्वर्ण प्रतिभा भी प्रमुख है। बैगन की खेती के लिए विभिन्न किस्मों के 500 से 700 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए आवश्यक होता है। पहले बीजों को नर्सरी में बोकर पौध तैयार की जाती है। रबी खरीफ एवं ग्रीष्म मौसम के लिए अलग अलग समय है। रबी फसल के लिए जून माह में बीजों को नर्सरी में बोया जाता है। लगभग 1-1.5 महीने बाद इसकी बुआई जुलाई के अंत में या अपने यहाँ यानी कि बिहार में अगस्त माह में भी की जाती है। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए बीज की बुआई नवंबर में की जाती है। इसी तरह खरीफ फसल के लिए बीज की बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है और पौधे तैयार किए जाते हैं। नर्सरी में तैयार 4 से 5 सप्ताह के पौधों को रबी और खरीफ में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर पर लगाना चाहिए। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधारोपण सदैव शाम के वक्त करें और इसके तुरंत बाद ही सिंचाई करनी चाहिए। बैंगन की खेती में निराई गुड़ाई बहुत आवश्यक है। इसमें जहां खरपतवार का नियंत्रण होता है वहीं पौधों की जड़ों का विकास भी अच्छा होता है। खरपतवार रहने से रोग एवं कीटों का प्रकोप बढ़ता है। बैंगन की खेती में सिंचाई का बहुत महत्व है। नमी की कमी होने पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई इस तरह से करें कि खेत में अधिक समय तक जल जमाव नहीं हो। जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है तो इसके लिए खाद और उर्वरक की ज्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि फसल लंबी समय तक खेत में रहती है। लगभग 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 3 टन बर्मी कंपोस्ट खेत की तैयारी के समय खेत में मिलाते हैं। ये मात्रा 1 हेक्टेयर खेत के लिए है। इसी समय नीम की खली, जिंक सल्फेट और बोरेक्स को भी प्रयोग करना चाहिए। कुल मिलाकर के इस तरह से उर्वरकों एवं खाद का प्रयोग करें कि 120 किलोग्राम नेत्रजन, 150 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास पौधे को प्राप्त हो जाए। बैगन के में कई तरह के रोग एवं कीड़ों का भी आक्रमण होता है। रोगों में डैम्पिंग ऑफ रोग है जो कि नर्सरी में ही होता है। इसमें बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं सूखने लगते हैं, जमीन की सतह से गिरने लगते हैं। 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग किया जा सकता है। जीवाणु उखड़ा भी होता है जिसमें पौधे बौने हो जाते हैं, पौधों का रंग पीला हो जाता है, बाद में पूरा पौधा ही मुरझा जाता है। तो बैंगन के पौधे में इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो आप समझें कि यह जीवाणु उखड़ा है। इसके लिए कुछ दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। कासुगमा माइसिन जो है वह 3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से प्रयोग करें। फल सड़न होता है और धड़ सड़न भी होता है। इसमें पौधे के फल में और धड़ों में कीड़े लग जाते हैं। इसके लिए कुछ घुलनशील दवाओं का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण का प्रयोग आप कर सकते हैं। लाल मकड़ी के द्वारा भी नुकसान होता है, इससे भी बचाव के लिए कुछ दवाओं का प्रयोग करें। तना और फल छेदक की बात हुई ही, इसके लिए भी आप दवाओं का प्रयोग करते रहें। बैंगन में उपज बहुत ज़्यादा होती है, 250 से 300 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर आपको उपज प्राप्त होती है।
1: अभी आपने कृषि सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे।

0: वो वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमरीका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए संवेद स्वर में देश वंदना।

अभी आप ये देशभक्ति गीत सुन रहे थे। भगवान कृष्ण, जिन्हें हम कान्हा, मुरली मनोहर, बांसुरी वाला भी कहते हैं, उनके नाम रूप लीला का गान भी मंगल रूप है। इनके नाम का भजन भी मधुर रस का आस्वादन करा आत्मा को तृप्त करता है।

शिव से प्राप्त सत्ज्ञान को अपनाकर ही हम अपने जीवन और संसार में संपूर्ण सुख, शांति, समृद्धि, दैवीय संपदा की पुनः स्थापना कर सकते हैं।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ।

महाराज दशरथ से मानो उनकी वाक शक्ति छीन ली है। उनके मन में एक ही विचार उमड़ घुमड़ रहा है कि जगत में चाहे उनका सुयश नष्ट हो जाए, पूर्व पुण्यों द्वारा अर्जित स्वर्ग भले ही ना मिले, बस राम किसी भी तरह उनकी आंखों से दूर ना हो। किंतु श्री राम को पिता के वचन के मर्यादा का पालन करने के लिए अपने वन गमन की बात अत्यंत तुच्छ सी लगती है। पिता से उनका अनुरोध है कि वे पुत्र स्नेह के कारण दुखी ना हों। इस पृथ्वी पर उस पुत्र का जीवन धन्य है जिसके आचरण से पिता को आनंद की प्राप्ति हो। वे पिता को धीरज बंधाते हैं कि उनकी आज्ञा का पालन कर शीघ्र ही लौट आवेंगे। उधर राम वन गमन के समाचार से अयोध्या नगरी में विषाद छा गया है। उसकी दशा ऐसी हो गई है जो जंगल की आग में झुलस गए पेड़ पौधों की होती है। जो भी ये समाचार सुनता है सिर धुनने लगता है। लोग कैकई के लिए अपशब्द कह रहे हैं, जिसने भरे पूरे घर में आग लगा दी है, जिसने पत्ते पर बैठकर पेड़ को ही काट डाला है। कभी शायद सत्य ही कहते हैं कि स्त्री के मन की गति पकड़ में नहीं आती। जैसे आग सब कुछ भस्म कर सकती है, समुद्र में सब कुछ समा सकता है, उसी प्रकार अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री क्या कुछ नहीं कर सकती।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर वाणी जयराम का था। आकाशवाणी पटना से और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य सूचनाएं।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ब्रेन स्ट्रोक और बचाव। और आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर वी के ठाकुर, जो कि पटना के जाने माने अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है
2: जी, धन्यवाद
1: जी। ये ब्रेन स्ट्रोक क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और इसका क्या किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें।
2: जरूर। ब्रेन स्ट्रोक का सीधा मतलब हुआ कि ब्रेन के किसी पार्ट में धक्का लगना, झटका लगना, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो हुआ कि हमारे ब्रेन के सर्टेन एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो गई, ये बंद हो गई, तो वो ब्रेन का जो टिश्यू है, जो ऊतक है, वो डेड हो गया। एक ये टाइप हुआ। दूसरा, ब्रेन हेमरेज।

0: हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज में ब्रेन के अंदर के नस जो बोलते हैं वो फट गई ब्लड प्रेशर के कारण या और भी कई कारण अभी हम लोग बात करेंगे। तो अगर वो नस फट गई तो वहाँ रक्त का प्रवाह होने से ब्रेन उसकी वजह से डेड हो। और एक और स्थिति होती है ब्रेन स्ट्रोक की, जब कहीं हार्ट से या कभी कभी दूसरे ऑर्गन से एक खून का थक्का जाकर अगर ब्रेन में जमा हो जाए तो इसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। इसमें बड़ा सडन लकवा और जो भी उसके लक्षण हैं वो हो जाता है। तो ये तीन तरह के उनको अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजी में इनफार्क्ट, हेमरेज और एम्बोलिज्म बोलते हैं। ये तीन प्रकार ब्रेन स्ट्रोक के।
1: तो इनका बचाव कैसे किया जा सकता है?
0: अब ये तो है कि हमेशा ये जो पुरानी बात है कि बचाव इलाज से बेहतर है। एक बार हो जाने के बाद स्ट्रोक वो काफ़ी हमारी सफरिंग हो जाती है, तो बचाव हम करें। अब बचाव के लिए जो पुरानी बातें चली आ रही हैं, खान पान, रहन सहन और केयर, मेडिकल केयर। खान पान में जो हमारी आजकल की टेंडेंसी होती जा रही है, जो जंक फूड और फ्राइड फूड, ये सबसे हमें बचना है। घर का सात्विक खाना, फ्रेश, तुरंत का बना हुआ, बासी ना हो, ये बहुत जरूरी है। और खाने में हमें फल फूल सब्जियाँ, हरी साग सब्जी और अनाज, ये सब एक प्रोपोर्शन जो बोलते हैं हम लोग, बैलेंस डाइट,
1: अच्छा
0: ये बहुत जरूरी है।
1: कुछ लोग चिकन ज़्यादा खा लेते हैं या मदिरा पान करते हैं, तो उनका क्या रहता
0: है? मदिरा पान तो स्ट्रोक को बढ़ाता है
1: जी,
0: डेफिनेटली, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चिकन की बात है, अगर ज़्यादा किसी चीज़ का अच्छा नहीं, चिकन में भी वो बात लागू होगी। अगर इन जनरल हम बात करें नॉन वेजिटेरियन खाने की, तो फिश बेस्ट है, मछली।
1: अच्छा एक प्रश्न और है यहाँ पर कि जो ब्रेन स्ट्रोक मतलब मस्तिष्क का आघात होता है
0: जी,
1: तो उसका रक्तचाप, उच्च रक्तचाप अथवा निम्न रक्तचाप या मधुमेह, इन प्रकार के रोगों से क्या संबंध है और इन प्रकार के रोगियों को कितना रहता है होने की संभावना ब्रेन स्ट्रोक?
0: अच्छा प्रश्न किया आपने। ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट लिंक्ड है। ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा ब्रेन हेमरेज का, इन्फार्क्ट का चांस बढ़ जाएगा। मधुमेह अगर है तो इसे हम कह सकते हैं कि करेला नीम चढ़ा। ब्लड प्रेशर और मधुमेह दोनों रहने से स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। और इस तरह का जो कम्बिनेशन है, जैसा आपने पहले भी किया, खान पान और ये सब में कोलेस्ट्रॉल एक इशू होती है। जब हमारे अंदर फैट ज़्यादा अगर ब्लड के अंदर बढ़ गया तो ये भी धमनियों को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है।
1: अच्छा आपने एक मुद्दा उठाया था कि ब्रेन स्ट्रोक मस्तिष्क आघात से पैरालिसिस भी होने की संभावना होती है।
0: ब्रेन के किस एरिया में स्ट्रोक हो रहा है इस पे पैरालिसिस होता है। अगर ब्रेन के एक सर्टेन एरिया में हुआ जहाँ से हमारा हाथ पैर कंट्रोल होता है तो पैरालिसिस हो जाएगा हाथ पैर का। अगर फेस का कंट्रोलिंग एरिया में हेमरेज हुआ तो फेस का हो जाएगा। आँख से संबंधित हुआ तो आँख में हो जाएगा। और कुछ ऐसे ब्रेन के पार्ट हैं जो डायरेक्ट नहीं कंट्रोल करते हैं, तो उनके अंदर में स्ट्रोक होने से पैरालिसिस नहीं होगी, अन्य लक्षण होगी।
1: तो रोगियों को कितनी संभावना रहती है कि वो इससे ठीक हो जाएं, ब्रेन स्ट्रोक से जो पैरालिसिस हुआ?
0: जैसा मैंने बताया कि गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा जो ये हो रहा है, जैसे किन्हीं को जैसे शुरुआत हो, लगे कि हमारी आवाज़ लड़खड़ा रही है, हमारे हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है, हमें एकाएक चक्कर आना शुरू हुआ, घबराहट आना शुरू हुआ, तो जहाँ भी अगर संभव हो तुरंत अस्पताल में चले जाएं, ताकि अगर स्ट्रोक नहीं होगा तो अच्छी बात है, हम खुश रहेंगे, और स्ट्रोक है तो तुरंत डॉक्टर वो सुई देते हैं एक नस में, जिसकी वजह से वो क्लॉट जो है, जो ब्लड जम गया, तुरंत क्लियर हो जाता है और विद इन मिनट्स ये आदमी का एकदम 100% वर्किंग आ सकती है। ये उन अवस्थाओं में लागू होता है जबकि ये इन्फार्क्ट की वजह से है। अब हेमरेज और अन्य कोई कारण हो तो फिर उसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए आपकी स्थिति क्या है, पेशेंट की स्थिति क्या है, उनके शरीर में कितनी इम्यूनिटी है, उनको और मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल स्थिति क्या है, उनका एज कितना है, इन बातों पे रिकवरी डिपेंडेंट होती है
1: जी। डॉक्टर वीके ठाकुर, आप हमारे स्टूडियो में आए और मस्तिष्क आघात और उससे किस प्रकार से बचाव किया जाए और संबंधित अन्य मुद्दों पर आपने चर्चा की और हमारे श्रोताओं को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद। अभी आपने स्वास्थ्य सूचनाएं सुनी। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हाल चाल। 7:15।

पर हम आपको सुनवाएंगे सूफी संगीत। सात बजकर 7:25 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नरेश मल्होत्रा का राग देसी में ख्याल गायन। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन होगा हमेशा की तरह 9:10 पर।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी सुनिएगा सुबह 10 बजे। 10:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आलोक चौबे के स्वर में भजन और मुबारक बेगम के स्वर में गजल। फिल्मी गीत आप सुनेंगे 11 बजे से। बिहार का लोक संगीत ये कार्यक्रम होगा दिन में 12 बजे। 12:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत किसलय, ये कार्यक्रम होगा दिन में 1:05 पर। फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे दिन में 1:30 पर और दोपहर 2:30 पर।

0: 2:10 पर रोजगार सूचना प्रसारित की जाएगी। युवाओं का कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 4:30 पर और मगही कार्यक्रम मागधी का प्रसारण किया जाएगा शाम 5:30 पर। ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 6:30 पर और हमारे किसान भाई खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7 बजे। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सामायिक चर्चा का समय रहेगा शाम 7:52 पर। रात्रि 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तनु गांगुली के स्वर में गीत। रात्रि 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे तनु गांगुली के स्वर में गीत और रात्रि 9:30 पर होगा राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। इस समय 6:55 होने को हैं। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: श्रूयंताम प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिदिवसीय सेशेल्स यात्रार्थम अद्य प्रातः प्रतिष्ठते। सेशेल्स देशस्य स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय दिवस समारोहे सः विशिष्टातिथि रूपेण उपस्थितः भविष्यति। 15-2000 वर्षात् अनन्तरं इयं तस्य प्रथमा सेशेल्स देशीया यात्रा भविष्यति। विदेश मंत्रालयेन सूचितं यत् भारतीय सशस्त्र सेनायाः एकं दलं भारतीय नौसेनायाः नौपोत युगलं च अस्मिन् उत्सवे सहभागं करिष्यन्ति। यात्राकाले प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोगस्य सर्वेषां पक्षाणां समीक्षां कर्तुं परस्परहितस्य क्षेत्रीयेषु अन्ताराष्ट्रियेषु च विषयेषु सविस्तर विचारणार्थं सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना

0: डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य गुजराते भारत टैक्सीति सहकारिता धृत भाटकयान सेवायाः शुभारम्भं करिष्यति। सहकारिता क्षेत्रस्य वरिष्ठाधिकारिणः विभिन्नानां संस्थानानां प्रतिनिधयः भारत टैक्सी सम्बद्धाः चतुस्सहस्राधिकाः सारथीति चालकाः च अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। आदौ अहमदाबाद, सूरत, वडोदरे इत्यादिषु गुजरातस्य चतुर्दशसु जनपदेषु अस्याः सेवायाः आरम्भः भविष्यति। आगामि मासपर्यन्तं राज्ये सर्वत्र सेवाविस्तारस्य योजना अस्ति। गृहमन्त्री अमितशाहः गतवासरे मादकद्रव्याणि विरुध्य संयुक्तसंघर्षाय आहूतवान्। सः अवदत् यत् मादकद्रव्याणां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतॄन्, यूनः, मातृशक्तिं च अस्य संघर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुम् आग्रहीतवान्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां मादकद्रव्यविषयक संयोजनकेन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीयसभां सम्बोधयन् एवम् अभ्यभाषत।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलिना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टो जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां, दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वीयोत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखंडेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपय क्षेत्रेषु च तडित्पातस्य संभावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा 16 संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः SSKM चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी

0: प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले जानेंगे इतिहास में आज का दिन के बारे में। आज है 27 जून। 27 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन छोटे व्यवसायों के आर्थिक योगदान और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही आज है हेलेन केलर दिवस। विकलांगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान कार्यकर्ता हेलेन केलर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। और आज ही है इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे यानी अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस। इस लोकप्रिय और कांटेदार फल को समर्पित यह एक अनूठा दिवस है। 1964 में आज ही के दिन भारत सरकार

ने नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक तीन मूर्ति भवन को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। और आज ही के दिन सन 2002 में G8 देशों ने परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमति व्यक्त की थी। तो श्रोताओं, जानकारियां तो अभी और भी हैं, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आज की शख्सियत हैं राहुल देव बर्मन, जिन्हें प्यार से पंचमदा कहा जाता था। उनका जन्म 27 जून सन 1939 को कोलकाता में हुआ था। पंचमदा भारतीय सिनेमा के सबसे महान और क्रांतिकारी संगीतकारों में से एक थे। दिग्गज संगीतकार एसडी बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन ने 330 से अधिक फिल्मों में संगीत दिया था। उन्होंने बॉलीवुड संगीत में रॉक, जैज और डिस्को का मिश्रण कर एक नया दौर

और शुरू किया था। पंचमदा ने मात्र 9 साल की उम्र में अपनी पहली धुन बनाई थी। बाद में इस गीत का इस्तेमाल उनके पिता ने फिल्म फंटूस में किया था। किशोर कुमार, आशा भोसले और लता मंगेशकर के साथ उनकी जोड़ी ने कई सदाबहार गीत रचे। आइए सुनते हैं उनका ही एक सुपरहिट गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हालचाल का वक्त अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए सूफी संगीत शुभा मुग्दल की आवाज में।

अभी आप शुभा मुग्दल की आवाज़ में सूफी संगीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए नरेश मल्होत्रा का राग देसी में ख्याल गायन। बिलंबित की रचना झूमरा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं मन मोरा, जबकि द्रुत की रचना एक ताल में निबद्ध है, जिसके बोल हैं बेकदी आ मिले। तबले पर इनकी संगति की है सुबोध रंजन प्रसाद ने।

0: अभी आप नरेश मल्होत्रा का राग देसी में ख्याल गायन सुन रहे थे। विलंबित की रचना झूमरा ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे मन मोरा, जबकि द्रुत की रचना एक ताल में निबद्ध थी, जिसके बोल थे बेकदिया मिले। तबले पर इनकी संगति की थी सुबोध रंजन प्रसाद ने। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल, जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा।
2: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों

0: पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफ्को और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते

0: के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना की प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमरीकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला के हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
4: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, युवराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृह मंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे

0: का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्ता ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा, मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-times champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासरा वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में 2 बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पेट्रिक हार्मिनी से बातचीत करेंगे और 2 तरफा ताउन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अलाक्वामी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। बहिरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक खास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वजीर आजम के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के मुश्तरक अजम का इरादा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित

0: शाह, इमदाद बाहमी पर मबनी पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का गुजरात के 14 बड़े शहरों में आगाज करेंगे। ये तकरीब आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनाकिद की जाएगी। जनाब शाह गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। वो बहुत से बुनियादी कामों का भी आगाज करेंगे और कुछ जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। हमारे नामा निगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी, इमदाद बाहमी शोबे के नुमाइंदगान और 4,000 से ज्यादा ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। इस तकरीब के दौरान आला तरीन कारकर्दगी की पेश करने वाले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म से मुतालिक सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 8 बड़े इमदाद बाहमी इदारों की मदद से तैयार किया है, जिनमें अमूल, इफको और नाबार्ड शामिल हैं। ये इदारा अपना कामकाज बगैर किसी कमीशन के अंजाम देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा माली फ़ायदा बराह रास्त ड्राइवर्स को जाता है। पिछले साल दिसंबर में जब भारत टैक्सी का ऑनलाइन आगाज हुआ था तो इस पर सिर्फ गुजरात में 1.5 लाख से ज़्यादा ड्राइवरों और 7 लाख से ज़्यादा सार्फिन ने इंदराज कराया था, और तभी से रोज़ाना 3,500 से ज़्यादा लोग इसके ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। ये सर्विस इब्तदाई तौर पर गुजरात के 14 बड़े शहरों में शुरू की जाएगी, जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा भी शामिल हैं, और ये सर्विस 1 महीने के अंदर अंदर पूरी रियासत में शुरू कर दी जाएगी। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: एटमी तवानाई के महकमे के सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। ये फैक्ट्री कॉपर क्लोरीन हरारती कीमियावी तसलसल पर मबनी है और जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। ये फैक्ट्री कलापक्कम में एटमी तहकीक के इंदिरा गांधी मरकज में कायम की गई है। डॉक्टर मोहंती ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई को हाइड्रोजन की तैयारी जैसी माहौल के लिए साजगार तवानाई की उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मरबूत किए जाने से तवानाई से मुतालिक एक पायदार मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस मुनफरिद अहलियत वाली न्यूक्लियाई तवानाई से कार्बन से पाक काबिल इन्हिसार बिजली फराहम होगी। देही तरक्की के वजीर जनाब शिवराज सिंह चौहान इस माह की 28 और 29 तारीख को नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस 2026 की सदारत करेंगे। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में देही तरक्की के वजरा, सभी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के सरकारी सीनियर ओहदेदार और माहिरीन मजमुई देही तरक्की पर तबादला ख्याल करेंगे और अहम प्रोग्रामों का जायजा लेंगे। नीज देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करेंगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान की क्यादत में पहली मरतबा इतने वसी पैमाने पर कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियों के तनाजुर में अमरनाथ यात्रा के रास्ते की 24 घंटे मुसलसल निगरानी की गरज से टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी का मंसूबा प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। जम्मू के हमारे नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक अनकरीब अमरनाथ यात्रा के लिए तौसी दिए गए सिक्योरिटी निज़ाम के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने इस पहल का आगाज किया। प्रोजेक्ट हॉक आई के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने यात्रा के रास्ते पर फजाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात किए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की। इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज दोपहर 5:10 से सुन सकते हैं। आप हमारे ये प्रोग्राम न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम कल सुबह 9:10 पर भी नशर किया जाएगा। ये खबरनामा आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 920 तक पहुंच गई है और तकरीबन 3,300 अफराद जख्मी हुए हैं। बचाव कारकुन राजधानी के करीब इलाके में इन जलजलों के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने वेनेजुएला में इन तबाहकुन जलजलों के बाद ऑपरेशन एमिस्ता

0: बाद शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन एमस्ताद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद और कुदरती आफात की सूरत हाल में एक राहत मिशन है, जिससे वेनेजुएला के अवाम के साथ यकानगत का इजहार होता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई के तहत भारतीय फजाइया के 2 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे कल वेनेजुएला भेजे गए थे। ये तैयारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहत का सामान लेकर गए हैं, जिनमें बचाव टीम के 41 अरकान भी हैं। वेनेजुएला के आर्जी सदर डॉल्सी रोड्रिग्ज ने जलजलों के बाद भारत की यगानगत का इतराफ़ किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के अवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे सेटा की वजह से एक नए संगे मील की तरफ बढ़ रहे हैं। लंदन में कल तिजारत से मुतालिक एक मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि बहुत से शोबों की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत एक खुशी का मौका था। ये शख्सियतें मुस्तकबिल के जबरदस्त मौकों पर यकीन रखती हैं। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों को मदऊ किया कि वो सरगर्मियों में गहराई पैदा करें, इख्तिरा को रफ्तार दें और मुश्तरका खुशहाली के लिए मजीद सरमायाकारी करें, क्योंकि सेटा से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। अमरीका ने ईरान के खिलाफ ये कहते हुए हमले किए कि ये हमले एक दिन पहले आबनाए हुरमुज में एक माल बरदार बहरी जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल व ड्रोन लॉन्च किए जाने के मकामात और साहिली राडार तंसीबात को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफियों को बताया कि अगर ईरान की जानिब से जंगबंदी माहदे के खिलाफ वर्जी की जाती है तो उसे नतीजे का सामना करना होगा। इस दौरान ईरान के फौजी तर्जुमान इब्राहिम अलफकर ने कहा कि अमरीकी हमलों के खिलाफ ईरानी कार्रवाई इस मरतबा ज्यादा तेज और फैसला कुन होगी। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में अलफकर ने कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए मुनासिब वक्त और जगह का इंतखाब करेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने देरपा अमन व सलामती के क्याम के मकसद से इसराइल और अमरीका के दरमियान अमरीकी सालिसी पर मबनी माहदे के फ्रेमवर्क का ऐलान किया है। मुजवजा समझौते में जंगबंदी और जनूबी लबनान से हिजबुल्ला दस्तों को हटाया जाना और उसके सभी हमले रोकना शामिल है। समझौते के खाके का ऐलान करते हुए जनाब रूबियो ने इस माहदे को इस्तेहकाम की बहाली की जानिब पहला कदम करार देते हुए कहा कि ये पेशरफ्त चैलेंज से भरी है, ताहम इस वक्त उतनी ही नागुजीर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने जैली हिमालयी मगरी बंगाल सिक्किम आसाम और मेघालय में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा साहिली आंध्र प्रदेश साहिली कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरला माहे और शिमाली मशरकी भारत में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक मशरकी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज शदीद गर्म लहर की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मर्दों के FIH प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन के ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाड़ी अबू बकर ने एक पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करते हुए पाकिस्तान को पहले क्वार्टर में एक गोल की सबकत दिलाई। इसके बाद भारत की तरफ से अलग अलग खिलाड़ियों ने कुल 7 गोल किए। अब कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। फीफा आलमी कप 2026 में आज सुबह मेक्सिको के गॉडलाजारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरे फहरिस्त हो गया है। ग्रुप एच के एक दूसरे मैच में फीफा आलमी कप में पहली मरतबा हिस्सा लेने वाली टीम कैबो वर्डे सऊदी अरब के साथ बगैर किसी गोल के बराबरी पर मैच खत्म करने के बाद 32 राउंड में पहुंच गई है। ये मैच अमरीका के हॉस्टन स्टेडियम में खेला गया था। इससे पहले आज अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से शिकस्त दी, जबकि मैक्सिको के टोरंटो स्टेडियम में खेले गए ग्रुप आई के एक दूसरे मैच में सेनेगल ने इराक को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ सेनेगल 32वें राउंड में दाखिल हो गया है। मर्दों के क्रिकेट में कल रात बेलफास्ट में खेले गए 2 T20 बैन अलावी मैचों की सीरीज के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। क्रिकेट के किसी भी तरह के फॉर्मेट में

0: आयरलैंड ने भारत पर यह पहली जीत हासिल की है। जीत के लिए मुकर्रर किए गए 183 रन के निशाने को हासिल करने में भारत की टीम नाकाम रही और एक और ओवर बाकी रहते हुए पूरी टीम 148 रन के स्कोर पर आउट हो गई। सीरीज का दूसरा और आखिरी 20 मैच आज खेला जाएगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शायर होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोजाना प्रताप ने वजीर खारजा जयशंकर के जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान अपने हम मनसब चो ह्योन के साथ दो तरफा बातचीत की खबर को अहमियत दी है। बातचीत के दौरान भारत और जनूबी कोरिया ने खसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को और मजबूत करने के अज़्म का इरादा किया। नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुंशियात के कंट्रोल पर विजन दस्तावेज 2026-29 और एनसीबी की सालाना रिपोर्ट 2025 का इजरा किया। इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने खसूसी तौर पर शाया किया है। रोजाना प्रताप ने 16वें भारत जापान सरबरा कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए 1 जुलाई को जापानी वज़ीर आज़म के भारत दौरे की खबर पर तवज्जो दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। और FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपके ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
4: ग्राम सभा में जानिए पंचायत की योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
3: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
4: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
3: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
4: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। बिहार पुलिस की कल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया। अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर सहमति बनी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह अधिनियम दूसरे राज्यों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की श्रेष्ठ प्रणालियों पर आधारित होगा। इसके लिए 15 राज्यों के विश्वविद्यालयों के अधिनियमों का अध्ययन कर उनकी उत्कृष्ट व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए कुलाधिपति पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप और मुख्यमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना लागू करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बाढ़, कटाव, जल जमाव, सूखा, अन्य प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत से संबंधित निर्माण कार्यों में इस योजना के श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा जोखिम कम होने के साथ ही स्थानीय श्रमिकों को गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर गांव के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। मधुबनी और दरभंगा जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से जल्द ही क्लस्टर विकास कार्यक्रम CDP शुरू किया जाएगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने मिथिला मल्टी कमोडिटी उद्यान क्लस्टर के संबंध में असेसमेंट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब विभाग CDP 2021 के तहत चयन कर कार्य शुरू करेगा। श्री सिन्हा ने बताया कि यह देश का 5वां क्लस्टर होगा। इस परियोजना से दरभंगा और मधुबनी के लगभग 20,000 किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं केला, आम, लीची और मखाना आधारित मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाने के साथ ही बागवानी विकास को नई गति मिलेगी। प्रदेश में पीने के पानी के लिए अब सतही जल को प्राथमिकता दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने भूमि जल पर निर्भरता और उसकी निकासी कम करने के उद्देश्य से यह फैसला किया है। इस संबंध में केंद्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के पहले चरण में दक्षिण पूर्व बिहार के 8 जिलों भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और कैमूर को शामिल किया गया है। इन जिलों में भूजल स्तर अपेक्षाकृत कम है। इस परियोजना पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया

0: पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित होंगी। प्रदेश के 211 नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जारी विभागीय पत्र को अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया है। विभाग के निदेशक एनके अग्रवाल ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि इससे पहले इन राजकीय महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के लिए यूजीसी के मापदंडों के अनुरूप नेट, जेआरएफ और पीएचडी की अर्हता प्राप्त सरकारी शिक्षकों की सूची प्राप्त करने के आदेश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का फैसला किया है। विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में विभाग को आवेदन न देकर प्रेस वार्ता करना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल है। श्री सिंह को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया में मनोरोग विभाग में प्राध्यापक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को दुरुस्त बनाए रखने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अगले 3 महीने तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई करने का आदेश दिया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार इस दौरान रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है। विभाग ने इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इस अवधि में 8 जिलों अररिया, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश हो सकती है। वहीं शेष हिस्सों में भी मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
1: राज्य के किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। भभुआ और डेहरी को छोड़कर ज्यादातर स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। इस अवधि में 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे तक ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक विद्युत संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा

करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। आज हेलेन केलर दिवस है। प्रतिवर्ष 27 जून को हेलेन केलर की जन्म स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थी। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विधान पार्षद सर्वेश कुमार और स्थानीय विधायक संजय गुप्ता मौजूद रहेंगे। इस बीच कल हेलेन केलर जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में परिषद और बिहार उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 25 दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संकटग्रस्त प्रजातियों की वैज्ञानिक पहचान और अधिसूचना हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि मानक संचालन प्रक्रिया को राज्य जैव विविधता बोर्डों और केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान करने और अनुशंसा करने में सहायता के लिए विकसित किया गया है। मानक परिचालन प्रक्रिया सर्वोत्तम उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्यों, क्षेत्र आधारित आकलन और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देती है। मधुबनी जिले के लदनिया थाना क्षेत्र की पुलिस ने खाजे डीह गांव के पास से मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले एक नाबालिग समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से एक देशी कट्टा और 2 कारतूस बरामद किए हैं। मुंगेर जिले के उर्दू चौक के पास वाहन जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से 269 लीटर विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया गया है। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 श्रृंखला के पहले मैच में कल आयरलैंड ने भारत को 34 रनों से हरा दिया। भारत पर आयरलैंड की यह पहली जीत है। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 19 ओवर में 148 रन पर सिमट गई। गौरतलब है कि इस मैच में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को टीम 11 में जगह नहीं मिल पाई। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 मैच कल खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सूबे में श्रेष्ठ प्रणाली आधारित नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनेगा। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, 5 से कम सदस्य होने पर अंत्योदय अन्न योजना के लिए घट सकता है अनाज आवंटन। प्रभात खबर ने मौसम की खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, 36 जिलों में सामान्य से भी कम बारिश, 2025 की तुलना में बदला मॉनसून का रुख। दैनिक भास्कर लिखता है, वेनेजुएला में भूकंप से 589 मौतें, 50,000 अब भी लापता। भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, बचाव के लिए आज का दिन अहम। राष्ट्रीय सागर ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर लिखा है, चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा। आज अखबार के शब्द हैं, बिहार के जिलों में बड़ा फेरबदल, 30 उपाधीक्षकों का हुआ तबादला। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में उच्च शिक्षा में बेहतरी और सुधार के लिए नया विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया जाएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में अब आपदा प्रबंधन कार्य में भी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। बिहार पुलिस की कल आयोजित होने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे की ओर से आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में
बारिश का पूर्वानुमान जताया।

0: अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण समेत 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी पटना दरभंगा है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

मुकद्दस कलाम अभी आप सुन रहे थे शेरो नगमा के तहत आरिफ शाहबादी का कलाम इरम फातिमा जन्नत की आवाज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जंगलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही ख़ास मौजू जिस पर हमारी ज़िंदगी मुनहसर है, जिसके वजह से हमारा एनवायरनमेंट बैलेंस रहता है, जिसके बिना ज़िंदगी शायद मुश्किल है, और जो हमारे सरे ज़मीन की जीनत है। सामईन, आज हम बात कर रहे हैं जंगल के बारे में।

0: कहने के लिए तो ये जंगल जंगल जिसे हम सिर्फ पेड़ पौधों से भरा एक जमीन समझते हैं, यकीनी तौर पर वो कई जानदारों का सहारा होता है, जिसमें रहकर कई चरिंदों परिंद खुद को महफूज समझते हैं, जिन्हें ग़िज़ाएं दस्तयाब होती हैं और रहने के असबाब। और हम इंसान अपनी मफाद के पीछे इतने मशगूल हो गए हैं कि हम जंगल को सिर्फ इसलिए साफ करने के लिए फौरी तैयार हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ पेड़ पौधे हैं। हम अपने आरामों आराइश और बेशुमार सहूलतों की खातिर जंगल में बशर करने वाले चरिंदों परिंदों को तो नज़रअंदाज करते ही हैं, साथ ही उनके इमोशंस को भी कुचल कर रख देते हैं। दोस्तों, यकीन जानिए, जंगल जंगल नहीं, वह हमारी जिंदगी है, और ये ज़मीन में मौजूद ना हो तो ना जाने कितनी फ़ज़ाई आलूदगी हो सकती है। मौसम अनबैलेंस हो सकता है, ग्लेशियर पिघलकर ख़त्म हो जाएंगे, और शायद कायनात में मौजूद हर शय बेतरतीब होना शुरू हो सकते हैं। हमें जंगलों का एहसान मंद होना चाहिए, जिसकी वजह से ज़िंदगी बातरतीब है। हम ताज़ी सांसें ले रहे हैं, और हमें जंगलों की वजह से ही बेशुमार जिस्मानी रूहानी फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। तो आज से हमें यह अकीदा लेना है कि हम जंगलों की हिफाजत में अपना नुमाया किरदार अदा करेंगे, हम जंगलों को साफ करने से गुरेज करेंगे, और जहाँ तक हो सके अपने आसपास के माहौल को साफ और शफाफ रखने के लिए, जहाँ तक मुमकिन हो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएंगे और फ़ज़ाई आलूदगी से बचने की बारहा कोशिश करते रहेंगे, और अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस को भी इसके लिए मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि जंगल सिर्फ जंगल नहीं, ये हमारे ज़मीन की जीनत है। यौमे आशूरा के मौके से पटना सिटी में मुनक्किद प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग, शामी गरीबा, आइए सुनते हैं। तकनीकी मुआवनत है अलख निरंजन सिन्हा और मृत्युंजय कुमार की, और पेशकश है मन्नान अली की।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। पेश है मुहर्रम के मौके से पटना सिटी में मुनक्किद शामे गरीबा की रिकॉर्डिंग।
2: यौमे आशूरा के मौके पर हस्ब दस्तूर कदीम इस साल भी तकिया शाहबाकर चैली टार महाराजगंज पटना सिटी में मिन जानिब अंजुमन हैदरी पटना सिटी एक मजलिस शाम गरीबा बरपा हुई। चराग गुल थे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हजारों की तादाद में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अकीदतमंदान व अदादारा ने मदलू में करबला बरहना सर खाक पर बैठे थे। हर आंख पुर नम थी, सारा माहौल अश्कबार व सोगवार था। जुलूस अलम मोहतरम जंजीर मातम करता हुआ गुजरी बाजार से शाबाखर की तकिया पहुंचा। लहू लहान मातमदारान की आमद ने गम के पुरसरार माहौल में और भी शिद्दत पैदा कर दी। उसी आलम व आहो बका में जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अथर कादमी मेरठ ने मजलिस को यूं खिताब फरमाया।
3: कुरान मजीद के सूरह मुबारक अनकबूत की आयत करीमा जिसमें खल्लाक आलम इरशाद फरमा रहा है, अहसिबन नासु अन युतरकु अन यकूलु आमन्ना, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उनको सिर्फ इस कहने की बुनियाद पर कि वो ये कहें कि हम ईमान लेके आए, हम उनको यूं ही छोड़ देंगे। वहुम ला युफ्तनून, और हम उनका इम्तिहान न लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो जितना ज्यादा ईमान का रखने वाला होता है वो उतना ज्यादा इम्तिहान देता है। जितना बड़ा मर्तबा ईमान का होता है उतना ही बड़ा मरहला इम्तिहान का भी होता है। इम्तिहान उसी का बड़ा होता है जिसके पास में ईमान का मरहला भी ज्यादा हो। इस मंजिल के ऊपर आप तारीख आदम व आलम को तलाश करें तो आपको नजर आएगा कुल्ले ईमान का बेटा, हुजूर सरवरे कायनात का नवासा, फातिमा का दिलबंद, अली का लख्त जिगर, करबला का फातेह हुसैन इब्न अली, वो कि जो इस मंजिल पर था कि उससे बुलंदोबाला कोई न था। लिहाजा इम्तिहान भी उसका इतना बड़ा हुआ कि तारीख में आज तक किसी का इतना बड़ा इम्तिहान न हुआ। आज भी दुनिया करबला के वाकये को सुनने के बाद और करबला के वाकये को पढ़ने के बाद एहसास करती है कि हुसैन इब्ने अली आपने जो इम्तिहान दिया है करबला।

0: आइए आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गई नाजरा?
1: बस यूँ ही जरा तबीयत स्वस्थ थी।
0: जिस दिन तुम ऑफिस नहीं जाती हो उस दिन अकेलेपन के एहसास से मेरा दम घुटने लगता है।
1: ये तो आपकी मोहब्बत है रजेबाज, वरना इस जमाने में सहेली को बहन जैसा प्यार कौन देता है।
0: हाँ नादरा तुम ठीक कहती हो।
1: अच्छा हुआ आप आ गई, कोई खास बात है?
0: आज दिन

0: शिल्पा जी आप आइए आइए, आज तुम ऑफिस से नहीं गई नागरी?
1: बस यही जरा तबीयत सुस्त थी। जिस दिन तुम ऑफिस नहीं जाती हो उस दिन अकेलेपन के एहसास से मेरा दम घुटने लगता है।
0: मैं तो आपकी मोहब्बत है रजेबा जी, वरना इस जमाने में शहरी को भाई जैसा प्यार कौन देता है।
1: हाँ नादरा, तुम ठीक कहती हो।
0: अच्छा हुआ आप आ गई।
1: कोई खास बात है?
0: आज टीवी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है इसलिए कह रही थी।
1: तो टीवी खोलो ना, टाइम तो हो चुका है।
0: अरे खोलती हूँ।
2: आज गांधी मैदान में जहेद के खिलाफ आयोजित जलसे में श्री आरिफ ने अपने भाषण में कहा,
3: इस हकीकत को कोई झुठला नहीं सकता कि अल्लाह ने औरत को मर्द के लिए ही पैदा किया है।
0: अरे
3: लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि मर्द उसे घर की चार दीवारी में कैद करके रख दे, अपनी हवस का शिकार बनाए और अनगिनत बच्चों की परवरिश करवाए। औरत को भी जीने का उतना ही हक है जितना कि एक मर्द को। हमें ये देखकर बहुत दुख होता है कि जहेज की रस्म आज भी हमारे समाज में आम है। जहेज जो समाज के बदन का कोड़ है, जहेज एक जहरीला नाग है जो हमारे देश की मासूम लड़कियों को डस रहा है। लेकिन इसका एहसास किसे है? इसके खिलाफ कौन नारा बुलंद करता है? कौन? मैं अपनी बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करें, स्कूलों कॉलेजों और दफ्तरों में नौकरी करें और खुद को इस काबिल बना लें कि जब कोई लड़का वाला उनसे जहेज की बात करे तो वो खुद जहेज की फरमाइश कर दें। उन्हें बता दें कि वो उनके लड़के से किसी तरह कम नहीं है, वो तालीम याफ्ता है, बरसरे रोजगार है, वो जहेज नहीं देंगी, जहेज लेंगी, जहेज लेंगी।
0: ये क्या रह गया दीदी, हंसने का मौका है?
1: हंसने का मौका जिंदगी में कभी नहीं दिया नादरा, कभी नहीं। लेकिन तुम्हारा ये नेता
0: आप सचमुच पागल हो गई रजिया, वरना ये बेटी की बातें।
1: काश काश मैं पागल हो जाती, इतना तो जरूर होता कि रोज रोज से मौत से छुटकारा पा जाती।
0: मैं समझी क्या बात है रजिया,
1: तुम मेरी समझोगी नागरा, नहीं समझोगी। मेरे मुकाबले में तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है। तुम नहीं जानती कि ये दुनिया क्या है और इस दुनिया के लोग गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते हैं। तुमने इस महान नेता की तकरीर सुन लिया ना?
0: हाँ हाँ, पर क्या हुआ? वो तो ठीक ही कह रहे थे।
1: वो क्या ठीक कहेगा नादरा, वो मक्कार है मक्कार। तुम नहीं जानती, तुम नहीं जानती।
0: ये क्या कह रही है रजिया बाजी, देश के इतने बड़े नेता को आप मक्कार कह रही है? अगर किसी ने सुन लिया तो जानती है क्या होगा?
1: अब क्या होगा नादरा, जो नहीं होना था वो तो बहुत पहले हो चुका है, अब बाकी क्या बचा है होने को।
0: ये आप क्या कह रही है रजिया बाजी, ये तो मैं जानती हूँ कि आप अब तक कुंवारी हैं और जिंदगी के दिन बस यही गुजार रही हैं। लेकिन मैं कुंवारी नहीं हूँ नागरा, मैं कुंवारी नहीं हूँ।
1: लेकिन ये हकीकत है कि मैंने अब तक शादी नहीं की।
0: रजिया बाजी होश के नहीं लीजिए, इस कदर जज्बाती न बनिए कि जज्बात के रो में आपका सब कुछ बह जाए।
1: मैं होश में हूँ नागरा, मैं जज्बात की रौ में नहीं बह रही हूँ, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ, हकीकत।
0: लेकिन मुझे यकीन नहीं आता रजिया बाजी, भला ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है?
1: आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता नादरा, ये कोई अनहोनी बात तो नहीं है। मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां इस देश में मौजूद हैं जिनकी आबरू लूट कर उन्हें हालात के सलीब पर लटका दिया गया है।
0: आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है क्या?
1: हाँ।
0: आखिर वो बदमाश कौन है जिसने आपकी जिंदगी बर्बाद की?
1: यही तुम्हारा महान नेता आरिफ।
0: और कौन? मुझे यकीन नहीं आता रजिया बाजी, ये तो औरतों का महबूब लीडर है। सिर्फ आम जलसों में ही नहीं बल्कि इससे मूल भी औरतों के हुकूम

0: की पैरवी और जहेज के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया करता है। ये सब ढोंग है, फ्रॉड है, दिखावा है। इसके पीछे भी इसका कोई ना कोई अपना मकसद जरूर होगा, वरना आज का कोई भी नेता आवाम की बेलौट की बस नहीं करता।
1: आप कमी शाहजा बिल्कुल दुरुस्त है रजिया भाटी। जब से लीडरों ने औरत के हकों की पैरवी और जहेज के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए हैं, औरतों का इस्तेहसाल और जहेज की रस्म और शिद्दत अख्तियार करने लगे। लेकिन खैर, आप आरिफ साहब के सिलसिले में कुछ कहना चाह रही थी?
0: हाँ, मैं तुम्हें अंधेरे से रोशनी मिलाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन लीडरों से कोई उम्मीद वाबस्ता रखना फजूल है। इनकी जुबान बेलगाम है, जो जी में आता है कह देते हैं पर खुद उस पर अमल नहीं करते। ये उस जमाने की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और तुम्हारा ये महान नेता मेरा क्लास फेलो था।
2: हेलो रजिया, क्या बात है? रजिया, तुम मुझसे खींची खींची क्यों रखती हो?
0: नहीं आरी, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
2: रजिया, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। रजिया, तुम खामोश क्यों हो? मेरी बातों का जवाब तो नहीं देती।
0: क्या जवाब दूँ आरी, मैं खुद कुछ लाश नहीं पाती। मैं मामले एक कलर की देखी हूँ और तुम एक अवसर की इकलौते बेटे हो। हमारा ये कभी नहीं हो सकता।
2: नहीं रजिया, नहीं, ऐसा ना कहो। मोहब्बत जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखती। इस कॉलेज में तुम्हारे अलावा बहुत सारी लड़कियां हैं जो आला घराने से ताल्लुक रखती हैं। इनमें से कई तो मुझे लिफ्ट भी देती हैं, लेकिन मेरा दिल उनकी तरफ नहीं झुकता। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह ने सिर्फ मेरे लिए तुम्हें पैदा किया है और मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। रहिए
0: रात भर सोना सकती थी। रात भर मैं आरिफ के बारे में सोचती रही थी। वो स्मार्ट है, खूबरू है, निर्दय है, मुझे चाहता है। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। वो अगर चाहता तो फरीदा से मोहब्बत कर सकता था। वो अगर चाहता तो निकट से मोहब्बत कर सकता था। शहनाज तो उस पर बुरी तरह फरेबता थी। वो खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, दौलतमंद थी, लेकिन उसने कभी शहनाज को लिफ्ट न दिया। वो कभी लड़की के पीछे ना भागा। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे चाहता है। वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। गोया मैं रात भर उसके बारे में सोचती रही और मुझे ऐसा महसूस होता रहा कि वो मेरे लिए है, मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। और मैं रफ्ता रफ्ता उसके करीब होती गई। वो मेरे करीब होता गया और फिर हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होते गए।
1: गोया आप उसके जाल में फंस गई?
0: हाँ,
1: फिर क्या हुआ?
2: हेलो रजिया।
0: हेलो आरिफ।
2: मैं कॉलेज के लान में फूलों के दरमियान तुम इस तरह बैठी हो जैसे खुशनुमा रंग वाली कोई चिट्ठी।
0: हाँ जो भी, हर वक्त तुम्हारा मूड शायराना हुआ करता है। काम की बात कभी नहीं करते। पता नहीं तुम शायराना होकर लीडर कैसे बन गए।
2: शायर, लीडर, काम की बात। बहुत खूब, बहुत खूब।
0: आरिफ, मैं एक बात सोच रही हूँ।
2: सिर्फ एक ही की?
0: मजाक ना करो आरिफ, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ।
2: क्या बात है रजिया, तुम अचानक उदास क्यों हो गई?
0: अब हमें शादी कर लेना चाहिए।
2: अरे कर लेंगे, कर लेंगे, इसमें उदास होने की क्या बात है? आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? हमने मोहब्बत की है, एक दूसरे को चाहा है, पसंद क्या है?
0: तो फिर आज ही अपनी डायरी से बात करो, मैं भी अपने घर वालों को बता देती हूँ।
2: जरूर बता दो। लेकिन आज अचानक तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आ गया? तालीम खत्म करने के बाद हम शादी करते तो हमारे हक में ज्यादा बेहतर होता।
0: अगले माह हमारा फाइनल एग्जाम है, हम एग्जाम के बाद ही शादी करेंगे।
2: अच्छा,
0: लेकिन घर वालों को बता दें ताकि वो अपने इंतजाम में लग जाए।
2: ठीक है भाई, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं आज ही अपने डैडी से बात करता हूँ।
0: आरिफ कॉलेज नहीं आया तो मुझे तस्वीर की लाहक हुई। एक अनजाना सा खौफ मुझे परेशान करने लगा। उसके कॉलेज न आने की वजह मेरी समझ में ना आई। कभी सोचती बीमार तो नहीं हो गया, कभी सोचती उसके घर वालों ने शादी से इनकार तो नहीं कर दिया, फिर सोचती अगर उसके घर वाले रजामंद ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बासलाहियत और नेक खसलतों का हामिल है, वो खुद सर है, उसके सीने में प्यार करने वाला दिल है।

0: मुझे बेहद चाहता है। वो जरूर किसी काम के तहत बाहर गया होगा, दो चार दिनों में आ जाएगा।
1: तो क्या वो नहीं आया?
0: आया
1: तो फिर क्या हुआ?
0: फिर क्या बात है यारी, कई दिनों से तुम कॉलेज ही नहीं आ रहे थे।
2: बस यूं ही, कोई खास बात नहीं थी।
0: मैं बहुत शिद्दत से तुम्हारा इंतजार कर रही थी।
2: इंतजार?
0: मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, वो तैयार हैं। मेरे वालदैन तुमसे मिलना चाहते हैं। आज शाम की चाय मेरे घर पर पियो। सुनो, माँ ने खास तौर पर ताकीद की है।
2: मुझे अफसोस है रजिया।
0: क्यों?
2: कुछ मजबूरी है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
0: मुझसे शादी नहीं कर सकती?
2: हाँ रजिया, मुझे अपना भी तो फ्यूचर देखना है। तुम्हारे फादर एक मामूली क्लर्क हैं, वो मुझे जहेज में क्या देंगे? मेरे डैडी दूसरी जगह मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं, वो लोग काफी दौलतमंद हैं।
0: गोया गोया तुम्हें भी जहेज चाहिए?
2: क्यों नहीं, मैं स्मार्ट हूँ, खूबसूरत हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरे डैडी एक ऑफिसर हैं, और आजकल तो जहेज वो ले रहे हैं जिनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं होती। क्या मैं एक रिक्शा चलाने वाले से भी क्या गुजरा हूँ?
0: एहतियात किया है। पिछले दिनों कॉलेज के फंक्शन में तुमने औरतों के बुनियादी हकूक की हमायत और जहेज के खिलाफ कितनी अच्छी तकनीक की थी। तुमने नौजवानों को जहेज के खिलाफ उकसाया था, उनसे वादा लिया था कि वो जहेज के खिलाफ काम शुरू कर दें, और अब तुम्हें।
2: देखो रजिया, ये मेरा जाती मामला है, ये जरूरी नहीं कि जो मैं कहूँ इस पर खुद भी अमल करूँ।
0: और वो अहद पैमा?
2: वो तो वक्ती था, दिलबस्तगी के लिए।
0: और मेरा कुंवारा पर?
2: बेकार की बातें न करो रजिया, वो जवानी का एक खूबसूरत खेल था जिसे हम दोनों ने मिलकर स्टेज किया था। अगर तुम अपने तुम्हारेपन का दावा कर सकती हो तो मैं भी अपने तुम्हारेपन का दावा कर सकता हूँ। इज्जत मर्द की भी हुआ करती है।
0: ऐसा न कहो आरिफ, ऐसा न कहो। औरत और मर्द की इज्जत में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा आरिफ, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आरिफ। मैं कहीं की न रह पाऊंगी, मुझ पर तरस खाओ आरिफ, मुझे तबाह होने से बचा लो आरिफ, बचा लो।
2: तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला रजिया। मैंने फैसला कर लिया है और मेरा ये फैसला अटल है, अब कभी मुझसे मिलने की कोशिश न करना।
0: मर गई, जिंदा दरगोर हो गई नादरा।
1: तो ये बात है, आपने इस सिलसिले में फिर कुछ नहीं किया रजिया बाजी?
0: क्या कर सकती थी नादरा, मैं करीब और कमजोर लड़की भला क्या कर सकती थी। और फिर हमारे समाज में हमेशा मर्दों को सुरखरु, औरत को हकीर समझा है।
1: लेकिन अब ऐसी बातें नहीं रजिया बाजी, अब समाज ने हमें बराबरी का हक दे रखा है। हम जिंदगी के हर शोबे में मर्द के शाना बशाना चल रहे हैं।
0: ये तुम्हारी खुशफहमी है नादरा, तुम नेताओं की तकरीर, अखबारात और रसाइल की बुनियाद पर ऐसी बात कर रही हो, वरना औरतों का इस्तेमाल आज भी उरूस पर है। तुम क्या समझती हो, स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में नौकरी करने वाली औरत इस्तेमाल का शिकार नहीं?
1: इनका इस्तेमाल कैसे मुमकिन है रजिया बाजी?
0: ये तो अपने अपने तौर पर महसूस करने की चीज है नादरा। मैं जिसे इस्तेमाल समझती हूँ, मुमकिन है तुम उसे कोई और नाम दे रखो।
1: जैसे?
0: मैं बताती हूँ, एक दिन मैं दफ्तर गई, उस दिन मैं गुलाबी रंग की साड़ी और ब्लाउज पहन रखा था। मैंने कोई मेकअप नहीं किया, वैसे भी मैं कभी मेकअप नहीं किया करती थी। उस दिन न जाने क्यों मेरा चेहरा कुछ निखरा निखरा सा था। दफ्तर में पहुंचने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी भूखे शेर के पिंजरे में आ गई हूँ। चपरासी से लेकर बड़ा बाबू तक मुझे भूखी निगाहों से देखते रहे और फिक्रे कसते रहे, और मैं अंदर ही अंदर खोलती रही, और जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं उठकर बॉस के चैम्बर में चली गई। मैं अंदर आ सकती हूँ सर?
3: जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्या बात है रजिया?
0: क्या आपके दफ्तर में कोई शरीफ लड़की काम नहीं कर सकती सर?
3: क्यों नहीं, बात क्या है?
0: आप अपने स्टाफ को जाकर समझा दे कि वो मुझे हर वक्त छेड़ते रहते हैं।
3: सिर्फ छेड़ते हैं ना, और तो कुछ नहीं करते।
0: ये आप क्या कह रहे हैं सर?
3: ठीक कह रहा हूँ रजिया, इसमें उनका कोई कसूर नहीं, कसूर तो तुम्हारी जवानी और खूबसूरती का है।

0: दफ्तर में काम करने वाली लड़कियों को इस तरह का कभी कोई ख्याल नहीं करना चाहिए।
1: ये आप क्या कह रहे हैं सर?
0: मैं ठीक कह रहा हूँ रफीया, अगर प्रमोशन की ख्वाहिश होगी तो कभी दफ्तर के बाहर मुझसे मिल लेना, डबल प्रमोशन दे दूंगा।
1: सभी दफ्तर का यही हाल है। अब ऐसी सूरत में हमारे देश का कोई नेता या अफसर जो खुद औरत को बिस्तर की चादर समझता है, वो अगर औरत के हकूक और उसके तहफ़ूज की बात करे तो क्या हंसी नहीं आएगी फिर?
2: हाँ रज़िया बाजी, आप ठीक ही कह रही हैं।
1: अच्छा नादरा, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई।
2: अच्छा, खुदा हाफिज़।
3: ड्राइवर जरा गाड़ी रुकना।
4: रजिया, अरे वो रजिया, अरे शहनाज तुम?
3: हाँ हाँ मैं। तुम तो अपनी सहेली को एकदम भूल ही गई, कॉलेज छोड़ने के बाद एक दिन भी याद नहीं किया। मैं तो समझ रही थी कि तुम इस शहर में नहीं हो, शादी करके कहीं और चली गई, वरना मैं तुमसे जरूर मिलती।
4: ये तुम्हारी मोहब्बत है शहनाज, वरना कहाँ मैं और कहाँ तुम।
3: बेकार की बातें न करो रजिया। अच्छा अब ये बताओ, तुम कैसी हो और तुम्हारे शौहर क्या करते हैं? अब तक कितने बच्चों की माँ बन चुकी हो तुम? माशाल्लाह, अब तो तुम्हारे बच्चे भी जवान हो गए होंगे।
4: मैंने अब तक शादी नहीं की शहनाज।
3: क्यों?
4: बस यूं ही समझ लो कि जिंदगी का सुख मेरे मुकद्दर में नहीं था। अच्छा छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ कि तुमने कहाँ शादी की और जिंदगी के दिन कैसे गुजर रहे हैं।
3: तुम आरिफ को जानती हो ना?
4: कौन आरिफ?
3: अरे वही जो हमारे क्लास फेलो थे और अब बहुत बड़े लीडर हैं।
4: हाँ, उसे भला कौन नहीं जानता, आज टीवी पर उनका प्रोग्राम देखा था।
3: वो मेरे शौहर हैं और और उन्हें बीबी बच्चों से ज्यादा अपनी सियासत प्यारी है।
4: गोया तुम उससे खुश नहीं हो?
3: छोड़ो फिर बातों को, मैं जरा जल्दी में हूँ, अगले हफ्ते मेरी बेटी परवीन की शादी है। अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। ये लो कार्ड, शादी में जरूर आना, अगर नहीं आओगी ना तो मैं समझूंगी कि तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है और नहीं तुम मुझे अपनी सहेली समझती ही हो।
4: ऐसा न कहो शहनाज, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
3: कोशिश नहीं, वादा करो।
4: अच्छा बाबा, वादा करती हूँ, जरूर आऊंगी।
3: ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। बाय बाय।
4: बाय बाय शहनाज। गोया आरिफ ने शहनाज से शादी की थी और अब शहनाज उससे खुश नहीं है। आरिफ को बीवी बच्चों से ज्यादा सियासत प्यारी है। उसने सिर्फ दौलत के खातिर शहनाज से शादी की थी और जब दौलत मिल गई तो बीवी बच्चे चूल्हे में जाए, क्या फर्क पड़ता है लालची कमीना।
3: आओ रजिया, बहुत देर करती तुमने, मैं तो नाउम्मीद हो गई थी। सोच रही थी कि सब मेहमान आ गए हैं पर रजिया अब तक नहीं आई, वो नहीं आएगी क्या?
4: जब वादा कर लिया था तो आने ही था शहनाज। अच्छा सुनो, बारात आ गई क्या?
3: अभी नहीं, बस आती ही होगी।
4: परवीन कहाँ है?
3: अपने कमरे में सहेलियों के साथ बैठी है, चलो मैं तुम्हें उससे मिलाती हूँ।
4: चलो
3: परवीन, इनसे मिलो, ये है तुम्हारी आंटी रजिया, मेरी बहुत पुरानी सहेली।
5: हेलो आंटी।
4: हेलो परवीन।
5: आप इसी शहर में रहती हैं क्या रजिया आंटी? मैं मम्मी की सभी सहेलियों को जानती हूँ लेकिन आपको पहली बार देख रही हूँ।
4: रहती तो इसी शहर में हूँ परवीन, लेकिन मैं ये समझ रही थी कि शहनाज इस शहर में नहीं है, वरना जरूर मिलती।
5: अब आप बराबर आया कीजिएगा ना आंटी।
4: हाँ हाँ जरूर आया करूँगी।
3: चलो रजिया, हम हॉल में चलते हैं।
4: आरिफ कहाँ है, नजर नहीं आ रहे?
3: अपने दोस्तों के दरमियान बैठे शराब पी रहे हैं।
4: शराब?
3: हाँ हाँ शराब, शराब उनके लिए हराम नहीं है।
4: मेरा मतलब हराम हलाल से नहीं है, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि उनकी बेटी की बारात आने वाली है और वो इत्मीनान के साथ शराब पी रहे।
3: सच पूछो रजिया, तो मैंने आरिफ से शादी करके अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मुझसे ज्यादा सुखी तो मेरे घर की नौकरानी है जो अक्सर

0: है अपने शौहर की मोहब्बत वफादारी के किस्से सुनाया करती है और उसके गुण गाया करती है।
1: भाई अब शराब नोशी बंद, अब हम सब पंडाल में चलेंगे, बारात के आने का वक्त हो गया है। अरे रजिया तुम यहाँ कैसे आ गई?
0: मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ, ये तो मेरी खुशनसीबी है। क्या तुम इसी शहर में हो? मुझे तो पता ही नहीं था, वरना तुमसे जरूर मिला होता। इंस्पेक्टर।
2: यस सर।
1: कोठी को चारों तरफ से घेर लो।
2: यस सर।
1: मिस्टर आरिफ, आपको गिरफ्तार किया जाता है।
3: मुझे?
1: जी हाँ आपको। ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड और ये आपका वारंट।
3: K.N. गुप्ता, CBI ऑफिसर। मिस्टर गुप्ता, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा जुर्म क्या है?
1: बेशक। आपके खिलाफ ये रिपोर्ट है कि आपने मुल्क और कौम को लूटकर बेशुमार दौलत जमा किया है और अब आप अपनी बेटी को जहेज में इस काले धन से खरीदकर इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड फ्रिज, हीरे जवाहरात के जेवर और दिगर बेशुमार एशिया दे रहे हैं। क्या ये संगीन जुर्म नहीं? जबकि आप खुद बहुत बड़े लीडर हैं, आपको एक मिसाली आदमी होना चाहिए था।
3: मिसाली आदमी, बहुत हो। मिस्टर गुप्ता, क्या आप जानते नहीं कि मैं खानदानी दौलतमंद हूँ? मेरे फादर बहुत बड़े ऑफिसर थे और मेरे फादर इन लॉ बहुत बड़े बिजनेसमैन। और ये कि मेरे खिलाफ ये गलत रिपोर्ट मेरे मुखालिफ ग्रुप का एक हथकंडा भी तो हो सकता है, ताकि मैं बदनाम होकर अवाम की निगाहों से गिर जाऊं और वो अपना उल्लू सीधा करें।
1: मिस्टर आरिफ, आप एक सियासतदान हैं, मुल्क के खास रुकन। क्या आप इतना भी नहीं जानते कि CBI डिपार्टमेंट जब तक मुकम्मल छानबीन नहीं कर लेता कहीं छापा नहीं मारता? आपकी कोठी चारों तरफ से घेर ली गई है, अब आप अपनी सफाई कोर्ट में पेश करेंगे। इंस्पेक्टर, आरिफ साहब को वैन में ले चलो और घर के सारे सामान को सीज कर लो।
2: ओके सर, चलिए मिस्टर आरिफ साहब।
3: देखिए मिस्टर गुप्ता, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, आज शादी हो जाने दीजिए, कल मैं खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा।
1: मुझे अफसोस है मिस्टर आरिफ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता।
3: ऐसा न कहिए मिस्टर गुप्ता, ऐसा न कहिए, मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए, प्लीज मिस्टर गुप्ता, प्लीज।
4: आरिफ, ये मैं क्या सुन रही हूँ?
3: तुमने जो कुछ भी सुना है ठीक ही सुना है शहनाज, मैं अरेस्ट कर लिया गया हूँ।
4: नहीं आरिफ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता।
5: क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? आखिर बात क्या है?
4: तुम्हारे डैडी अरेस्ट हो गए। परवीन, अरेस्ट?
5: अरेस्ट? लेकिन क्यों?
0: ब्लैक मनी के जुर्म में।
5: ब्लैक मनी? ये आप क्या कर रही हैं रजिया आंटी?
0: हाँ परवीन, ब्लैक मनी।
5: नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप कह दीजिए डैडी, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है डैडी, ये सब झूठ है।
3: ठीक हो जाएगा परवीन, ठीक हो जाएगा, नहीं रो बेटी।
6: अरे बात क्या है, ये घर मातम खुदा क्यों बना है भाई?
4: हम लूट गए भाई साहब, बर्बाद हो गए। पुलिस ने आरिफ को अरेस्ट करके जहेज के सारे सामान को सीज कर लिया है।
6: सामान सीज कर लिया? लेकिन क्यों?
4: ब्लैक मनी के जुर्म में।
6: तो ये बात है भाई, बारात वापस ले चलो, ये शादी नहीं होगी।
4: ऐसा ना कहिए,
6: जहेज के अंदर शादी कैसे कर सकते हैं?
4: ऐसा ना कहिए भाई साहब, ऐसा ना कहिए। बारात लौट गई तो हमारी नाक कट जाएगी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी भाई साहब।
6: गोया मैं आपकी बेटी के लिए अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं? आखिर मेरा बेटा भी अफसर है। क्यों आरिफ साहब, ठीक कह रहा हूँ ना?
3: मैं आपके जोड़ता हूँ ताहिर साहब, प्लीज शादी हो जाने दीजिए, मैं बाद में लिस्ट के मुताबिक सारा सामान दे दूंगा।
6: लिस्ट के मुताबिक? मिस्टर आरिफ, आप अपनी जबान बंद कीजिए, इतनी जिल्लत उठाने के बाद भी आपके होश ठिकाने नहीं आए, आप फिर मुझे जहेज का लालच दे रहे हैं? आरिफ साहब, मैं आपकी तरह जहेज के खिलाफ लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि जहेज कितनी बड़ी लाइन

0: है और इस जहेज ने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं। लेकिन मैं आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैंने कभी आपसे जहेज की फरमाइश नहीं की आरिफ साहब। मैं गरीब आदमी जरूर हूँ लेकिन लालची नहीं हूँ। मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद है, मेरे लिए एक काफी है। ये शादी होगी, अभी होगी और इसी वक्त होगी।
1: अदाब भाईजान। अरे
0: रजिया, तुम घर क्यों नहीं आई? अम्मा और तुम्हारी भाभी तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई। अब्बा भी तुम्हें याद कर रहे थे, इन दिनों काफी बीमार है। ननद और भावत का झगड़ा तो मशहूर है भाई, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम घर ही छोड़ दो और माँ बाप भाई बहन सबको भूल जाओ। सुनो, दुल्हन को साथ लेकर तुम हमारे साथ घर चलो, समझे? अरे साहब, ये मेरी छोटी बहन रसिया है, इसी शहर में रहती है। अच्छा भाई चलो, निकाह का इंतजाम करो।
2: आप सुन रहे थे ड्रामा समाज के दुश्मन। तहरीर थी नवेद हाशमी की और पेशकश थी जमालुद्दीन साहिल की। सामीन हजरात, हमारे स्टूडियो की घड़ी ने इशारा दे दिया है प्रोग्राम को आज यहीं अख्तिताम पसीर करने का। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने मुतय्यन वक्त पर आपके पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम अंजुमन के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिए यहीं इजाज़त। खुदा हाफिज़।

उर्दू प्रोग्राम अंजुमन अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म बॉर्डर 2 का ये गीत सोनू निगम की आवाज़ में। मनोज मुतंसिर की रचना है, संगीत दिया है मिथुन ने।

0: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी। कार्यक्रम का शेष गीत हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: बागी फोर, इस फिल्म का गीत सुनिए स्टेबिन बेन की आवाज में। समीर अनजान की रचना है, संगीत दिया है सिद्धांत मिश्रा ने।

धड़क टू इस फिल्म का गीत सुनिए विशाल मिश्रा की आवाज़ में। रश्मि विराग की रचना है, संगीत दिया है जावेद मोहसिन ने।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म सभी का ये गीत जुबिन नौटियाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में। रश्मि विराग के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है जावेद मोहसिन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसमंजरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आलोक चौबे के स्वर में भजन और मुबारक बेगम के स्वर में गजल। पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में पहले सुनिए आलोक चौबे के स्वर में भजन।

आकाशवाणी पटना से अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में आलोक चौबे के स्वर में भजन सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मुबारक बेगम के स्वर में गजल।

मुबारक बेगम के गाए इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म रिफ्यूजी का ये गीत सोनू निगम और अलका याज्ञिक की आवाज़ों में। जावेद अख्तर की रचना है, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

विजय पथ इस फिल्म का गीत सुनिए कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। फैज अनवर के लिखे इस गीत को संगीत से पिरोया है अनु मलिक ने।

मोहरा। अब आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना है, संगीत दिया है बिजू शाह ने।

सिर्फ तुम। अब आइए उदित नारायण को सुनते हैं इस फिल्म में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

आकाशवाणी पटना से सिलसिला जारी है कर्ण प्रिय गानों का। 1942 अ लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत आइए अब सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में।

इसी के साथ बिहार का लोक फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483 दशम

0: लबिक, मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 12 बजने को हैं। एक अंतराल के बाद सुनेंगे बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको मगही भाषा के लोकगीत सुनवा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए आरती माला के गाए कुछ लोकगीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदकाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: अभी आपने बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में रोशन कुमार शर्मा और साथियों के गाए लोक गीतों का आनंद लिया। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी

0: समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो रहे हैं। आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राजभासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
3: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आए तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक

0: सीमेंट है उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज़ करते हैं। और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर ला करके और बिहार पर हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है। चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन बने, घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
3: नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम नारी जगत में। ये वो कार्यक्रम है जिसमें नारी अपने लिए समय बचाना सीखती है। उनकी जिंदगी सिर्फ कुछ रिश्तों के इर्द गिर्द न घूमकर उन पर भी टिकी होती है, उन्हें ये बतलाती है कैसे नए नए हुनर सीखकर वो अपनी पहचान बना पाती है। ये सब वो यहाँ सीखती है, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम है नारी जगत, क्योंकि यह उनकी दुनिया है। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त रानू सिंह। सखियों, पिछली बार मैंने आपसे जिक्र किया था ना अपने शौक को जिंदा रखने की, आज एक ऐसे शौक के बारे में आपसे बातें करने जा रही हूँ जिसे अमूमन मर्दों के शौक से जोड़ दिया जाता है, लेकिन शौक कुछ भी हो, किसी के भी हो सकते हैं। अब फोटोग्राफी के शौक को ही ले लीजिए, लोगों को लगता है कि महिलाएं फोटो खिंचवाने में माहिर होती हैं, उन्हें फोटो खींचने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन ये गलत है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें फोटोग्राफी का शौक होता है, वो हर पल को यादगार बनाना चाहती भी हैं और ये जानती भी हैं कि उन पलों को कैसे यादगार बनाया जा सकता है। एक फोटोग्राफर सिर्फ फोटो क्लिक नहीं करता, बल्कि वो एक इमोशन को एक तस्वीर में कैद कर लेता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम इन तस्वीरों में खुद के साथ हुए बदलाव को देखते हैं। तस्वीर हर पल को भाव को दिखाता है, भूख से तड़पते बच्चे की छटपटाहट को दिखाता है, प्रकृति की खूबसूरती को दिखाता है और कभी कभी उन दर्दनाक मंजर को दिखाता है जो हमारी आत्मा को झकझोर देती है। तस्वीर को जीवित करने की कला फोटोग्राफर में होती है। पेड़ पौधे पहाड़ की तस्वीर तो सब खींच लेते हैं, पर कैसे पेड़ घनी धूप में छांव का सहारा बनता है ये एक फोटोग्राफर तय करता है। आपके पास DSLR है या नहीं, पर आपकी नजरें अगर किसी पल में छिपे इमोशंस को ढूंढकर उसे कैद कर लेती है तो ये काफी है। तो अगर आपके अंदर ये हुनर है तो इसे और निखारिए। और इसी बात पर सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सनम तेरी कसम का ये गाना अभी हम नीति मोहन की आवाज में सुन रहे थे। इसी के साथ आइए अब सुनते हैं हेलेन केलर की 146वीं जयंती पर डॉक्टर नवल किशोर शर्मा से आकाश की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश। श्रोताओं, दृष्टि कुदरत की दी हुई अनमोल नेमत है। यह एक ऐसा उपहार है जिसके बिना जीवन अंधकारमय हो जाता है। लेकिन यह भी सच है कि भारत में लाखों लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह दृष्टिहीन हैं, और यही संख्या विश्व के स्तर पर करोड़ों में पहुंच जाती है। दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में एक आम इंसान की तुलना में चुनौतियां कहीं अधिक होती हैं। लेकिन यह भी सच है कि जिंदगी हौसलों के दम पर जी जाती है और आपका नजरिया ही हौसलों की नींव होता है। हमारे जीवन में नजर के साथ साथ नजरिए का भी अहम भूमिका होता है, और ऐसी ही शख्सियत रही हेलेन केलर, जिन्होंने दृष्टि बाधित होने के बावजूद अपने नजरिए अपने हौसलों का लोहा मनवाया और दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इसी कारण से हर साल 27 जून को पूरे विश्व में हेलेन केलर की जन्म जयंती मनाई जाती है, और इस बार उनकी 146वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विशेष चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर नवल किशोर शर्मा, जो बिहार नेत्रहीन परिषद पटना के महासचिव हैं और करीब 40 वर्षों से दिव्यांगता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर नवल किशोर शर्मा जी राज्य निधि के नामित सदस्य भी हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम।

0: धन्यवाद।
1: सर, सबसे पहले हमारा सवाल होगा कि हेलेन केलर, जिनकी जन्म जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है, जो दिव्यांगों के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं, उनका व्यक्तित्व क्यों प्रेरणादायी है?
0: कुमारी हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका में एस्कुम्बिया के निकट एलबामा में हुआ था, और वो प्रेरणा स्रोत इसलिए है कि दृष्टि दिव्यांग होने के बावजूद, मुखबधिर होने के बावजूद, उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण किया और 12 से अधिक पुस्तकों की रचना भी उन्होंने की। तो जन्म से वो दिव्यांग नहीं थी, किंतु लगभग जब वो 19-20 महीने की थी उसमें टाइफाइड की बीमारी हुई और उसी से उनकी दृष्टि जाती रही और सुनने और बोलने की क्षमता भी उनकी जाती रही। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी उनके जीवन में। उनके परिवार के लोग काफी चिंतित हुए, लेकिन उनके पिताजी सेना के कन्फेडरेट कैप्टन थे और कालांतर में बाद में उन्होंने एक प्रेस में एक पत्रकारिता का काम संभाला और वो एडिटर बने, संपादक बने। तो उनका परिवार तो कुछ पढ़ा लिखा जरूर था, इससे ही वे आगे बढ़ सके, जिससे कि उन्होंने सोचा कि कैसे अब इस दृष्टि दिव्यांग बच्ची का कल्याण हो। इसलिए उन्होंने पर्किंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि एक अच्छी शिक्षिका की कोई उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि हम लोग इसके जीवन को संवार सकें, सुधार सकें और ये भी एक सफल नागरिक के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो यह एक बहुत बड़ी बात थी कि विकलांगता दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने और उच्च शिक्षा ग्रहण किया और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इन सारी भाषाओं में उन्हें महारत हासिल था और उन्होंने न केवल अमेरिका के विभिन्न शहरों में बल्कि विश्व के अनेक देशों में यात्रा भी की शिक्षा प्राप्ति करने के बाद। और वो भारत भी आई थी 1955 ईस्वी में। उसमें यहाँ की दशा जो दिव्यांगों की थी उसे देखकर वो काफी चिंतित हुई और उन्होंने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए थे।
1: सर, जैसा कि हम जानते हैं, हेलेन केलर दिव्यांग अधिकारों की पक्षधर रही, वे समर्थक रही और उनका जीवन हमें सिखाता है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता को परिभाषित नहीं करती। इसे आप किस रूप में देखते हैं?
0: सही है, उन्होंने अपने भ्रमण के क्रम में जो अनुभव उन्हें हुए उस क्रम में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है जो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, शायद आप लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो सकता है। उन्होंने कहा कि दृष्टिहीन होना उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बड़ी समस्या कोई व्यक्ति लक्ष्यहीन अगर है तो वो उसकी समस्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित जो नहीं करता वो सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि दिव्यांगता या दृष्टिहीनता ऐसी समस्या नहीं है जैसी समस्या हो सकती है अगर आपने लक्ष्य जीवन का निर्धारित नहीं किया। तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि जीवन, कोई भी दिव्यांग हो या सामान्य व्यक्ति हो, अगर जीवन में कोई व्यक्ति लक्ष्य अपना निर्धारित नहीं करे, उद्देश्य निर्धारित नहीं करे कि मुझे क्या करना है, तो वो कुछ भी रहे, साकलांग रहे, दिव्यांग रहे, वो सफल नहीं हो सकता तब तक जब तक कि वह लक्ष्य निर्धारित नहीं करे। और उन्होंने लक्ष्य अपना निर्धारित किया और उनकी शिक्षिका ने उनका सही मार्गदर्शन किया, मिस मैन्सफील्ड सलीवन उनकी शिक्षिका का नाम था, और लक्ष्य निर्धारित करने के साथ शिक्षिका के सही मार्गदर्शन के कारण वो जीवन में इतना सफल हुई। ये तो मानना ही पड़ेगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। उन्होंने कर्म ऐसा करके दिखलाया।
1: जी बिल्कुल। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे भारतीय समाज में दिव्यांगों के लिए क्या सुविधाएं हैं और आप उसे किस रूप में देखते हैं?
0: आज हम सभी दिव्यांगों के लिए सरकार का काफी सकारात्मक सोच है और आपको यह जानकर खुशी होगी, कानून तो पहले भी कुछ बने थे, 1995 में भी एक कानून बना था हम लोगों से संबंधित, समान अधिकार सहभागिता अधिनियम, लेकिन जो कानून 2016 ईस्वी में भारत सरकार ने बनाया और 2017 ईस्वी में बिहार सरकार ने बनाया, उस कानून से ज्यादा हम लोग को सहूलियत हो रही है, क्योंकि उसमें नौकरियों में 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया दिव्यांगजनों के लिए, शिक्षा में विशेष सुविधाओं की चर्चा उसमें की गई, आवास की विशेष सुविधाओं की चर्चा की गई, और ऐसा सरकार ने अनुभव किया कि इन्हें समान रूप से अधिकार और अवसर देने के लिए उस एक्ट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर चीफ कमिश्नर डिजेबिलिटी, दिव्यांगों की मामला को देखने के लिए, समस्याओं को देखने के लिए मुख्य आयुक्त राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य आयुक्त दिव्यांग की समस्याओं को देखने के लिए।

0: सख्तता आयुक्त राज्य स्तर पर नियुक्त करने का प्रावधान है। और यह जानकर आपको खुशी होगी कि जो आयुक्त नियुक्त होते हैं हम लोगों के लिए राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार प्राप्त है, यानी उनका जजमेंट को कोई चुनौती अगर दे तो उसे हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो एक दिव्यांग व्यक्ति को सिविल कोर्ट में भी कोई केस लड़ना पड़े, मुकदमा लड़ना पड़े, कोई वाद डालना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि कितना रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि वहाँ एक आवेदन देने से ही उन्हें न्याय मिल सकता है। तो ये उस एक्ट की बहुत सारी खूबियां हैं जिससे कि समाज में हम अपना स्थान बना रहे हैं और हमें अवसर, अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो रहा है।
1: जी बिल्कुल सर, हमारा अगला सवाल आपसे होगा, समाज दिव्यांगों के लिए क्या कर रहा है, समय के साथ समाज के नजरिए में दिव्यांगों के प्रति क्या कुछ फर्क आया है?
0: देखिए, सामाजिक सोच में भी काफी आजकल बदलाव आया है, क्योंकि शिक्षा का स्तर पहले की तुलना में बढ़ रहा है, ज्यादा लोग साक्षर हो रहे हैं, ज्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं, वे इस बात को समझने लगे हैं कि दिव्यांग जन भी समाज का ही एक अभिन्न अंग है, ऐसा है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिसे पहले दूसरे नजरिए से देखा जाता था। लोग बोलते थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे ज्यादातर, वे बोलते थे नैन नहीं तो चैन नहीं, आज ऐसा नहीं बोल सकते, इसलिए कि आपके पास दृष्टि हो या ना हो, पैर हाथ हो या ना हो, आप बोलने में सक्षम हो या ना हो, आप का मस्तिष्क अगर सही है तो आप विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। और ये बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि आज की तिथि में पूरे देश में और अपने बिहार में भी कई लोग हैं जो प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां प्राप्त कर अपनी एक पहचान बना रहे हैं। तो इससे सामाजिक सोच में आज काफी बदलाव आया है दिव्यांगों के बारे में, जो कि पहले ऐसा नहीं लोग मानते थे कि ये हर क्षेत्र में सफल होंगे, लेकिन आज यह प्रमाणित हो चुका है कि जीवन के प्रायः हर क्षेत्र में दिव्यांगजन सफल हो रहे हैं। फिल्मी दुनिया में आप रविंद्र जैन का नाम आप सुने ही होंगे, बिहार के सीताराम सिंह का नाम सुना गया होगा, ऐसे अनेक लोग हैं, अगर उतने नामों को हम गिनाएंगे तो शायद उतना वक्त भी आपके पास ना हो। हर क्षेत्र में आज दिव्यांगजन सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: सामाजिक सोच में काफी बदलाव आया है।
1: जी बिल्कुल, आप जैसा कि बता रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र ऐसा अब अछूता नहीं रह गया है जहां दिव्यांग अपनी पहचान ना बना रहे हो, चाहे वह क्षेत्र खेल का हो, चाहे फिल्मी दुनिया का हो, चाहे संगीत का हो, हर क्षेत्र में दिव्यांग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, यह समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भी है। सर, आपसे आखिरी सवाल होगा, आप समाज के दिव्यांगों के साथ साथ सामान्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जो दिव्यांगजनों के विशेष रूप से जो अभिभावक गण हैं या सामान्य लोग हैं, उन्हें हम ये कहना चाहेंगे, उन्हें किसी भी दृष्टि से दिव्यांगजनों को, बच्चों को कम न समझें, उन्हें समान अवसर, जैसे सामान्य बच्चों को वो समान अवसर देते हैं, वैसा अवसर इन्हें भी वो दे। सरकार तो अवसर हमें दे ही रही है, लेकिन जब तक अभिभावकों के सोच में, सामान्य जनों के सोच में बदलाव नहीं होगा, तब तक हमारी स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं होगा। तो अगर वो समान अवसर दे, मैं यह मानता हूँ कि वो हर दृष्टि से सफल होंगे और परिवार को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना समुचित योगदान वो देंगे। इसलिए उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए, मेरे जैसे अनेक लोग जो इस समाज में कुछ न कुछ अपनी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं, वैसे लोगों से उन्हें प्रेरणा लेकर और दिव्यांग बच्चे बच्चियां जो भी हमारे समाज में हैं, उन्हें उचित अवसर दें तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे।
1: जी बिल्कुल सही बात कही आपने, समाज और परिवार का जो सहयोग होता है, जो समर्थन होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत मायने रखता है। जाते जाते सर, हम आपकी पसंद का एक गाना सुनवाना चाहेंगे आपको, वो कौन सा गाना है जो आज आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: व्यक्तिगत तौर पे मैं तो ज्यादा भजन और लोक संगीत पसंद करता हूँ, लेकिन आज समाज में फिल्म का बहुत महत्व है, तो कोई भी प्रेरणादायक गीत जो आप उचित समझे, कोई अपने विवेक से सुनवा सकते हैं, वो मैं भी सुनूंगा, अवश्य सुनूंगा।
1: जी बिल्कुल सर, आप हमसे जुड़े और हेलेन केलर की जन्म जयंती पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोतागण को दी आपने, हम समझते हैं कि इस बातचीत से हमारे श्रोतागण जरूर लाभान्वित होंगे। आप आकाशवाणी को इतना कीमती वक्त दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

सखियों, वैसे तो गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन छुट्टियों में हमें घूमना सबसे अधिक पसंद आया था और आता भी है। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि घूमने के कई फायदे हैं। जैसे हम नई नई जगहों को एक्सप्लोर कर पाते हैं, किताबों में पढ़ना किसी और का नजरिया बताता है, लेकिन जब आप खुद उस जगह पर जाते हैं तो आपका नजरिया कुछ अलग दिखाता है। नई कलाओं, रहन सहन, खाना पीना, यहाँ तक कि किस परिस्थिति में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, ये सब कुछ सीखने का मौका मिलता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन घूमना फिरना सुरक्षित होना भी बहुत जरूरी है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप घूमते हुए भी सुरक्षित हैं। तो आइए बात करते हैं कि सुरक्षित पर्यटन क्या है और किस तरीके से आप सुरक्षित पर्यटन का लाभ उठा सकते हैं। कुछ लोग अक्सर ये बातें कहते हैं कि मेरा घूमने का दिल करता है और हम बस निकल पड़ते हैं। ये कंसेप्ट सुनने में जितना दिलचस्प लगता है ना, उतना ही डेंजर हो सकता है। इसलिए कहीं जाने से पहले प्लानिंग जरूर करें। आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कहाँ ठहरेंगे, मौसम कैसा है, नेटवर्क कैसा रहता है, पुलिस स्टेशन कितना दूर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर घूमने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं रखें, बल्कि उससे समय समय पर कॉल करना चाहिए, उन्हें मैसेजेस करना चाहिए या फिर अपनी लाइव लोकेशन जरूर भेजनी चाहिए। इन समझदार स्टेप्स से आपका जो टूर है ना, वो यादगार भी होगा और मजेदार भी। खैर, ये बातें तो हो गई कि हम जब घूमने निकलते हैं तो किस तरीके से अपने आप को सेफ साइड रखकर घूम सकते हैं। अब बात गर्मी में थोड़ा मौसम का जो हाल होता है ना, वो बड़ा बेहाल कर देता है, और ऐसे में हम अपने त्वचा का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो सखियो, गर्मी के मौसम में हम एसी कूलर की त्वचा की चिंता जितनी कर लेते हैं, उसका 50% भी अगर हम अपनी स्किन की देखभाल में लगा दें तो हमारा स्किन हमें थैंक यू ही बोलेगा। इसके लिए हमें कोई पहाड़ तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हल्के फुल्के काम करने हैं। सबसे पहले अच्छे से अपनी सफाई करनी चाहिए। पसीना अगर बार बार आता है तो गीले टिश्यू से पोंछना चाहिए, ना कि उसे रगड़ देना चाहिए। सुबह में हम अपने स्किन का ख्याल तो रख लेते हैं, पर रात में नहीं रखते, जबकि रात में स्किन को ठीक रखने का ज्यादा समय मिलता है। इसलिए रात को भी हमें अपने स्किन का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा, अगर आप घर से बाहर निकल रही हैं या फिर घर में हैं, तो भी आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए। तो आपको बता दूं कि आप चाहे घर में हो

या फिर बाहर जा रहे हो, सनस्क्रीन मैंडेटरी है, इसे जरूर से लगाएं। ये सिर्फ स्किन को ब्लैक होने से नहीं बचाता बल्कि झुर्रियों से भी बचाता है। इसके अलावा अगर आप धूप में जा रही हैं तो खुद को जरूर कवर करें। और सबसे जरूरी बात, हमारी त्वचा हमारे अंदरूनी शरीर को दिखाती है, इसलिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। अपनी डाइट में लिक्विड चीजें ऐड करें, थोड़ा योग करें, मौसमी फलों का सेवन करें और सबसे खास बात, 8 घंटे की नींद जरूर लें। सखियो, आज हमने बहुत सारी बातचीत कर ली और आज है सैटरडे और आज शनिवार के दिन हम थीम बेस्ड गाने आपके लिए प्ले करते हैं। तो आज का थीम है हम, और आपके लिए मैं पेश करने जा रही हूँ किशोर कुमार की आवाज में ये खूबसूरत सा ट्रैक।

मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो

0: भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहां होते हैं। ठोकर से और भी अरमाए जवां होते हैं, दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहां होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओए लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत।

0: हा हो ही ही दूर हो के अजी क्यों ना सताओ हमको हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको दूर हो के अजी क्यों ना सताओ हमको हम जिए कैसे भला ये तो बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: सखियों, गाने हमारी जिंदगी हैं, गानों के बिना हम नहीं रह सकते। आज के नारी जगत में बस इतना ही। आपको छोड़े चलते हैं लता मंगेशकर की इस प्यारी आवाज के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी रानू सिंह को दीजिए विदा।

0: श्रोता सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब समाचार प्रसारित होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण

0: जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 क्लाउड्स पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय स्टूडियो घड़ी में 1:05 हो रहे हैं। किसलय इस कार्यक्रम में सुनिए वार्ता। विषय है देश की स्वतंत्रता को अचल रखने में युवा की भूमिका। वार्ताकार हैं आभा रानी।

बहुत गौरव की बात है कि 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यह दिन राष्ट्र का गौरव दिवस है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमने अभी अभी मनाया है। युवा अपार क्षमताओं से भरे होते हैं। युवा राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा है। युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र का विकास भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है। हर राष्ट्र की सफलता का आधार उसकी युवा पीढ़ी और उनकी उपलब्धियां होती हैं। देश के युवाओं ने हर क्षेत्र में हर स्तर पर अपनी दक्षता सिद्ध की है। पिछले 10-15 वर्षों में भारत के युवाओं में अहम परिवर्तन आया है। कैरियर हो या जीवन साथी का चयन, भाषा हो या पहनावा, जीवन शैली हो या अपनी बातों को रखने का अंदाज, एक बेहद आकर्षक अंदाज आत्मविश्वास के साथ भारतीय युवा चमके हैं। आश्चर्यजनक ढंग से अपने व्यक्तित्व में निखार लाए हैं। अपने जुनून तथा जोश को दमदार अभिव्यक्ति दी है। उन्हें यदि सही दिशा में सही अवसर मिले तो कोई वजह नहीं बनता कि उनमें शिथिलता के लक्षण आ जाएं। यह भारतीय युवाओं के कुशल मस्तिष्क की ही क्षमता है कि वैश्विक स्तर पर उन पर विश्वास किया जा रहा है। बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इन पर सौंपी जा रही हैं। भारत की विशाल युवा शक्ति न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया में चमत्कार कर सकती है। जब मैं युवा शक्ति की बात करती हूँ तो मेरे सामने स्वामी विवेकानंद जी के सपनों का नवयुवक और नवयुवती होती है, जिनका इन शब्दों से उन्होंने आह्वान किया था। वह नवयुवक नवयुवती जो 15 से 35 वर्ष की आयु का हो, जो भारत माता के लिए बलिदान को तैयार हो, जो हृष्टपुष्ट और मजबूत हो, जो विद्वान हो और जिसमें ऊर्जा तथा स्फूर्ति हो, इस श्रेणी के व्यक्ति ही इस राष्ट्र के भाग्य विधाता हो सकते हैं, इस देश की स्वतंत्रता को अक्षुण रख सकते हैं। जब माँ की पहचान उनकी संतान से होती है तो स्वाभाविक है वह माँ की रक्षक और उनकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होती है। कोई भी देश उतना ही सुरक्षित है जितना उसके नागरिकों का चरित्र। नागरिकों के चरित्र निर्माण के बिना राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं, और जब उन्नति नहीं होगी तो सुरक्षा भी खतरे में रहेगी। स्वामी विवेकानंद का मिशन नवयुवकों को जगाकर भारत माता की खोई प्रतिष्ठा वापस लाना था। उसके लिए उनको नई पीढ़ी पर पूरा भरोसा था। इस संबंध में उनकी सोच कुछ इस प्रकार थी। माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन। इट इज फॉर द यूथ टू बिल्ड नेशन। माई होप ऑफ द फ्यूचर लाइज इन द यूथ्स कैरेक्टर। युवा शक्ति देश तथा समाज की रीढ़ होती है। युवावस्था में असीम ऊर्जा, उच्च महत्वाकांक्षाएं, जागरूकता तथा चुनौती लेने की क्षमता होती है। युवा देश तथा समाज को प्रगति के शिखर पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। युवा देश का वर्तमान है तो भूत तथा भविष्य के बीच का सेतु भी है। युवा देश तथा समाज के जीवन मूल्यों का प्रतीक भी हैं। उनकी आंखों में भविष्य के इंद्रधनुषी सपने होते हैं। समाज को बेहतर बनाने तथा राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान युवाओं का ही होता है। मेरा भारत महान इस पंक्ति को सार्थक करने के लिए युवा पूरी तरह से प्रयासरत हैं। समाज में तेजी से आ रहे बदलाव के प्रति बड़ी संख्या में युवाओं का नजरिया शॉर्टकट की बजाय कर्म तथा श्रम के माध्यम से सफलता प्राप्त करने की ओर होता जा रहा है। यदि हर पीढ़ी जागृत और जागरूक हो तो देश का विकास आसानी से होगा, जिसमें युवाओं के जागृत रहने से सर्वाधिक प्रभाव होगा। वेद में भी वर्णित है, युवा शक्ति पराशक्ति। यह वाक्य युवाओं की महत्ता को उस काल में भी दर्शाती थी। कैरियर बनाने वाले की पंक्ति में युवा सबसे आगे हैं। जिनको कैरियर बनाना है, जो बुजुर्ग हैं, उनका समय बीत चुका है, वे अपना धंधा कर परिवार चलाने उनके भरण पोषण में लगे हैं। लेकिन जो युवा हैं, वे जागृत हैं, जागरूक हैं, उनकी सोच अलग तरह की है। युवा उन्नति का रास्ता देखता है, उसकी प्रवृत्ति अलग तरह की होती है। वह बायस होकर नहीं सोचता है, इसलिए वह समाज को एक नई दिशा दे सकता है। युवा परिवार तथा समाज का सबसे सक्रिय सदस्य होता है, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे वह नौकरी करता हो, किसान मजदूर खिलाड़ी हो, शिक्षित अशिक्षित व्यवसायी हो या कोई अन्य कार्य करे। हर युवा यदि अपने आप को अच्छा बना ले, अपने को सही रास्ते पर ले जाए, जो पढ़ाई कर रहे हैं वे अच्छी तरह पढ़ाई करें, जो नौकरी कर रहे हैं वे ईमानदारी से अपना काम करें, जो व्यवसाय या कोई अन्य ही काम कर रहे हैं वे सभी अपनी अपनी दिशा में अच्छी तरह तथा ईमानदारी से अपने अपने कामों को करें। वे यह सोच लें कि जो भी हम काम कर रहे हैं वह देश के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से जितने भी नागरिक हैं, जो भी कार्य करते हैं, वास्तव में वह देश के लिए ही होता है। इससे परिवार तो चलता ही है, परिवार की अच्छाई होती है। कोई भी बच्चा पढ़कर यदि अच्छा करता है, कोई अफसर बनता है, कोई भी कुछ अच्छा करता है तो परिवार का भला होता है, उसका भला होता ही है, साथ ही साथ देश का भी भला होता है। जितने भी नागरिक हैं युवा, वे यदि यह सोच लें कि हमको ईमानदारी पूर्वक मेहनत से देश के लिए काम करना है, देश प्रेम की भावना उनमें हो, आपस में एक दूसरे से देश प्रेम से

संबंधित बातें हों, देश प्रेम संबंधित बातों का संचार करें, संवाद करें, दूसरों को भी देश से प्रेम करना सिखाएं, राष्ट्र प्रेम की भावना फैलाएं, प्रचार प्रसार करें। इस तरह का जब विचार और भावना होगी, इसका संचार होगा, राष्ट्र प्रेम रहेगा सभी युवाओं में, देश के प्रति सभी को प्रेम रहेगा, तो देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। जब युवाओं को, उनके समाज को यह लगेगा कि हम जो भी कर रहे हैं वह देश के लिए कर रहे हैं, वैसी स्थिति में वह ईमानदारी पूर्वक मनोयोग से कार्य करेंगे और देश की प्रगति, देश का विकास स्वतः हो जाएगा। देश प्रेम की भावना रहेगी और वे बुद्धिजीवी होंगे, वे पढ़े लिखे होंगे, उनके पास अनुभव है, वर्तमान स्थिति जो है उसमें वे अद्यतन रहते हैं, उन्हें ज्ञान भी सबसे अधिक रहता है, तो वे यदि अच्छे हो जाएंगे तो देश अच्छा हो जाएगा। देश समृद्ध होगा, देश समृद्ध रहेगा तो कहीं से भी स्वतंत्रता खोने का कोई अवसर ही नहीं रहेगा। हमारे देश के युवा हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं तथा जनसंख्या के सबसे गतिशील खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जैसे देश के विकास में युवाओं तथा उनके कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान है। देश का मूल्य वहां रहने वाले लोगों द्वारा जाना तथा स्थापित किया जाता है। यह देश के नागरिकों की बुद्धि तथा कार्य है जो राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाता है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक देश की प्रगति से जुड़ा है। राष्ट्र निर्माण या राष्ट्रीय विकास आमतौर पर लोकतांत्रिक तरीके से एक राष्ट्र में सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक समृद्धि तथा राजनीतिक स्थिरता के निर्माण में सभी नागरिकों को जोड़ने, संलग्न करने की एक रचनात्मक प्रक्रिया है। युवा किसी राष्ट्र को के भवन ब्लॉक हैं। अधिक सशक्त युवा ही अधिक विकसित राज्य का निर्माण करते हैं। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की केंद्रीय भूमिका होती है, इसलिए जो देश अपने युवाओं का सही दिशा में उपयोग करते हैं वे अधिक विकसित होते हैं। युवाओं के मन की ऊर्जा तथा चमक एक राष्ट्र के लिए मशाल वाहक का कार्य करती है। इसके विपरीत जो देश युवाओं को पीछे कर देते हैं वे विफल रहते हैं। विकसित देश अपनी कीमत से पूरी तरह वाकिफ हैं। वे युवाओं को एक परिसंपत्ति के रूप में मानते हैं। अपने देश भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा अपने राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी युवाओं का बहुत महत्व दे रहे हैं तथा इनकी आवश्यकताओं को पूरा कर इन्हें सक्षम नागरिक बनाने पर विशेष बल दे रहे हैं। युवाओं की शिक्षा, रोजगार, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, खेल, उनके मनोरंजन पर वे विशेष ध्यान दे रहे हैं। देश की एकता, अखंडता, इस सब के बारे में भी सभी युवा अवेयर रहें। युवा अवेयर रहेंगे तो सारा कुछ होगा। सभी जगह आप देखते होंगे, ऑफिस वगैरह में भी, कि युवा सबसे अधिक काम करते हैं। सेना में युवा हैं। जहां भी मेहनत से काम करने तथा शक्ति की आवश्यकता होती है, वहां उस दायित्व का निर्वहन युवा ही कर रहे हैं। सारा कुछ युवा के ऊपर निर्भर करता है। युवा देश को मजबूत बनाता है, विकसित करता है, और जो देश मजबूत होगा, शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से, उस देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। इसका प्रमाण है, छोटे छोटे देश हैं जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, इनकी जनसंख्या बिहार की जनसंख्या से लगभग आधी है। दुनिया के बहुत मजबूत देश हैं ये। इसका कारण है कि आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से वे आगे हैं, दुनिया में बहुत आगे हैं और बहुत मजबूत हैं। उस तरह के देश की स्वतंत्रता को छीनने का प्रश्न ही नहीं उठता, वे अवेयर हैं। अब दोनों जर्मनी मिलकर एक हो गया है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। नहीं तो पहले बहुत छोटा छोटा था, परंतु बिल्कुल अखंड था, बिल्कुल स्वतंत्र था। उन सब की स्वतंत्रता पर कोई आंच आने वाली नहीं है। युवा बिल्कुल निष्पक्ष होकर, इम्पार्शियल होकर देश में जाति की राजनीति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति, क्षेत्रीयता की राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, जिससे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। वे जाति आधारित, धर्म और संप्रदाय आधारित, क्षेत्रीयता आधारित बातों को अपनी नैतिकता में नहीं आने दें। जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग तथा क्षेत्रीयता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होने दें। इस तरह की गंदी राजनीति से वे दूर रहें तथा ऐसी राजनीति नहीं होने दें। युवाओं की सही विचारधारा हो, सही दिशा में काम करें। यदि ऐसा होगा, वे इस तरह से रहेंगे, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्रीयता के आधार पर कहीं भी उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, राष्ट्र के प्रति प्रेम बना रहेगा, तो देश की एकता और अखंडता बनी रहेगी। यदि ऐसा रहेगा तो आज क्या, हजारों वर्ष बाद भी देश की स्वतंत्रता कायम रहेगी, अचल रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी।
युवा संविधान का अध्ययन करें, उन्हें भारतीय संविधान की समझ हो, वे संविधान का सही तथा सार्थक उपयोग करें, संविधान के मूल्यों का पालन करें, अपने आचरण में उतारें तथा दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें।

0: भारतीय संविधान समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने की बात करता है। यह न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास तथा पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति और अवसर की समानता एवं उन सभी के बीच प्रचार प्रसार करने की बात करता है। हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा की भावना की बात करता है। संविधान के इन मूल्यों की देश में स्थापना सच्चे अर्थ में देश के जागरूक युवा ही कर सकते हैं। युवा समाज का भी अनुभव करें। आजकल क्या है, हम लोग स्कूल कॉलेज में नामांकन कराते हैं, बच्चा सीधे केवल पढ़ाई में लगा रहता है, इधर उधर का कोई अनुभव या ज्ञान उसे नहीं रहता और उसके दिमाग में यही रहता है कि पढ़ लिखकर मुझे नौकरी करनी है। सामाजिक एवं व्यावहारिक ज्ञान भी उनके लिए बहुत आवश्यक है। देश का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इतिहास बताता है कि कोई देश स्वतंत्रता कब खोता है, कोई देश स्वतंत्र कब होता है और कोई देश लगातार स्वतंत्र कैसे रहता है। इतिहास के अध्ययन से इन सब बातों की जानकारी होती है। शिक्षा केवल साक्षरता अथवा सूचनात्मक समृद्धि नहीं है, यह मनुष्य को मनुष्य बनाती है। शिक्षा का प्रथम तथा अंतिम लक्ष्य और समाज के लिए समर्पित सुयोग्य नागरिक की रचना है। आज प्रायः जनमानस में शिक्षा का अर्थ साक्षरता और सूचनात्मक जानकारियों से समृद्ध होना है, जिससे सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों के वेतनभोगी अधिकारी कर्मचारी तैयार हो रहे हैं। आधुनिक शिक्षा की इस अपूर्ण और असफल अवधारणा को लक्ष्य कर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने इसके नाश की कामना करते हुए भारत भारती में लिखा था, शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी, लो मूर्ख ते जीती रहो रक्षक तुम्हारे हैं धनी। भारत की शिक्षा व्यवस्था अतीत में बहुत समृद्ध थी। भारतवर्ष में शिक्षा का यह भ्रामक स्वरूप ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आया। अंग्रेजों का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो राजकाज में उनकी सहायता करके ब्रिटिश राज्य की रीतियों नीतियों को संचालित करने तथा उनके शासन को स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो। इस प्रकार हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेजों ने निस्तनाबूद कर दिया। युवा आपसी भेदभाव नहीं करें, आपसी भेदभाव के कारण ही हिंदुस्तान गुलाम हुआ और इतने दिनों तक गुलाम रहा। आपसी भेदभाव ही उसका कारण था, दूसरा कोई कारण नहीं था। देश मजबूत और समृद्ध था, अंग्रेज भी आए तो क्या किए, फूट डालो राज करो यही नीति अपनाकर आसानी से राज किए। उस समय यदि पूरे हिंदुस्तान की जनता एकमत होती तो किसी का भी साम्राज्य भारत पर नहीं हो सकता था। आपस में मिलजुल कर नहीं रहने के कारण बहादुर लोग मारे गए और देश परतंत्र हुआ। आज भी हम देखते हैं कि युवाओं में इस बात की कमी है, वे इस कमी को पूरा करें, इतिहास से शिक्षा ग्रहण करें। युवा देश के सर्वाधिक सजग नागरिक हैं, युवाओं को राष्ट्र की आवाज माना जाता है, उनमें विवेक तथा असीम क्षमता है। वे नहीं करेंगे तो इस कार्य को कौन करेगा। वे समझें कि हम जो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो देश के लिए, बुरा कर रहे हैं तो वह भी देश के लिए कर रहे हैं, ये उनकी समझ होनी चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर अपने समाज में, अपने गांव में, जिले में धार्मिक आधार पर, जातिगत आधार पर, लिंग के आधार पर, सांप्रदायिकता तथा क्षेत्रीयता के आधार पर भेदभाव, झंझट, मन मुटाव नहीं करें। सबकी भावना नकारात्मक नहीं है, पर कुछ की है वह देश को हानि पहुंचा रही है। कभी भी आज़ादी खतरे में पड़ेगी तो ऐसे लोगों के कारण ही पड़ेगी। इसलिए युवा ये प्रण ले कि वे देश की राजनीति करेंगे, क्षेत्र की राजनीति नहीं करेंगे और दूसरी तरफ वे देश के विकास में भी अपना मजबूत योगदान सुनिश्चित करेंगे। इस तरह से यदि वे रहेंगे तो देश की स्वतंत्रता खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वह अचल अटल रहेगी। मैं चंद पंक्तियों के द्वारा अपने उद्गार को व्यक्त करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करूंगी। भारत माता पुकारती, जाग नौजवान नवयुवती, जाग जाग और जग जगा जागरण के गीत गा। देश के जवान जाग, शौर्य स्वाभिमान जाग, राष्ट्र संस्कृति समाज भाग्य के विधान जाग। जागी तरुणाई ही राष्ट्र को संवारती है, जाग नौजवान नवयुवती जाग। आप सभी युवाओं को संकल्प लेना चाहिए, मेरा देश मेरा घर, इसकी सुरक्षा मेरा काम।
1: आभा रानी की वार्ता, देश की स्वतंत्रता को अचल रखने में युवा की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसलय में। हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित। हिंदुस्तान के सहयोग से पंदिल पंचायत से बबलू कुमार।

0: बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले।
1: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी देर में।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में, और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं, और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उससे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक,

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फर्स्ट लव लेटर, इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को, अनजान की रचना है, बापी लहरी का संगीत।

0: टूट विश्वास अनवरत साथ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फर्स्ट लव लेटर, इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को, अनजान की रचना है, बापी लहरी का संगीत।

फर्स्ट लव लेटर फिल्म में भी आपने लता मंगेशकर को सुना, अनजान की रचना थी बापी लहरी का संगीत, और अब कुमार शानू को सुनिए। इस गीत को हमने लिया है फिल्म दलाल से। माया गोविंद और प्रकाश मेहरा के बोल हैं, बापी लहरी का संगीत।

कुमार शानू को आप सुन रहे थे फिल्म दलाल में माया गोविंद और प्रकाश मेहरा के बोल, वापी लहरी का संगीत। इनके संगीत में अगला गीत सुनिए फिल्म सुराग से। बोल कैफी आजमी के हैं, स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

कैफी आजमी की रचना आप सुन रहे थे फिल्म सुराग में। बापी लहरी का संगीत और स्वर दिया लता मंगेशकर ने। अगला गीत हम सुन पा रहे हैं फिल्म लालच से। अनजान के बोल हैं, बापी लहरी का संगीत, आवाज़ दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म लालच में। इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: और इस गीत के बाद

0: This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 2 बजने को है, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही

0: एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में बिहार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य मिलकर गांवों के विकास की साझा रणनीति तैयार करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। इनका उद्देश्य देश में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा सुलभ बनाना है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 परीक्षा विशेष ट्रेन चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल मुंगेर के चयनित पंचायत से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आज हेलेन केलर दिवस है। प्रतिवर्ष 27 जून को हेलेन केलर की जन्म स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थी। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान विधान पार्षद सर्वेश कुमार और स्थानीय विधायक संजय गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में भी कई स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। अररिया जिले में जिलाधिकारी विनोद दुहन की उपस्थिति में एनआईसी के रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की गई। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मुहर्रम के दौरान ड्यूटी पर मोबाइल फोन चलाने के आरोप में एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीराज़म नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात शेयर करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां एडिशन होगा। प्रोग्राम का नशरिया आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, वज़ीर आज़म दफ्तर और वज़ारत इत्तला'आत व नशरियात के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा नशरिया होगा। मन की बात प्रोग्राम का नशरिया प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुना जा सकता है। इसके फौरी बाद मैथिली जुबान में इसका नशरिया आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी नशरिये को दोबारा रात 8 बजे से भी सुना जा सकता है। मरकजी वजीर देही तरक्यात शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में कौमी देही तरक्यात कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। 2 दिनों की इस कॉन्फ्रेंस में बिहार समेत सभी रियासतों और मरकज के ज़र इंतज़ाम खितों के देही तरक्यात के वज़रा, सीनियर अफसरान और माहरीन हम जहद देही तरक्की के मौजू पर इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अहम प्रोजेक्टों का जायज़ा और देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के तवसुस से मरकज़ और रियासत मिलकर गांव की तरक्की की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करेंगे। मरकजी वजीर सेहत और ख़ानदानी फलाह जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में सेहत के शोबे से वाबिस्ता कई डिजिटल पहल का आगाज़ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रोत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और हेल्थ स्टैंडर्ड शामिल है। इनका मकसद मुल्क में डिजिटल सेहत खिदमात की तौसी करना और सेहत खिदमात को मज़ीद मुअस्सर और आसान बनाना है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से कल रियासत के मुख्तलिफ मराकज़ पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती इम्तहान का इनेकाद किया जाएगा। 993 ओहदों के लिए होने वाला ये इम्तहान 2 नशिस्तों में होगा। मशरकी वस्त रेलवे इस इम्तहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के लिए आज और कल 13 इम्तहान स्पेशल ट्रेन चलाएगा। दानापुर डिवीज़न की जानिब से आज पटना के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 इम्तहान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। हुकूमत बिहार की पहल पर महकमा पंचायती राज की जानिब से अब हर महीने के आखिरी इतवार को रियासत के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का इनेकाद किया जाएगा। इस पहल का मकसद है देही तरक्की से जुड़े मौजूदात पर अवामी हिस्सेदारी को बढ़ाना और मंसूबों के जायजे के जरिए पंचायत को मुस्तकम बनाना है। वज़ीर आला सरमार चौधरी इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज यौम हेलेन केलर है। हर साल 27 जून को हेलेन केलर की पैदाइश की याद में ये दिन मनाया जाता है। हेलेन केलर पैदाइश से ही माजूर थीं। देखने और सुनने की कुव्वत नहीं होने के बावजूद उन्होंने ज़िंदगी में पुख्ता अज़्म दिखाया और अपना निशाना हासिल किया। इस मौके पर रियासत में कई प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। बिहार नेत्रहीन परिषद की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस दौरान रुकन कानून साज कौंसिल सर्वेश कुमार और रुकन असम्बली संजय गुप्ता मौजूद रहेंगे। इस बीच कल हेलेन केलर जयंती के कबल की शाम पटना में परिषद और BIA के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद के लिए ज़ाती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर 25 बासलाहियत माजूर अफराद को इजाज़ से नवाजा गया। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, बांका, भागलपुर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा और सुपौल जिले में कुछ मकामात पर आंधी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान रोहतास, कैमूर, मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, पटना, नालंदा और शेखपुरा समेत रियासत के शुमाल मगरब और जनूब मगरबी हिस्सों में भी कई मकाम पर आंधी बारिश का इम्कान है। इधर महकमा ने मधेपुरा, पूर्णिया और सिवान ज़िले के 1-2 मकाम पर शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 18 जुलाई 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.ssc.gov.in। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के कुल 100 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में से किसी में BE या BTEC उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है, जबकि अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता नोट करें www.bsnl.co.in। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता है www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य

0: और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का

0: शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
1: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक की भाग्यराज का आज

0: चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मेट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉरफॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संकेत।

दासी। ऐसा फिल्म में भी आपने भूपेंद्र को सुना, आनंद बख्श के बोल, रविंद्र जैन का संगीत, और अब लता मंगेशकर को सुनिए। फिल्म है रेशमा और शेरा। बाल्मीकि

रेशमा और शेरा इस फिल्म में भी आपने लता मंगेशकर को सुना। वाल्मीकि बैरागी के बोल, जयदेव का संगीत और अब यशोदास और हेमलता को सुनवा रहे हैं। फिल्म है गोपाल कृष्ण, गीत और संगीत रविंद्र जैन।

प्रेम पुजारी। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे येसुदास और हेमलता को गोपाल कृष्ण फिल्म में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और अब आशा भोसले और हरिहरन को सुनिए। गीत लिया है फिल्म अमर ज्योति से, नक्शलालपुरी के बोल, जयदेव का संगीत।

आशा भोसले और हरिहरन को आपने सुना फिल्म अमर ज्योति में। नक्श लालपुरी की रचना थी, जयदेव का संगीत और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मंच चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400009।

मनचाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं, इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियाँ भेजनी है, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है। और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विविधारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है, नीरज के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी बाड़ोदे और चंद्र प्रभा बाड़ोदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

रहा तुझे वो तेरी याद में।

0: लिखे जो खत तुझे
1: तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं अलग अलग जगहों से, एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं, आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।

0: डॉक्टर रतनगिरी, मेरी ओर से हार्दिक बधाइयाँ।
1: भारती,
0: अब मैं केवल आपकी भारती नहीं हूँ, समझे? अब मैं हूँ डॉक्टर भारती, MBBS।
1: फिर भी वो
0: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
1: भारती सुनो तो,
0: अब छिपाओ दोराव अच्छा नहीं लगता डॉक्टर साहब। आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं, कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
1: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
0: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस

0: श्रीमान मरुधनायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
1: लेकिन भारती, इसमें इसमें तुम्हारी भी गलती है।
0: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहाँ गई वो सब बातें?
1: मैं भूला नहीं हूँ, ये सही है। हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।

0: समझे?
1: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
0: हाँ हाँ आप उसी कोशिश में हैं, मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
1: भारती, भारती तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
0: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का चोलेरी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
1: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
0: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
1: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूं मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
0: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
1: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
0: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
1: रियली?
0: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
1: भारती,
0: सिर्फ भारती नहीं, आई एम डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
2: भारती, ये क्या बात है?
0: मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या? अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
2: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
2: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहां रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
2: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
2: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है, मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
2: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुली हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
2: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
2: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
2: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
2: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: करने के इंतजार में हूँ।
1: बुरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहें ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जचता नहीं।
0: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
1: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
0: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
1: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
0: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझ अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
1: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
0: और माता जी?
1: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
0: फिर क्या हुआ?
1: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
0: और आजादी मिलने के बाद?
1: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
0: बेचारी दुखियारी माँ।
1: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी खुल खुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
0: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
1: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस बात को जाने दो, मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
0: क्या बात है मामा जी?
1: हाँ याद आ गई, इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरास्तार रईस कुमार सामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है, उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
0: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई, मैं चली जाती हूँ मामा जी।
1: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो ये मत भूलना।
0: हाँ हाँ

0: भारती, उस हवाई जहाज को क्यों ताक के रह गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा। नर्स नाक

0: डॉक्टर साहब, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। ज़रा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी, पैसा नहीं है। डॉक्टर जी,
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस ज़ादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गए नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक ही करके पूछिए ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गाँव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ, जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियाँ जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के

0: दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
0: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है। मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
0: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहें तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
0: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
0: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
2: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है। नई उमंग है ना? मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
3: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया माया से बना हुआ अस्पताल है ये।
2: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
3: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
2: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिख कर दे दिया है।
3: भारती, तुम?
2: अच्छा, तो ये बात है।
3: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
3: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।
2: सुना आपने?
3: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
2: ठीक है, देख लेंगे इसे भी, इस वक्त हम चले जाते हैं।
3: भारती, तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
1: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
3: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ, इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ़ ओह, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
1: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है, आप चिंता छोड़िए मामा जी।
3: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे, सीना दर्द कर रहा है।
1: क्या हुआ मामा जी? मामा जी, क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
3: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
1: ले जाइए, ये लीजिए पानी। दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी, एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो।
1: गाड़ी को तुम आसमान कहती हो। ये लो उतर आए तुम्हारी धरा पर। अरे ए उमा भाई ये अट्टहास कैसा? हद है भाई, पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो। आखिर बात क्या है?
0: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने। एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाई माँ लगती हो।
1: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर

0: क्या है, दाई माँ का ही तो दूसरा रूप है।
1: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो?
0: बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
1: मजाक मजाक छोड़ो माँ। अच्छा पहले ये बताओ, तुम कैसे इधर आई? जानम माँ
0: जी,
1: ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चले जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
0: जी बहुत अच्छा। अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम माँ कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
1: हाँ उमा, मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
0: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
1: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
0: अच्छा अच्छा
1: भाई, दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
0: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है? तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
1: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं। और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
0: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
1: इसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
0: तो
1: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ। इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
0: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाएं।
1: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
0: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
1: हाँ अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
0: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था। मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
1: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
0: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
1: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
0: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
1: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मानसिकता, सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
0: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
1: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
0: वो क्या?
1: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
0: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
1: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
0: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
1: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
0: मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
1: ओह अरे कांग्रेचुलेशंस उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
0: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
1: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
0: श्योर जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
1: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
0: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गए आप?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सोचता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम

0: सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला क्या बात है बताओ।
2: डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
0: अरे अरे ये तो बेहोश हो गई। हाय इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है।
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चल चल कंपाउंडर वो बक्स ले आ जल्दी से।
4: बेटी इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
4: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
4: बेटी कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
4: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गाँव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
4: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
4: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
4: भारती तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
4: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
4: ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती।
5: डॉक्टर अम्मा!
1: कोई दरवाजा खटखटा रहा है।
5: डॉक्टर अम्मा!
1: देखती हूँ कौन है।
4: रात के 10 बज चुके हैं।
5: डॉक्टर अम्मा!
1: अरे नागमणि तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?
5: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए। डॉक्टर अम्मा आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
5: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगी तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
4: जानम्मा अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
5: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी। आइए डॉक्टर अम्मा
1: जल्दी चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीक ही है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्कार कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: ए, डॉक्टरनी, धमकाती है? जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस ज़ादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है?
2: अरे
0: बचाओ, अरे भागिए भागिए।

0: कायर कहेंगे, छूट मुठ का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
1: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
5: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
4: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहाँ गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए।
2: जी, जी।

0: तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहाँ से सफ़र तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
1: ये 1973 में, नाइनटीन
0: ये
1: सेवेंटी थ्री में आप
0: 1973 में,
1: हरियाणा से मुंबई आ गए।
0: नहीं मैं हरियाणा से दिल्ली में था,
1: हाँ
0: दिल्ली से मुंबई आया।
1: अच्छा।
0: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहाँ से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी,
1: जी।
0: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी,
1: अच्छा।
0: उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था,
1: अच्छा, तीन दोस्त आए थे
0: तीन
1: आप।
0: दोस्त आए थे,
1: हाँ
0: मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
1: अच्छा।
0: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है और उस जगह पे ये नहीं जा सकता
1: कौन आप?
0: सुधाकर, कि
1: अच्छा।
0: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहाँ कुछ कुछ हो गया।
1: अरे
0: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा
1: अच्छा।
0: भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली
1: ओपनिंग
0: रात
1: हुई आपकी।
0: ओपनिंग हुई, दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया। कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी,
1: उस पल को महसूस करते हो जब
0: बिल्कुल
1: आपको
0: याद
1: ऐसा
0: आता
1: किसी ने कहा
0: है,
1: था।
0: याद आता है वो।
1: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए
0: नहीं,
1: थे?
0: मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
1: अच्छा।
0: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूँ, क्या करूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहाँ खाना खिला के छोड़ देते थे, पूरा
1: अच्छा।
0: खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया, और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे,
1: कोई पैसा नहीं देते
0: नहीं
1: थे।
0: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफ़ी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला,
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते
0: यही
1: रहे,
0: काम
1: ये
0: करता रहा।
1: संघर्ष जो
0: अब इसको
1: था।
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था, अब
1: हाँ
0: वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहाँ पे मुझे 2-2.5 रुपये रोज के मिलते थे, तो वहाँ पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं था,
1: पैसा मिल जाता था
0: इतना
1: आपको।
0: पैसा मिल जाता था। तो वहाँ उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो। मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया, लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया, और वो मुझे शंकर जी के म्यूज़िक रूम में लेके गए,
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो, तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहाँ से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बाहर

0: इस बीच माता पिता से बात होती रही, क्या उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे,
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे। तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूँगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहां शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं
0: आप
1: नहीं
0: शंकर
1: नहीं
0: जी के सानिध्य में रहे, कैसे
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहाँ पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी, और सोने की कोई
0: दिक्कत
1: परेशानी
0: नहीं
1: नहीं
0: थी।
1: थी। तो मैं जो है वहाँ पे काफ़ी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊँ, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं
1: लगभग
0: रच

0: ठीक
1: ढाई
0: है।
1: सौ गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए
0: गुम,
1: क्या।
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियाँ, ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है सर, मतलब काफ़ी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें
0: उसमें
1: खुश हो
0: भी
1: जाता।
0: ऊर्जा आ जाती थी, एक
1: हाँ, लगता
0: मोटिवेशन
1: था,
0: मिलता था
1: मोटिवेशन
0: कि
1: होता
0: कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी हमारा भी होगा।
0: होगा।
1: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी। कुछ लोग आते थे हमेशा, वहाँ का एक अलग ही चलन था। वहाँ एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा,
1: अब वो पैसे क्यों
0: कौन
1: नहीं,
0: देता
1: कौन
0: था?
1: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
1: हो
0: साहब के
1: सकता
0: प्रति,
1: है,
0: ना इस
1: हो सकता
0: दीवानगी
1: है,
0: में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते हैं।
0: हैं।
1: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज़्यादा जाते थे क्योंकि
0: जी।
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
0: जी
1: को।
0: जी जी
1: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहाँ पे जाते थे।
0: जी
1: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहाँ आइए, तो मैंने वहाँ उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे, बातचीत में वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हसरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी ज़िंदगी में आए।
0: जी
1: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
0: जी खैर, ये तो
1: कहीं ना
0: आप।
1: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
0: जो हसरत साहब जैसा होगा।
1: उनके जैसा, हो सकता है
0: जी
1: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
0: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
1: जी
0: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि
1: जी
0: आपने उनको अपना उस्ताद माना हसरत
1: जी जी
0: साहब
1: जी,
0: को।
1: जी बिल्कुल
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
1: जी
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूँ कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी ज़िंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का,
0: जी
1: क्या है प्यार।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने
1: इतने,
0: के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफ़ी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की,
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपये मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहाँ पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के, वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी।
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी।
1: जी, जी।
0: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई।
0: अच्छा।
1: थी। लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफ़ी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो।

0: इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफ़र एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहाँ पे। तो वहाँ मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहाँ लेके गए और वहाँ उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया
1: अच्छा।
0: जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है। तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो तो
1: शानदार और लेजेंड से थे
0: उनका
1: वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी।
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: जोड़ी है नंबर वन।
1: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े।
2: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
2: जी जी।
1: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
2: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा।
1: वाला थे कि
2: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ उस घर के बहुत।

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। शाम के 4:30 हो रहे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा।

0: के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला। और बहुत अच्छा लगा, पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ पे हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बनेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं।

0: और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त भारती।
3: नमस्कार दोस्तों, और मैं हूँ आपकी दोस्त अस्मिता। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर जो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो साथ ही कुछ

0: और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे विषय पर जो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो साथ ही कुछ रोचक तथ्य भी जानेंगे।
1: हाँ, स्मिता, साथ ही हम सुनेंगे कुछ बेहतरीन गाने भी। दोस्तों, इन दिनों गर्मी चरम पर है, जानती हैं या नहीं स्मिता?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तेज धूप, बढ़ता तापमान और लू से बचना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे मौसम में अधिक से अधिक पानी पीजिए, हल्के सूती कपड़े पहनिए और बिना जरूरत दोपहर की तेज धूप में बाहर बिल्कुल भी ना निकलिए।
0: और अपने साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों का भी विशेष ध्यान रखें।
1: तो आइए श्रोताओं, ऐसी कुछ ठंडक भरी बूंदें हम पर भी गिरे, ऐसा एक गाना सुनते हैं लगान फिल्म से।

0: तो दोस्तों अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में ये प्यारा सा ट्रैक।
1: तो दोस्तों, अगर आसान शब्दों में कहें तो MSME डे यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे उन छोटे और मझौले बिजनेस वालों का थैंक यू डे है जो हमारे आसपास दिखते हैं।
0: स्मिता, आप बात कर रही हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे के बारे में।
1: बिल्कुल
0: ये चाय की टपरी से लेकर लोकल कपड़ों के ब्रांड्स तक और गली के नुक्कड़ वाली किराने की दुकान से लेकर नए नए कूल स्टार्टअप्स तक, ये सब MSME के दायरे में आते हैं।
1: बिल्कुल भारती, एम यानी माइक्रो, ये वो छोटे खिलाड़ी हैं जो बहुत कम पैसे जैसे कुछ लाख रुपए लगाकर अपना काम शुरू करते हैं, जैसे आपकी फेवरेट चाट वाली दुकान या बुटीक।
0: बिल्कुल। और एस यानी स्मॉल, थोड़े बड़े वाले जिनका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर करोड़ों में होता है, लेकिन टीम अभी भी छोटी और टाइट होती है।
1: बिल्कुल भारती, एम यानी मीडियम, ये वो हैं जो अब मझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं, इनका बिजनेस अच्छा खासा फैल चुका होता है।
0: हाँ, स्मिता, हर साल 27 जून यानी आज ही के दिन, इस दिन पूरी दुनिया इन छोटे बिजनेस वालों को सलाम ठोकती है। सलाम उनको करना ही चाहिए, क्योंकि ये वो जॉब हैं जो मशीन देश में सबसे ज्यादा नौकरियां यही लोग पैदा करते हैं। कॉरपोरेट कंपनियां तो बाद में आती हैं, पहले यही लोग युवाओं को मौका देते हैं।
1: बिल्कुल, लोकल को बनाते हैं ग्लोबल, हमारे देश की बनी चीजों को दुनिया भर में पहुंचाने का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर होता है भारती।
0: हाँ दोस्तों, असली आत्मनिर्भर बिना किसी बड़े गॉडफादर के अपने दम पर रिस्क लेते हैं और मार्केट में छा जाते हैं।
1: तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जो भले ही छोटे दिखते हैं लेकिन देश की इकोनॉमी का असली इंजन यही है। अगर ये थम गए तो देश थम जाएगा, इसलिए इनके जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है MSME डे।
0: तो दोस्तों, आगे हम सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना।
2: ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

0: तो दोस्तों अभी हम सुन रहे थे किल दिल फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा गाना। और दोस्तों आज का सेगमेंट जो स्टार्टअप सैटरडे है उसमें हमने बात की है अंशु शेखर जी से। तो स्टार्टअप सैटरडे में आइए उनसे क्या बातचीत हुई है सुनते हैं।
1: आकाशवाणी पटना में स्वागत है और आप अपने बारे में भी कुछ बताइए।
2: शुक्रिया।

0: मैडम, मेरा नाम अंशु शेखर हुआ और मेरे स्टार्टअप का नाम जो है शेखर टेली सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हुआ। और मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मेरा जो रहा है वो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। और करने के तत्पश्चात जो है 2016 में प्लेसमेंट हुआ। प्लेसमेंट होने के बाद हम जॉब के लिए गए, लेकिन तभी जो है आपको स्टार्टअप इंडिया करके एक लॉन्च हुआ, प्रोग्राम लॉन्च हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें कि कहा गया कि किन्हीं के पास जो भी आइडिया है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं और एक उद्यमी बनना चाहते हैं, वो अपना आइडिया लेके आवे और डाले। यदि आइडिया में दम रहेगा तो आपको 100% जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट होता है स्टार्टअप को लेके वो आपको मिलेगा। 2016 में हमने अप्लाई किया। हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली हम क्या स्टार्टअप कर रहे हैं पहले उसको बता देते हैं। तो हमारा स्टार्टअप है दो सेक्टर में है। पहला सेक्टर हमारा जो ऑटोमेशन सेक्टर है। ऑटोमेशन मतलब हम लोग IoT बेस्ड सिस्टम बनाते हैं कई तरह के, जैसे कि आप पंप कंट्रोलर हम लोग बनाते हैं, जो कि बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स में जो टैंक लगे रहते हैं जिससे पानी सप्लाई पूरा बिल्डिंग में जाता है, तो हम लोग कस्टमाइज बनाते हैं IT सिस्टम। उससे क्या होता है ना कि सारे बिल्डिंग का जो पंप है वो ऑटोमेशन ऑटोमेट हो जाता है। उससे क्या होगा, किसी भी बिल्डिंग का यदि पानी खाली होगा ना तो उसका सेंट्रलाइज मैसेज जहाँ भी जो भी उनका जो ऑपरेटर होंगे वहाँ पे उनको मिल जाएगा कि कब आपका किस टंकी का किस बिल्डिंग का टैंक खाली हुआ है, किस बिल्डिंग में जो है कुछ फॉल्ट हुआ है, वो टाइट आपको मैसेज मोबाइल में प्लेस हो जाएंगे। और यदि मान लेते कोई ए ब्लॉक बिल्डिंग है उसका पानी खाली होता है तो मोटर ऑटोमेटिक चालू होगा, उसका भी मैसेज आ जाएगा इनके पास कि इतना बजे आपका टंकी चालू हुआ है, और जब बंद होगा उसका भी मैसेज आ जाएगा। मतलब एक सेंट्रलाइज आपका ऑटोमेशन हो जाएगा एक तरह, जहां पर आप देख सकते हैं कि कब आपको चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपको बार बार जाके प्रत्येक बिल्डिंग का अलग अलग मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लेते आपने दिमाग से हट गया वो चीज कि आपको चला दिए हैं, आपको दिमाग में नहीं रहा, पानी क्या होता है ओवरफ्लो हो जाता है, जितना देर पानी ओवरफ्लो होता है वाटर का तो आपका वो हार्समेंट है। हाँ, प्लस क्या है ना कि आपका एनर्जी भी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग्स होते हैं वो कम से कम 2 HP 1 HP का मोटर होता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक कंजप्शन भी बहुत जाता है। प्लस क्या होता है, पानी ओवरफ्लो करने का बिल्डिंग का जो होता है उसका जो बेस होता है वो भी बहुत कमजोर होता है। तो ये सब सारे चीज का एक ही सोल्यूशन हमने उसको बनाया। उसको बना के हमने ये जब आइडिया को डाला तो शॉर्टलिस्टिंग हमारा हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिला, क्योंकि उनका फंड का जो क्राइटेरिया कुछ लंबा था। जिस समय हम स्टार्ट किए थे 2017 में स्टार्ट किए थे इसको, लेकिन उसी समय बिहार गवर्नमेंट का भी स्टार्टअप आया हुआ था, स्टार्टअप बिहार पॉलिसी आया था। अच्छा। उसमें भी हमने इस आइडिया को डाला तो वहां से हमें फंडिंग मिली, बाकायदा 10 लाख की फंडिंग, सीट फंडिंग मिली 10 साल के लिए। इंटरेस्ट फ्री रहेगा आपका, 10 साल तक बिजनेस कीजिए। बिजनेस करने के बाद जो भी आप एक अच्छे मुकाम पहुंचते हैं तो 10 साल के बाद आपको पैसे को आपको EMI में इसको रिटर्न करना है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, शुरुआत हुआ, और अभी हम लोग जो है मतलब कम से कम 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं, क्योंकि बिहार में ही बिजनेस करना, बिहार में ही हम लोग 5 से 6 करोड़ का टर्नओवर किए थे, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोग पैन इंडिया फैल रहे हैं। उड़ीसा में भी हमारा, रांची में भी हमारा ये स्टार्टअप ऑफिस है, वहाँ पे भी हमें झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो है 22 लाख की ग्रांट फंडिंग मिली हुई है। वहाँ पे 22 लाख की ग्रांट फंडिंग मिली है जिसको रिटर्न नहीं करना है आपको। वो बिजनेस करने के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस प्लस जो होता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट जो भी होता है टेक्निकल टर्म्स, उस हिसाब से हमको मिला हुआ है। फिर हमारा जो स्टार्टअप अभी उड़ीसा में भी ऑपरेशनल है, वहाँ पे भी उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से हमें फंडिंग मिली है, 18 लाख की ग्रांट फंडिंग मिली है। 3 स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग फंडिंग लेके, कोई भी हम लोग ने अभी तक अप्रोच नहीं किया है किन्हीं को भी, कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट को या फिर किन्हीं को भी हमने अभी अप्रोच नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसमें कैश फ्लो जो है बहुत बढ़िया है, इसलिए वो जरूरत नहीं पड़ा। अब उसी को हम लोग लगा के फिर आगे बढ़ रहे हैं मैडम।
1: जी जी, बहुत सुंदर आपने बताया कि हर राज्य से आपको मतलब फंडिंग मिल रही है। और आपका सबसे पहले इंस्पिरेशन क्या था, या कुछ आपने पहले से सोच रखा था कि इस फील्ड में मुझे जाना है, करियर बनानी है, या कुछ सोचा था?
0: जी जी, हमारा जब ये इंजीनियरिंग खत्म हुआ 2015 में मैडम, तो हमारा इंटेंशन उसी समय साथ आ गया, क्योंकि उस समय क्या है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज्यादा क्रेज आ रहा था। धीरे धीरे लोगों के मन में आ रहा था कि भाई हमको जॉब सीकर नहीं बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है। तो उस सेक्टर में थोड़ा मेरा माइंड गया कि चलो ठीक है, हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया, एक बार सब ट्राई करते हैं, यदि हो गया तो चलिए अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर तो जॉब आई है अपना। तो वहां से हमारा ये हुआ कि नहीं, अब यदि करना है तो बढ़िया से करना है। और जब सिलेक्शन हो गया तो मोटिवेशन एक मिला, अलग से मोटिवेशन मिला, बढ़िया मोटिवेशन मिला कि नहीं, अब जब आप सिलेक्ट हो चुके हैं, आपको फंड मिल रहा है, तो आप इस सेक्टर को और बूम करिए, इस सेक्टर में जाइए। तो वहीं से इंप्रेशन हमको मिला कि नहीं, अब हमको जो करना है अपना ही बिजनेस करना है, उद्यमी बनना है, एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, जॉब प्रोवाइडर बनना है, ना कि जॉब सीकर बनना है।
1: बहुत सुंदर आप बता रहे हैं अपने बारे में। अच्छा, आपको इस फील्ड में आने में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, तो कुछ ऐसा चैलेंज जो आपको बहुत मुश्किल लगा लेकिन फिर बाद में आसान हो गया, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ?
0: चैलेंजेस मैडम, सबसे पहले कि जिस राज्य में हम लोग रह रहे हैं उस राज्य में जो है लोग जॉब को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, सबसे पहला

0: चैलेंज वही। यदि आप जॉब छोड़ के यदि आ रहे हैं और कोई आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अच्छे खासा पैकेज को छोड़ के यदि बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो पहले तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फैमिली से ही आता है। तो पहले वहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ कि सारे फैमिली को पहले हम कन्विंस करें इस चीज को लिए कि नहीं, हम यदि कर रहे हैं तो हम पर विश्वास रखिए, हम अच्छा चीज करेंगे और इस सेक्टर में बहुत अच्छा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर चैलेंजेस क्या हुआ कि जब हमने स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट, हम जब प्रोटोटाइप डेवलप कर दिए, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हुआ, फैमिली से हमने कुछ अमाउंट लेके अपना स्टार्ट किया था, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा था फंडिंग को लेकर हो रहा था। कि जब आपने प्रोटोटाइप डेवलप कर दिया, टेस्टिंग आपका कंफर्म हो गया, तब मार्केट में आप इसको कैसे लॉन्च करेंगे, किस हिसाब से आप मार्केटिंग करेंगे। क्योंकि प्रोडक्ट आपने बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट को इंड कस्टमर तक पहुंचाना भी आपका काम है। इसको आप किस तरह से इंड कस्टमर के पास पहुंचाएंगे, तो फंडिंग को लेकर इशू हुआ। तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे हम इधर उधर से अपने फ्रेंड सबसे लेके धीरे धीरे करके दो तीन का टीम बना के अपने घर से लेके धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन फिर जो है 2016 में जब स्टार्टअप बिहार में सॉफ्ट लिस्टिंग हुआ, वहां से जो पहला किस्त हम लोग को मिला 4 लाख का, जिसमें आप जिसको डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, तब वहां से फिर जो है हमको वो चैलेंजेस हुआ, धीरे धीरे फंड का कम हुआ और हम लोग प्रोडक्ट को फाइनली जो मार्केट में लॉन्च किए। लॉन्च करने के साथ ही प्रोडक्ट बूम कर गया, मतलब इस तरह का चीज नहीं था मार्केट में, लोगों के लिए भी नया चीज था। 2017 में कुछ नया चीज बन के आ रहा है, लोग को हम लोग डोर टू डोर जाकर के शुरुआत में जब लोग को समझाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोग समझते नहीं थे, सोचते थे चाइनीज माल है, मार्केट में इतना सस्ता मिल जाता है, क्या हम लगाएंगे, एक अलार्म मिल जाता है, अलार्म लगा लेंगे, समथिंग इस तरह की चीजें बहुत सारा था। लेकिन फिर हम लोग ने अपने हिसाब से सारा चीज को बता बता के क्या है नहीं है, प्रैक्टिकल दे दे के सब चीज किया, तब जाके कन्विंस हुए और फिर हम लोग उसको जो है आगे बढ़ा सके।
1: बहुत सुंदर। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आजकल के युवाओं के लिए स्टार्टअप बहुत बड़ी चीज है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या वो भी अपने करियर में स्टार्टअप को इतना महत्व दे सकते हैं?
0: जी जी जी, जरूर जरूर, ये बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है कि आज का जो समय है, आज जिस समय में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ पे जॉब का बहुत कम अब सिनेरियो बचा हुआ है, मार्केट जॉब बहुत कम है, बहुत जो पहला की तुलना में आपका जॉब जो है बहुत कम निकल रहा है, तो हम यही कहना चाहेंगे जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं, जिसको आपने आप विश्वास है कि हम बिजनेस शुरू करेंगे, मेरे पास कुछ है आइडिया, उसको हम बिल्ड करेंगे, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि अब क्या है ना कि गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है, किसी भी गवर्नमेंट का, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे आप बिहार गवर्नमेंट हो, स्टार्टअप को लेकर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता है, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, चाहे फंड के रूप में, चाहे मार्केट के रूप में, चाहे आपको मेंटर्स के रूप में, बहुत सारा चीज आपको अवेलेबल है। आप यदि इस सेक्टर में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो 110% आप आगे बढ़िए, आप विश्वास के साथ आगे बढ़िए, और इतना विश्वास है कि यदि आप 1 से 2 साल अपने अपने इस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को दे देंगे तो 100% आप सक्सेस होंगे।
1: बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु शेखर जी हमसे बात करने के लिए। आकाशवाणी पटना की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित, हिंदुस्तान के सहयोग से जजुआर मध्य पंचायत से ओम सुमंत नाथ ठाकुर बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: मेरे यहाँ अस्पताल बनाया, मेरा ग्राम पंचायत तो कुपोषण मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, टीबी मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, एनीमिया मुक्त हमारा ग्राम पंचायत है, किसी भी गर्भवती महिलाएं की प्रसव के दौरान हमारे ग्राम पंचायत का खुद का अपना एम्बुलेंस है, जो कोई भी व्यक्ति को इलाज के लिए समय रहते गाड़ी के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बनेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित, हिंदुस्तान के सहयोग से, मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है, मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है, मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है, एक काम है बुनकी हुई गली नली है, वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका, यही काम बेसी खास बच्चे है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
5: अब हम बात करेंगे दो पहिया पर लंबे सफर से पहले समझ लें कुछ उसके सुरक्षा उपाय, क्योंकि हम दो पहिया वाहन या और भी वाहन जो हैं उस पर चलाते हैं, तो उसके कुछ उपाय भी हमें जानने चाहिए। खुली सड़क और मोटर बाइक पर नई जगहों को देखने का रोमांच बाइक टूरिंग की असली पहचान है। हालांकि लंबी बाइक यात्रा पर निकलने से पहले कुछ तैयारियां जरूरी है ताकि सफर सुरक्षित और यादगार बने।
6: बिल्कुल भारती, अपनी दमदार मोटरसाइकिल पर लंबा सफर आज युवाओं की पसंद बन चुका है।
5: लेकिन हर रास्ते

0: की अपनी चुनौतियां होती है। पहाड़, हाईवे और बारिश में बाइक चलाते समय कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर सफर को आसान और सुरक्षित बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल, पहाड़ी रास्तों पर निकलें तो मनाली, लेह और स्पीति जैसे पहाड़ी रूट पर अतिरिक्त मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन कम होने लग जाता है, इसलिए बीच बीच में रुककर पानी पिएं और आराम करें। ब्लाइंड मोड़, ढलान या संकटी सड़कों पर बाइक न रोकें। पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है, इसलिए रन गियर, गर्म कपड़े व ज़रूरी सामान साथ रखें, और तो और तेज़ रफ्तार से तो हर जगह ही बचें।
0: बिल्कुल भारती, तटीय रास्तों पर अलग नियम। मुंबई, गोवा व चेन्नई पुंडुचेरी जैसे तटीय रूट पर गर्मी और नमी जल्दी थका सकती है, इसलिए हल्का सामान रखें, पानी पीते रहें और सफर की शुरुआत जल्दी करें जब ट्रैफिक कम और मौसम सुहावना हो।
1: बिल्कुल श्रोताओं, और कम सुविधाओं वाले रूट पर जैसे गुवाहाटी, तवांग जैसे रूट पर पेट्रोल पंप, मोबाइल नेटवर्क और मरम्मत सुविधाएं सीमित हो सकती हैं, इसलिए ऑफलाइन मैप, दवाएं और बेसिक टूल किट साथ में रखना ही चाहिए। यात्रा की योजना जो है वो पहले से ही बना लें। पहाड़ों में के लिए अगर जाना है तो हिमालय 450, और लंबे हाईवे के लिए मीटियोर 350 व अपाचे RTR 310 जैसे मोटरसाइकिलें बेहतर विकल्प है।
0: बिल्कुल, पहाड़ी रास्तों पर हर 1.5-2 घंटे में छोटा ब्रेक लें, लेकिन ब्लाइंड मोड़ या ढलान पर बाइक ना रुके। पड़ाव के लिए हमेशा सुरक्षित और समतल जगह चुनें। लंबे हाईवे पर नियमित अंतराल पर आराम करें और टेक आधा होते ही अगले पेट्रोल पंप की योजना बना लें। रात में रुकने पर रोशनी और आबादी वाली जगह को प्राथमिकता दें। हेलमेट, राइडिंग जैकेट, ग्लव्स व मजबूत जूते जैसे सुरक्षा गियर जरूर पहनें। नेटवर्क कमजोर होने की स्थिति में ऑफलाइन मैप और जरूरी संपर्क नंबर पहले से सेव कर लें। पहाड़ी रूट पर इंजन को ठंडा होने का समय दें।
1: बिल्कुल श्रोताओं, बहुत अच्छी जानकारियाँ हम लोगों ने साझा की है, और इसके साथ ही अब हम सुनते हैं धुरंधर फिल्म से ये प्यारा सा गाना।

0: तो दोस्तों अभी हम सुन रहे थे धुरंधर फिल्म से खान साहब और शाश्वत सचदेव की आवाज में ये गाना। और अब हम जानेंगे स्पोर्ट्स अपडेट के बारे में।
1: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई।
0: लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने भी गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए।
1: चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया।
0: इसके साथ पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 82 रन बनाए 182 रन बनाए, माफ कीजिए श्रोताओं, 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई।
1: मैथ्यू होलार्ट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया।
0: नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उगवे में स्पेन से हार कर
1: टूर्नामेंट
0: टूर्नामेंट से बाहर हो गया है, और कैम्बो बर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के

0: ड्रॉ रहा।
1: ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: दोस्तों तो अभी हमने जाना स्पोर्ट्स अपडेट, और आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना।

0: श्रोताओं, आज जैसा कि हम जान रहे हैं कि अंबुबाची मेला असम का सबसे प्रसिद्ध मेला है जो कि अभी लगा हुआ है, हम जानते हैं, और ये हर वर्ष कामाख्या मंदिर में आयोजित होता है।
1: अम्बुबाची मेला 2026 का आयोजन 22 जून से 26 जून तक आसाम के कामाख्या टेम्पल यानी गुवाहाटी में हुआ था। ये 4 दिवसीय प्रमुख हिंदू धार्मिक मेला है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, ये मेला माँ कामाख्या के वार्षिक रजस्वला का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान देवी को सृष्टि, उर्वरता और नारी शक्ति का स्वरूप माना जाता है।
1: इस दौरान मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है और 25 जून को विशेष पूजा के बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोल दिया जाता है।
0: ये भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। मूल मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी का माना जाता है श्रोताओं, और वर्तमान मंदिर का जो पुनर्निर्माण है वो 1565 में कोच डायनेस्टी के किंग चिलरई द्वारा कराया गया था। बाद में अहोम शासकों ने इसका विस्तार कराया है।
1: बिल्कुल, अब जानते हैं अगला करंट अफेयर्स। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 पदकों के साथ मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया।
0: 2026 में इस प्रतियोगिता का 5th एडिशन था। भारत ने कुल 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते इसमें।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही भारत ने लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया।
0: पिछली बार लीमा में आयोजित चैंपियनशिप में भी भारत 24 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा था।
1: नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा 2 दिवसीय टेक्सटाइल समिट 2026 का आयोजन किया गया, जिसका की थीम था टेक्सटाइल फॉर ग्लोबल मार्केट्स।
0: इसके साथ इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री एकेडमिया और एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
1: समिट का मुख्य उद्देश्य 2030 तक USD 100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेशनल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रोड मैप तैयार करना था।
0: तो दोस्तों, अभी हो चला है वक्त एक गाने का, तो आइए सुनते हैं।

0: दोस्तों अभी हम सुन रहे थे आनंद राज आनंद की आवाज़ में वेलकम फिल्म से ये प्यारा सा गाना। तो अब उस सेगमेंट का हम बारी है उस सेगमेंट की बारी है श्रोताओं, जिसका हम सभी को इंतजार रहता है, शायद आपको भी, यानी रोचक तथ्य का। तो आइए
1: बिल्कुल
0: जानते हैं।
1: बिल्कुल भारती दोस्तों, अब वक्त हो चला है रोचक तथ्य का। पद्मश्री से सम्मानित सुधा वर्गीस ने अपना पूरा जीवन बिहार के सबसे हाशिए पर रहने वाले मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने नारी गुंजन संस्था के जरिए हजारों दलित महिलाओं को शिक्षित किया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उन्हें प्यार से लोग साइकिल दीदी कहते हैं, क्योंकि वे सालों तक साइकिल से गांव-गांव जाकर लोगों की मदद करती रहीं।
0: बिल्कुल, पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर शांति रॉय बिहार की सबसे प्रतिष्ठित स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। पटना में रहकर उन्होंने दशकों तक महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व कार्य किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें बिहार के हर घर में एक सम्मानजनक नाम बना दिया है। हजारों बच्चों के लिए सुरक्षित जन्म की साक्षी रही हैं डॉक्टर रॉय। बिहार में चिकित्सा नैतिकता और सेवा भाव का पर्याय बन चुकी हैं डॉक्टर शांति रॉय।
1: पद्म भूषण और विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मैथिली भोजपुरी और मगही लोक संगीत की पर्याय थीं। छठ पूजा के गीतों में उनकी आवाज़ के बिना त्यौहार अधूरा माना जाता है। उन्होंने बिहार की लोक संस्कृति को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई और अपनी सुरीली आवाज़ से पारंपरिक संगीत को नई पीढ़ी के बीच लोकप्रिय बनाया।
0: बिल्कुल, और साथ ही दरभंगा की रहने वाली भावना कंठ भारत की पहली तीन महिला फाइटर पायलटों में से एक है। हमारी बिहार की महिलाएं कम नहीं है श्रोताओं। 2019 में वे लड़ाकू विमान पर मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली महिला बनी। एक छोटे शहर से निकलकर MiG-21 बाइसन के कॉकपिट तक का उनका जो सफर था, वो बिहार की उन बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो ऊंची उड़ान भरने का सपना देखती हैं।
1: बिल्कुल, आरा में जन्मी मीरा कुमार भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। वे लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। राजनीति में आने से पहले वे एक IFS अधिकारी थीं और उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे दलित माफ कीजिएगा श्रोता, वे दलित सशक्तिकरण और प्रशासनिक कुशलता की एक सशक्त मिसाल हैं। सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर उनकी गरिमामय उपस्थिति ने बिहार की बेटियों के लिए

0: नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं।
1: और जब बिहार की बेटियों की बात हो रही है तो हम मृदुला सिन्हा को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, स्वर्गीय मृदुला सिन्हा एक प्रख्यात लेखिका और गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। मुजफ्फरपुर में जन्मी मृदुला जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से बिहार के ग्रामीण जीवन की बारीकियों को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। साहित्य और सत्ता के शीर्ष पर रहने के बाद भी उन्होंने अपनी बिहारी, जो हम कहते हैं ना बिहारी, ऐसा बिहारी पहचान और माटी की संस्कृति को हमेशा अपनी प्राथमिकता बनाए रखा। तो हमने बहुत सारी महिलाओं के बारे में जाना जो बिहार की एक शीर्ष पर हैं और हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। दोस्तों, हम उनसे हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है ना।
0: बिल्कुल
1: तो आइए, अच्छा लगता है तो अच्छा लगने वाला एक गाना सुनते हैं।

0: दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि गर्मी से हमारा हाल बेहाल हो चुका है।
1: बिल्कुल
0: तो आइए जानते हैं कुछ गर्मी से बचने के कुछ बेहतरीन टिप्स, है ना?
1: हाँ
0: तो आप, गर्मी है तो खूब पानी पिए, प्यास ना लगने पर भी दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें दोस्तों। इसके साथ देसी ड्रिंक्स पिए, जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, आम का पन्ना जैसे होता है, और पुदीने का रस भी पिए। ये शरीर में इलेक्ट्रॉल का बैलेंस बनाए रखते हैं। इसके साथ ही कैफीन से बचें, जैसे चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम से कम करें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट करते हैं।
1: बिल्कुल हल्का खाना खाएं। इस मौसम में तला भुना या ज़्यादा मसालेदार खाने से बचें। हल्का और जल्दी पचने वाला खाना खाएं। और दूसरी बात ये है कि फल और सब्जियां खाएं ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि फल में हो गया आपका तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और टमाटर जैसे पानी से भरपूर फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं दोस्तों।
0: बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही हम कपड़ों का चुनाव करना, जो सही कपड़े होते हैं वो उनका चुनाव हमें एकदम सही से करना है। जैसे कि सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े, ढीले ढाले हल्के रंग के और कॉटन के कपड़े पहने, ये पसीने सोखते हैं और शरीर को हवा लगने देते हैं। इसके साथ डार्क कलर पहनने से बचना चाहिए हम लोगों को, जैसे काले रंग से या गहरे रंग के कपड़े धूप को ज़्यादा सोखते हैं, इससे ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इससे हमें बचना ही चाहिए।
1: बिल्कुल और पीक आवर्स में बाहर ना निकलें, जैसे कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच, जब धूप सबसे तेज होती है, बाहर निकलने से बचें। और बाहर निकलते वक्त ज़रूरी सामान लें, जैसे अगर आप बाहर जाना ही है तो सर को कपड़े या टोपी से ढके और छाते का इस्तेमाल करें और सनग्लासेस ज़रूर पहनें।
0: तो दोस्तों, हम जान रहे थे अभी गर्मी के बारे में, लेकिन अब हम ले रहे हैं आपसे इजाज़त, तो दीजिए भारती और स्मिता को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मघी कार्यक्रम मागधी।

माघधी सुन्निहार के नीलाद्री के प्रणाम। तो आय हन शनिचर हमनी आ गलियन है एक बेर फिर से हिनका लेल माघधी कार्यक्रम के लेके। जैसन कि हमने हर बार चर्चा कर रही है तो आइयो चर्चा करबे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस है। ओकरा पर हर हाथ के काम, हर घर में उद्योग आ आत्मनिर्भर समाज के ओर ई एगो कदम होते। लघु उद्योग आओ आत्मनिर्भरता पर सुनबे लोकगीत कलाकार रंजीत कुमार से आ साथे साथे सुनबे एगो वार्ता, शिक्षा मानव समाज के विकास लेल जरूरी है। वार्ताकार होथिन पूजा शेखर। सूक्ष्म लघु आओ मध्यम उद्यम दिवस जे है हर साल 27 जून के मनवल जा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 2017 में ई दिवस के मनावे के शुरुआत करलखिन हल। एकर उद्देश्य मुख्य रूप से जे हले कि वैश्विक अर्थव्यवस्था आ नया नया आ जे लगातार विकास होवे, सतत विकास में छोटगर उद्योग के जे महत्तम योगदान है ओकरा भी उजागर होवे के चाही। लघु आ

मध्यम उद्यम वैश्विक स्तर पर लगभग 90% व्यवसाय, 65% रोजगार और 50% जीडीपी के प्रतिनिधित्व करे हैं। भारत के अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है ये मजबूत ताकत है। एकर जीडीपी में योगदान 31% से ज़्यादा हन। एकरा से देश में लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा लोगन के रोजगार भी मिलल है। ई क्षेत्र महिला, युवा और ग्रामीण कारीगर के लिए आजीविका के मुख्य साधन है। भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के जे संयंत्र और मशीनरी में निवेश है, एकरा अगर जो टर्नओवर के आधार पर वर्गीकृत करिए हमनी सब, तो सूक्ष्म के निवेश कम से कम 1 करोड़ और टर्नओवर है 5 करोड़, लघु के है 10 करोड़ निवेश, टर्न ओवर होते 50 करोड़, मध्यम के है 50 करोड़ और टर्न ओवर है 250 करोड़।

के निवेश कम से कम 1 करोड़, और टर्नओवर है 5 करोड़, लघु के है 10 करोड़ निवेश, टर्नओवर होते 50 करोड़, मध्यम के है 50 करोड़, टर्नओवर है 250 करोड़। उद्यम के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकारी पंजीकरण पोर्टल खोलल गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार के सहायता प्रदान करे है, साथ ही साथ मुद्रा लोन नियर योजना भी है। हमनी अगुआर बातचीत करबे, अभी सबसे पहले तनी भजन गा लेवल जाए। कलाकार हथिन रंजीत कुमार, सुनथिन ई लोक भजन।

0: दिवस ही आए तो हर हाथ के काम होवे के चाहिए, हर घर में उद्योग होवे के चाहिए, आत्मनिर्भर समाज होवे के चाहिए। लघु उद्योग और आत्मनिर्भरता ऐसा उपाय है कि कम पूंजी, कम जगह, सीमित संसाधन से ई शुरू करल जा सके है। कोई व्यवसाय ऐसा जे स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न करके देश के आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनावे में महत्तम भूमिका निभावे है। लघु और कुटीर उद्योग स्थानीय कच्चा माल, पारंपरिक कला और स्थानीय कौशल के उपयोग करा हथिन। इसे पारंपरिक कला और स्थानीय कौशल के बाहर के क्षेत्र पर निर्भरता घटे है। क्षेत्रीय स्तर पर उत्पादन आत्मनिर्भर बनवा है। ये कृषि पर निर्भर आबादी के खासकर ग्रामीण इलाका में अतिरिक्त आय के साधन दे है। एकरा से पलायन रुक जा है। स्थानीय स्तर पर जो उप उत्पादन होवा है ओकरा से आयात कम होवा है, विदेशी मुद्रा भी बचा है। एकर बाद ये व्यापार संतुलन में सुधार लावा है। बड़का उद्योग के लाभ कुछ हाथ में रह जाए। लघु उद्योग जो है वो समाज के कमजोर वर्ग, महिला, गांव ग्राम के उद्यमी के आर्थिक रूप से मजबूत करे। लघु उद्योग के बढ़ावा दिला से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के प्राप्ति करे लेल भारत सरकार ढेर मनी योजना और तंत्र बनेलखिन हैं। CGTMSE में बिना कोनो जे कह है बेसी कागज पत्र नियम के छोट उद्योग के ऋण मिल जाए है। मुद्रा लोन छोट से छोट आ लम्हर अगर कोई लोन लेवे चाहे है तो उ आधार पर लम्हर लोन मिल जाए है। MSME पंजीकरण के पोर्टल है, एकरा पर पंजीकरण करेला से लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग जो स्थापित करे ले चाह हथिन हुनका लाभ मिले है। तो उम्मीद कर रही है कि एकरा से हमनी के ग्रामीण भाई बंधु जे जानकारी प्राप्त करे ले चाह हथिन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के इने एगो कदम जरूर बढ़ेथिन, ई कदम हुनका आत्मनिर्भरता देने ले जैतन। तो अब सुनथिन एगो वार्ता। शिक्षा मानव समाज के विकास लेल जरूरी है। वार्ताकार हथिन पूजा शेखर।
1: शिक्षा खाली ज्ञान न है बल्कि चरित्र निर्माण, आत्मनिर्भरता और सफलता की कुंजी है। ई अंधार से इंजोर दने ले जा है। ई सोचा कि अगर सूरज न उगे तो दुनिया कैसन लगते। अंधार से भरल, दिशाहीन और ठहरल। ठीक ओसे ही अगर शिक्षा न होए तो मानव जीवन भी अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरा में डूबल रह जाते। शिक्षा खाली किताब के पन्ना तक ही सीमित न होवे है, बाकी ई सोचे समझे और आगे बढ़े के तरीका भी सिखावे है। ई हमनी के सही और गलत के पहचान करावे है और आत्मनिर्भर बने के रास्ता भी दिखावे है। जिंदगी में सफलता पावेला और कुछ अलग करेला शिक्षा सभेला एगो महत्तम के साधन है। ई हमनी के जिंदगी के कठिन घड़ी के चुनौती से सामना करे में सहायता करे है। शहर में तो शिक्षा पावल आसान है, बाकी गांव में बेटी सब कमे उम्र में शिक्षा से वंचित रह जाए। देश में शिक्षा के महत्तम के बढ़ावा देवेला सरकार ढेर सारा जागरूकता अभियान चला रहल है, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, PM पोषण योजना, उन्नत भारत अभियान, PM पोषण योजना, PM श्री मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार पोशाक छात्रवृत्ति योजना। योजना सबके माध्यम से सरकार सब लोग के शिक्षा के जरूरत लगी जागरूक कर रहा है और सबके पढ़ाई ला जरूरी चीज सब भी दे रहा है। ये सब योजना समाज के सब लोग में बराबरी के भावना लावे है और देश के विकास और वृद्धि के बढ़ावा देवे है। शिक्षा के जरिए ही भावी देश के निर्माण होवे है। शिक्षा सबसे पहले पढ़े और लिखे के तरीका सिखावे है। पढ़ना लिखना शिक्षा के पहला सीढ़ी है। अधिकतर जानकारी लिखित रूप में होवे है। अगर हमनी के शिक्षा के अभाव है, चाहे लिखे के कला के कमी है, तो हमनी समाज से दूर ही, समाज में होवे वाला गतिविधि सबसे भी दूर ही। शिक्षा हमनी सबके साक्षर बनावे है। सबसे जरूरी बात है कि रोजगार लगी भी शिक्षा बहुत जरूरी है। ये निश्चित रूप से सभ्य जिंदगी जिए के एगो शानदार मौका है। जब वो नौकरी के बात आवे है तो शायद अशिक्षित लोग के भारी नुकसान उठावे पड़ा है। बेहतर संचार शिक्षा के एगो आउ महत्तम है। शिक्षा हमनी के बानी के भी सुधारा है। शिक्षा हमनी के तकनीकी विकास के इस्तेमाल करेला भी जरूरी है। शिक्षा तकनीकी विकास के इस्तेमाल करेला तकनीकी कौशल भी देवा है। बिना शिक्षा के नया नया मशीन सबके संभालना भी मुश्किल है। शिक्षा ही जीवन के सार है। ये मर्द और मेहरारू दोनों ला समान रूप से जरूरी है, काहे कि स्वस्थ और शिक्षित समाज के निर्माण दोनों लोग मिल के ही कर हथिन। ये इंजोर भविष्य ला

0: राधा के समुझा।
1: अभी अपने सुनलखिन लोक भजन कलाकार हलखिन रंजीत कुमार आ हमने बातचीत कर रही हल सूक्ष्म लघु मध्यम

0: जरूरी होवे के साथे साथ देश के विकास और प्रगति में भी बहुत महत्तम के भूमिका निभावा है। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के निर्माण करा है। अच्छा शिक्षा जिंदगी के ढेर सारा उद्देश्य देवा है, जैसे कि व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक स्तर के बढ़ावा, सामाजिक स्वास्थ्य के सुधार, आर्थिक प्रगति, राष्ट्र के सफलता, जीवन के लक्ष्य निर्धारण, सामाजिक और पर्यावरण के समस्या के बारे में जागरूकता। बाकी ई भी ध्यान रखल जरूरी है कि किताबी ज्ञान के साथे साथ सामाजिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। दिमागी और सामाजिक रूप से शिक्षित मानव कोनो तरह के सामाजिक कुकर्म ना करे है। राष्ट्र के एगो अच्छा नागरिक बने ला भी शिक्षा बहुत जरूरी है। समाज में शिक्षा के बहुत महत्व है। शिक्षा खाली व्यक्तिगत विकास तक ही सीमित न है, बल्कि एकर समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। एगो शिक्षित समाज में लोग अपन अधिकार ला जागरूक होवे हत और उ अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा सबे में भी सक्षम होवे हत। शिक्षा समाज के असमानता के कम करे में मदद करे है और समाज में शांति, सद्भावना और समानता के भी बढ़ावा देवे है। शिक्षा सामाजिक समस्या जैसे कि बाल मजदूरी, दहेज प्रथा, जातिवाद और लिंग भेदभाव के खत्म करे में भी मदद करे है। एगो शिक्षित समाज में लोग ई बुराई सबके समझहत और ई सब के खत्म करे के कोशिश करहत। एकरा अलावा शिक्षा लोग के स्वस्थ जीवन जियेला जानकारी देवे है, जेकरा से उ अपन स्वास्थ्य के ख्याल रख सकहत और बीमारी सबसे भी बच सकहत। शिक्षा हमनी के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य सबके विकास ला भी जरूरी है। शिक्षा हमनी के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्य के भी सवारा है। एगो शिक्षित आदमी सामाजिक जिम्मेदारी के समझहत और उ अपन कर्तव्य के पालन करहत। शिक्षा हमनी के सही और गलत के भेद करेला भी सिखावे है और हमनी के अच्छा आदमी बनेला प्रेरित करे है। मेहरारू सबला भी शिक्षा के विशेष महत्व है। एगो मेहरारू जब शिक्षित होवे है तो उ अपन परिवार के सही तरीका से संभाल सके है, समाज और देश के तरक्की में भी महत्तम के भूमिका निभा सके है। एगो पढ़ल लिखल मेहरारू अपन बच्चा के अच्छा शिक्षा दे सकहत आउ उनका समाज के जिम्मेदार नागरिक बना सकहत। एकरा अलावा शिक्षित मेहरारू दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और लिंग भेदभाव जैसन सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठावे में सक्षम होवहत। शिक्षा एगो ऐसन धन है जेकरा न तो कोई चुरा सके है न कोनो छीन सके है। ई एगो मात्र ऐसन धन है जे बांटे से कम न होवे है, एकर उल्टे बांटे से बड़ा है। हमनी देखबे करे ही कि हमनी के समाज में जे शिक्षित लोग हथिन उनकर एगो अलगे मान सम्मान है और सब लोग उनका बेसी इज्जत भी देवहत। इहे से हर कोई चाह है कि उ भी पढ़ल लिखल और प्रशिक्षित बने। शिक्षा अंधार में इंजोर के किरण है। ई हर रूप में एगो अच्छा जीवन जिए के आशा है। दुनिया में शिक्षा हर कोई के मौलिक अधिकार है और ई बात के नकारल ना जा सके है। अशिक्षित युवा मानवता लगी बड़ा समस्या हत। जन जन के शिक्षा के लहर जन जन तक पहुँचे के चाहिए। काहे कि विकास तब ही संभव है जब राष्ट्र शिक्षित हो, समाज शिक्षित हो। कहल जा सके है कि शिक्षा हमनी के गौरव है, शिक्षा हमनी के शान है, शिक्षा ही है स्वाभिमान हमनी के, शिक्षा ही हमनी के पहचान है। आई हमनी सब मिल के शिक्षा के अलख जलाई।
1: अभी अपने सुनलखिन ई वार्ता, शिक्षा मानव समाज के विकास लेल जरूरी है। वार्ता काढ़लखिन पूजा शेखर आ हिनका ई वार्ता लेल हमनी देहे धन्यवाद। आ देखथिन अभी हमने सब लोक भजन सुनलिए हल रंजीत कुमार जी से, अब हिनके से हमने सुनिए पूर्वी, तो सुनल जाए।

अभी हमने सुनलिए ई झूमर आ आय के कलाकार हलखिन रंजीत कुमार, हिनका दहिए धन्यवाद। आ समय हो गलन है समसामयिकी के, तो देखथिन हमने हिया जे सरकारी स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा होब है या योग्यता परीक्षा होब है, तो ओकरा में बराबर जे है से कुछ न कुछ धांधली देखे ले मिल जाए। तो हाले में महाराष्ट्र में जे शिक्षक योग्यता परीक्षा हले एकर पेपर लीक हो गले हल आ ई पात्रता परीक्षा के स्थगित कर देवल गले। साथे साथ एखनी हमनी के जे दक्षिण बिहार के हिस्सा है पटना गया एने एखने मौसम बदले के संभावना के बतावल गले हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा आ भारी बारिश के चेतावनी भी देवल गले हैं। तो ई तो मन हर्षावे वाला खबर है। एकर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत में अगला साल के दौरा पर आवे के संभावना बन रहले हैं। आ अब आधिकारिक घोषणा भी हो गले हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ई घोषणा करलखिन हैं कि अगला बरिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरा पर अयथिन। आ अभी चल रहलन है फीफा वर्ल्ड कप। हमने सब जाने ये कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 23वां अब वर्तमान विश्व कप है जे फीफा के सदस्य देश के जे राष्ट्रीय टीम है एकरा सब मिल के खेले वाला हर चार साल में चतुर्वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है। टूर्नामेंट 11 जून 2026 के शुरू होले हैं आ 19 जुलाई के खत्म हो जेते। एकर जे है संयुक्त मेजबानी 16 गो शहर में हो रहलन है। 11 गो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, 3 गो है मेक्सिको में, 2 गो है कनाडा में। ई टूर्नामेंट 3 देश से आयोजित होवे वाला पहला फीफा विश्व कप है। एकरा में 48 गो टीम है जे पिछला 32 गो पिछला जे फीफा विश्व कप हले ओकरा में 32 टीम हले, अबरी 48 गो है। मास्को में आयोजित 68वां फीफा सम्मेलन में अंतिम मतदान के समय संयुक्त राज्य अमेरिका मोरक्को के प्रतिद्वंद्वी बोली के हरा के 2026 के विश्व कप के मेजबानी हासिल करल गया। 2002 के बाद ये पहला विश्व कप है जेकर सह मेजबानी कैगो देश मिलकर कर रहा है।

1970 और 1986 के टूर्नामेंट के मेजबानी के साथ मैक्सिको विश्व कप के 3 बार मेजबानी भाई सह मेजबानी करे वाला देश बन गलन है। एकर विपरीत कनाडा पहले बेर इ टूर्नामेंट के मेजबानी कर रहे हैं। कतर में 2022 में विश्व कप नवंबर आ दिसंबर में आयोजित होला के बाद ई आयोजन जे है उत्तरी गोलार्ध के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम में फिर से घूम के वापिस आगलन है। आय न्यूजीलैंड आ बेल्जियम के बीच मैच हो रहा है। ता ई हलन आय के समसामयिकी की आ अब जे है से हमनी के समय अब रहलन है ओड़िया। ता हमनी के अब विदा दथिन, फिर मिलबन, प्रणाम।

अभी आपने मगही कार्यक्रम मागधी सुना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। आइए जान ले आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोता, शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 6:10 पर। और 8:15 पर।

छह बजकर 20 मिनट पर हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे। ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकेंगे 6:30 पर, और खेती गृहस्थी की हम चर्चा करेंगे शाम 7 बजे। शाम 7:30 पर प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे। शाम 7:47 पर जिले की हलचल। सामयिक चर्चा का समय है शाम 7:52।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे 8 बजे। तनु गांगुली के स्वर में कुछ गीत सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत 8:30 पर। हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का वक्त है 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9, 9:15 पर खबरें। राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रात्रि 9:30 पर। 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा। 11:00 हिंदी समाचार और 11:05

मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में भोजपुरी बुलेटिन प्रसारित होंगे।

प्रणाम, ये आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रउआ कुमार सुंदरम से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून के आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से आपन विचार साझा करी हैं। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम के 135वीं कड़ी हुई। कार्यक्रम के प्रसारण आकाशवाणी आ दूरदर्शन के सब चैनल, AIR न्यूज के वेबसाइट आ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर कैल जाई। संगे संगे AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय आ सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी यूट्यूब चैनल पर भी एकर सीधा प्रसारण हुई। मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुनल जा सकेला। एकरा तुरंत बाद मैथिली भाषा में एकर प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से कैल जाई। यही प्रसारण के दोबारा रात के 8 बजे से भी सुनल जा सकेला। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के अध्यक्षता करी हैं। 2 दिनी सम्मेलन में बिहार समेत सब राज्य आ केंद्र शासित प्रदेशन के ग्रामीण विकास मंत्री, बढ़न सरकारी अधिकारी औरी विशेष समग्र ग्रामीण विकास पर विचार करे खातिर जुटी हैं। बैठक में प्रमुख परियोजना के समीक्षा आ ग्रामीण भारत खातिर भविष्य के रूपरेखा तैयार करे पर भी विचार कैल जाई। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र आ राज्य मिल के गांवन के विकास के साझा रणनीति तैयार करी हैं। आज MSME दिवस है। ए मौका पर देश भर में छोटन और मझोला उद्योग के बढ़ावा देवे खातिर कईन गो कार्यक्रमन के आयोजन कैल जा रहल बा। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आ मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के संबोधित करत कहलन हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत के विकसित बनावे के संकल्प के MSME के जोर से पूरा कैल जाई। श्री मांझी कहलन हो कि देश के MSME सेक्टर लगातार रोजगार के मौका उपलब्ध करा रहल बा। वहाँ कहनी है कि 2014 से अब तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र में 38 करोड़ रोजगार के मौका उपलब्ध कराओल गेल बा। बिहार सरकार के पहल पर पंचायती राज विभाग के उरी से अब हर महीना के अंतिम एतवार के राज्य के सब ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस के आयोजन कैल जाई। ये पहल के उद्देश्य ग्रामीण विकास से जुड़ल मुद्दा पर जन भागीदारी बढ़ावल आयोजन समीक्षा के जोर से पंचायत के मजबूत बनावल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काल मुंगेर जिला के टेटिया बम्बर पंचायत से कार्यक्रम के शुभारंभ करी हैं। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से कल प्रदेश के अलग अलग केंद्रन पर बिहार पुलिस के सिपाही भर्ती परीक्षा के आयोजन कैल जाई। 993 पद खातिर आयोजित ई परीक्षा

0: 2002 बैठक में पूरी हुई। पूर्व मध्य रेलवे में शामिल होखे वाला अभ्यर्थी के सुविधा खातिर आज अकाल 13 गो स्पेशल ट्रेन चलावल जाई। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के अलग अलग रेलवे स्टेशन से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया आ सिवान खातिर कुल 6 गो परीक्षा विशेष ट्रेन चलावल जा रहा बा। ओहिजा काल 7 गो परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित हुई। आज हेलन केलर दिवस आज हर साल 27 जून के हेलन केलर के जन्म याद में ये दिन मनावल जाला। ये मौका पर प्रदेश में कई गो कार्यक्रम आयोजित कल गल जा रहा बा। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिनी कार्यक्रम आयोजित कल जा रहा बा। कल हेलन जयंती के पूर्व संध्या पर पटना में परिषद आ बिहार उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग प्रतिभा सम्मान आयोजित कल बा। ये मौका पर लगभग 25 गो दिव्यांग प्रतिभाओं के सम्मानित कल गल बा। मौसम विभाग के आज प्रदेश के कुछ हिस्सा में पानी बरसे का अनुमान जतौले बा। मौसम विभाग अगला 2 से 3 घंटा के बीच रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पटना समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सा में भी कईन जगह पर आंधी पानी के आशा बा। सिवान जिला के 1-2 जगह पर भारी बरखा के लेके ऑरेंज अलर्ट जारी कैले बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजा समाप्त भइल।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोता ये सुने फिल्म संगीत।

लकी अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म में बचना है हसीनों का ये प्यारा सा गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और आडी बर्मन का संगीत। और आइए अब सुने अली जाफर की आवाज़ में ये गाना, फिल्म है चश्मे बद्दूर।

0: श्रेया घोषाल और अली जफर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गाना, नीलेश मिश्रा के बोल।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय आधिकारिक प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलेन डीएमके दलेन सह स्वीय नववर्षीयं गठबंधनं समाप्तम्। प्रसिद्धः तमिल चलचित्र अभिनेता निदेशकश्च के भाग्यराजः अद्य चेन्नय्यां पञ्चत्वे विलीनः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः आकाशवाण्याः मन की बात इति जनप्रिय मासिक कार्यक्रमे देश विदेशस्य जनैः सह स्वीयं मनोगतं विनिमयीकरिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश मंत्री मार्को रूबियो अवदत् यत् ट्रंप प्रशासनं भारतं संयुक्त राज्य अमेरिकायाः अत्यन्तं निकटतमेषु रणनीतिक सहयोगिषु अन्यतमं मन्यते। अपि च क्रीडा वार्तासु, फीफा विश्व कप स्पर्धा मालिकायां मिस्र देशः ईरान देशेन सह अंतिमे जी समूहस्य द्वंद्वे एकम एकम इत्यंकांतरालेन समतावाप्य प्रथमतया फीफा विश्व कप स्पर्धायाः नॉकआउट इत्येतस्मिन् चरणे प्रविष्टः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी त्रिदिवसीय प्रवासार्थं सेशेल्स देशस्य राजधान्यां विक्टोरिया नगरे सम्प्राप्तः। सामाजिक अंतर्जालीय प्रेषिते संदेशे श्री मोदिना विमानपत्तने सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी इत्यनेन कृत भव्य स्वागतस्य भूरि भूरि प्रशंसा विहिता। प्रधानमंत्रिणा प्रतिपादितं यत् सेशेल्स देशः हिंद महासागरे भारतस्य एकः सामुद्रिक सहयोगी दृढः मित्रदेशश्च वर्तते। मोदी अवोचत् यत् सः अस्याः यात्रायाः माध्यमेन उभयोर देशयोः दीर्घकालीन संबंधान् सुदृढीकर्तुं नागरिक कल्याणाय सहयोगं वर्धयितुं संवादं प्रति आशान्वितो विद्यते। अनेन सहैव तेन विमानपत्तने भारतीय प्रवासी जनसमूहाय अपि हार्दिकं स्वागतार्थं धन्यता वचांसि ज्ञापितानि। गदितं च यत् भारतीय प्रवासीभिः यथा स्वसंस्कृतिः संरक्षिता सा श्लाघनीया वर्तते। अवधेयास्पदं वर्तते यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेशल्स देशस्य ऐतिहासिक 50तमस्य स्वतंत्रता दिवस समारोहस्य मुख्य अतिथिः भविष्यति। तमिलनाडु राज्ये वाइको इत्यस्य नेतृत्वे एमडीएमके दलं डीएमके इत्यनेन सह नववर्षीयं गठबंधनं समापितवान्। दलस्य सचिवः वाइको वर्यः अद्य चेन्नई नगरे सामान्य परिषदः सभायाः नेतृत्वं कृतवान्। अपि च सभायां गठबंधनात् बहिर्गन्तुं सामान्यः प्रस्तावः स्वीकृतः। अवधेयं च यत् एमडीएमके दलं 17 वर्षे डीएमके इत्यस्य नेतृत्वे

0: नमस्कार अर्चना बहन।
1: नमस्कार प्रिया बहन। कहीं सब समाचार निमन बानू?
0: समाचार तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन ये गर्मी ने ना बिल्कुल हर किसी के मुंह से यही सुनने को आ रहा है, और हम भी कह रहे हैं कि बड़े परेशान हो गए। मतलब अगर कोई कुछ मन भी कर रहा है कि थोड़ा घर से बाहर निकले, थोड़ा एक होता है ना कि घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं तो बाहर निकले, लेकिन ये चिलचिलाती धूप देख करके बस ये लगता है कि यहीं सुरक्षित हैं, यहीं रहें।
1: अब देखिए, जेकरा जरूरी बात ओकरा तो जाए पड़ी,
0: हाँ
1: लेकिन जेकरा नहीं जरूरी तो अनटेटराही से घूमे से कौन फायदा हुआ, घर में आराम करी।
0: हाँ अब ज़रूरी की जो आपने बात कही, तो अब बात करें कि घर में अगर आमदनी ना हो तो घर कैसे चले। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं कि हम किसी के अंडर ही काम करें, किसी ऑफिस में ही काम करें। बहुत बार
1: देखिए,
0: क्या होता है
1: सबके
0: कि
1: उके कहाँ से नौकरी भेटी,
0: हाँ
1: तो बहुत लोग बारे जे कि अपन व्यवसाय कर रहल बाने, बहुत लोग ऐसन बारे जिनका अपना हाथ में हुनर बा, तो वो अपना हुनर के ही आगे बढ़ा करके आमदनी के जरिया बना ले बाने।
0: मतलब व्यवसाय करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े पैमाने पे अगर कर रहे हो तो ही वो सही है। नहीं, छोटे पैमाने पर भी खुद से करके बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं। और हम बात करें इसके बारे में, इसलिए भी बात मैं छेड़ रही हूँ क्योंकि आज का दिन ना
1: विशेष
0: बहुत
1: बा।
0: ही खास है, आज की तारीख बहुत ही खास है, तो वो खासियत बता दें।
1: एकदम बता दी। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस बा, जे कि हर बरिस 27 जून के मनावल जाला। इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में रोजगार सृजन, नवाचार और सतत आर्थिक विकास में ई उद्योग के महत्वपूर्ण योगदान के मान्यता देवे खातिर स्थापित कैल गेल रहे।
0: बिल्कुल, इस दिवस को मनाने का महत्व और उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योग क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में भारी योगदान देना है। इन्हें देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। छोटे छोटे जो व्यवसाय करते हैं, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम देखते भी हैं और वो चीज़ें खरीदते भी हैं, पापड़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मतलब
1: अचार बा, देखिए कि
0: हाँ
1: कितना कलाकारी के चीज बा, मूंज के टोकरी बा,
0: हाँ
1: ई
0: हाँ
1: बांस के काम बा, तो ये सब तो देखिए बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं खे, लेकिन एकरो से आमदनी तो हो ही रहल बा।
0: बहुत सी ऐसी कलाएं हैं, जैसे कि हम अपने घर में कुछ सीनरी लगाते हैं या कुछ ऐसी कढ़ाई वाली चीज, मतलब जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती है, लगता है कि कुछ अलग है। तो ये सारी जो, और काफ़ी अच्छे दामों पे भी वो बेच पाते हैं, क्योंकि
1: देखिए,
0: उनकी
1: हाथ के
0: मेहनत
1: काम
0: लगती
1: के तो
0: है।
1: मेहनत लागे ला ना,
0: हाँ
1: तो मेहनत लागे ला।

0: तो आमदनी भी बढ़िया होखेला, काहे कि ओकर दाम बढ़िया भेटेला। और ई दुनिया भर में लगभग 90% व्यवसाय के बात कहल जाओ तो इहे उद्यम द्वारा संचालित होखेला। वैश्विक रोजगार में SMME जेवा के योगदान 50% से 70% के बीच बा। ऐसे रोजगार एकरा जरिए लोग के भेटेला जे कि आजीविका खातिर महत्वपूर्ण साधन बा।
1: ये बिल्कुल सही
0: आ
1: बात
0: ई
1: है।
0: छोट व्यवसायी महिला

0: लोग के भेटेला जे कि आजीविका खातिर महत्वपूर्ण साधन बा।
1: ये बिल्कुल सही
0: आ
1: बात
0: ई छोट व्यवसायी महिला आ युवा के आजीविका प्रदान कर सतत विकास लक्ष्य के पाए में मदद कर रहल बा।
1: तो ये जिस तरीके के ये जो मतलब इस तरीके से जो इस दिवस को मनाया जाता है वो बस प्रोत्साहित करने के लिए कि आप में हुनर है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको कहीं किसी के द्वारा मतलब जो व्यवसाय चल रही है वहीं जाके काम करने, आप खुद के हुनर को, आजकल तो बहुत सारी योजनाएं भी आ गई जिसके तहत वो अपने व्यवसाय को शुरू भी कर सकते हैं। जैसे आर्थिक तौर पे क्या होता है कि हम ये सोच करके बैठ जाते हैं कि अरे पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा, बहुत छोटे पैमाने पर भी आर्थिक तौर पर जो संबल नहीं है लेकिन उनमें वो क्षमता है कि वो अपने हुनर को दिखा सकते हैं, तो ऐसे में आर्थिक सहायता भी सरकार प्रदान करती है।
0: और देखिए कि उभरत अर्थव्यवस्था के कुल राष्ट्रीय आय में एकर योगदान 40 से 50% तक बा, और भारत में निवेश आ कारोबार के आधार पर एकरा के वर्गीकृत कैल गइल बा। सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम और मध्यम उद्यम तीन भाग में एकरा के बांटल गइल बा। निवेश 1 करोड़ से कम आ कारोबार 5 करोड़ से कम बा तो ओकरा के सूक्ष्म उद्यम कहल जाला, और निवेश 10 करोड़ से कम आ कारोबार 50 करोड़ से कम भइला पर लघु उद्यम कहाला, और निवेश 50 करोड़ से कम आ कारोबार 250 करोड़ से कम बा तो उ मध्यम उद्यम कहल जाला। यदि रउआ उद्यमी बानी और नया व्यवसाय शुरू करे के सोच रहल बानी तो भारत सरकार के कई एक योजना के माध्यम से सहायता भेटेला। मुद्रा लोन छोट व्यवसायी के 10 लाख तक के ऋण प्रदान करेला।
1: पहले उन योजनाओं के बारे में बता दें कि उद्यमी योजना बिहार या केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से छोटे उद्यमी को प्रोत्साहित।
0: अब जे छोटा शिल्पकार जिनका कहल जाला, मूर्ति बनावे के काम भइल, और देखिए कि वही तरह से जैसे कुम्हार लोग भी बारे थे कितना निमन निमन खिलौना सब बनावे ले,
1: खिलौना बनाते हैं और फिर वो गमला होता है या फिर जो हम वास कहते हैं जैसे कि हम अपने घर के भीतर भी
0: वही तरह से देखिए कि पीतल पर भी जे महीन नक्काशी वाला काम होखेला, लकड़ी पर भी वो तरह के काम देखे के भेटेला। तो ई जे शिल्पकार बारे या कपड़ा पर बुझी की साड़ी पर जे तरह तरह के कढ़ाई होखेला, कश्मीरी कढ़ाई बा, वही तरह से कई को बुनावट वाला रुआ गुजरात के कच्छ कढ़ाई बा, तो ए तरह से कई एक ऐसन कढ़ाई बा बुनाई बा या शिल्पकार जे बाड़े तो वो अपन आजीविका ऐसे कमा रहल बाड़े, और विश्वकर्मा योजना कहनी तो विश्वकर्मा योजना उन्हें लोग के प्रोत्साहित करने,
1: उन्हें लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ये जो दिवस है इसे हम सार्थक करें, अपने हुनर को बिल्कुल सामने लेकर के आए और अपनी एक पहचान बनाएं। जिन लोगों ने अभी तक अपने हुनर को तो जाना पर वो पहचान नहीं बना पाए, वो अपनी पहचान जरूर बनाएं, क्योंकि हमारी पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहचान के साथ ही साथ अब जो है जिसका इंतजार आपको होता है कि अपने कार्यक्रम में हम लोग गीतों की जो लड़ियां हैं वो लगाएं या नहीं लगाएं,
0: एगो गीत सुनल तब बन रहा बा, हमरो मन कर रहा बा कि एगो गीत सुनवा देती रहुआ तो तनी और निमन हो जाए।
1: शाम की बेला है, ऐसे में हम दिया बत्ती दिखाते हैं भगवान को और भजन जरूर गाते हैं, तो क्यों ना एक लोक भजन सुने रमेश कुमार प्रभात की आवाज में।
0: तो चलिए सुन ली।

0: तो अभी हम लोग सुन रहे थे ये लोक भजन रमेश कुमार प्रभात की सुमधुर आवाज में। इनसे आगे भी हम जरूर सुनेंगे, लोकगीतों का आनंद लेंगे। और अपनी बातों के साथ ही साथ हम चाहते हैं कि अपने कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ऐसी विशेष जानकारी अपने श्रोताओं को जरूर दें
1: एकदम
0: जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो आज आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता वित्तीय साक्षरता। भेंट वार्ताकार है निर्मल कुमार प्रभात और भेंट करता है आशीष रंजन।
1: चलिए सुनिए जो
2: आकाशवाणी पटना में आपका स्वागत है। भारतीय दर्शन के चार पुरुषार्थों में एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है अर्थ, धन। धन मतलब फाइनेंस। फाइनेंस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं निर्मल कुमार प्रभात, एनके प्रभात, जो एनके प्रभात एकेडमी के सीईओ एंड फाउंडर हैं और एनआईएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट प्लानर हैं। आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय पर आज मुझे स्टूडियो में बुलाया और मुझे एक अवसर दिया कि देश की जनता को हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में बता सकें और वित्तीय साक्षरता के बारे में लोगों का जानना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। आपको एक बात बताऊं, आज के टाइम में हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं बच्चों को, डॉक्टरी पढ़ाते हैं बच्चों को, चाहते हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, वकील बन जाए, लेकिन फाइनली उसको ये सारा कुछ बनने के बाद जो करना है उसका ज्ञान नहीं रहता है। हम सभी जो

0: तरीके पढ़ते हैं उससे हमारा काम होता है पैसा अर्निंग करना, अर्थोपार्जन करना। ये तो बात आप समझते ही हैं, अर्थोपार्जन तो करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अर्थ जो है वो हमारे मन में कुछ भावनाएं पैदा करती हैं, जैसे ग्रीड मतलब लालच और फियर डर, ये दो चीज पैदा करती हैं, जिसके कारण होता क्या है कि हम कमा चाहे कुछ भी लें, लेकिन लालच के कारण कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारा पैसा नुकसान होता है, और हमारे मन में प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने के कारण हमारा पैसा सेविंग नहीं हो पाता है।
1: जाहिर सी बात है कि आपने भी कहा कि पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोगों को कम जानकारी है, जिसके बारे में लोगों को बताया नहीं जाता,
0: जी
1: उसके
0: जी
1: बारे में बातें कम होती।
0: हाँ
1: पर्सनल फाइनेंस है क्या? इसकी शुरुआत कैसे करें?
0: जी, फाइनेंस एक चीज है कि फाइनेंस जैसे जिसे हम वित्त कहते हैं, एक कैपिटल होता है पूंजी जिसको कहा जाता है, और एक मनी होता है जिसको धन कहा जाता है। अब यहाँ पर धन क्या है और पूंजी क्या है और फाइनेंस क्या है, वित्त क्या है, इन तीनों में अगर थोड़ा सा अंतर समझें तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या चाहिए। पूंजी जो होता है वो चल अचल पूंजी हो जाता है, आप जमीन है वो आपका पूंजी है, मकान है आपका पूंजी है, और धन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे आप धन के आदान प्रदान से आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या अपने शौक को पूरा करते हैं, जैसे धन जो है मनी आपके जेब में पड़ा हुआ है या बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, ये एक तरह का धन हुआ। लेकिन फाइनेंस क्या है आशीष जी? फाइनेंस वो आपका मनी कहलाता है, वो धन कहलाता है जो कि कुछ अर्निंग के लिए, किसी उपार्जन के लिए उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं कि सरकार में भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो कोई कैपिटल मंत्री नहीं बनाता या धन मंत्री नहीं बनाया जाता, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर फाइनेंसेस का यूज करेंगे, वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, तो यही कहलाता है फाइनेंस। अब हमारे लाइफ में भी जो धन हमारा पड़ा हुआ है या जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, धन उपार्जन करते हैं, उसको फाइनेंस के रूप में कैसे कन्वर्ट करें ताकि वो धन हमारे लिए कुछ अर्निंग करके दे या हमारे बुरे दिनों में भी सहायता करें हमारी, तो वही पर्सनल फाइनेंस के कैटेगरी में अगर हम करें उसको। अब देखिए, यहाँ पर आपको दो कैटेगरी बता देता हूँ, एक तो बिजनेस फाइनेंसिंग हो गया और एक पर्सनल फाइनेंसिंग हो गया। तो बिजनेस तो हो गया कि भाई कोई भी आदमी दुकान खोले, बिजनेस करे या कोई भी काम करे तो उसके लिए पैसा चाहिए, वो एक फाइनेंस हो गया। और हम जो अर्निंग करते हैं उसमें हम अपने यूज के लिए जो फाइनेंसेस का यूज करेंगे वो पर्सनल फाइनेंस हो गया।
1: जी, जो बात पर्सनल फाइनेंस की हो रही है, तो ज़्यादातर लोगों को इमरजेंसी फंड के बारे में जानकारी नहीं है, तो इमरजेंसी फंड के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं है, इमरजेंसी फंड के बारे में जानकारी नहीं है, या उन्होंने लाइफ में कभी इमरजेंसी फंड बनाया नहीं है। तो पर्सनल फाइनेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, इमरजेंसी फंड कितना ज़रूरी है और इसको कैसे हम बना सकते हैं?
0: बिल्कुल सर, आपने जो बात कहा यही इसकी मेन चार्म है, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन या पर्सनल फाइनेंस का जो मेन पर्पस है यही होता है, यही जो आपका क्वेश्चन है सब कुछ डिफाइन कर देता है। अब सर, आप कमा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जो 1 लाख कमाए, 2 लाख कमाए, उसके पैसे का प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो वो कभी भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उसको हाथ पसारने के सिवा कोई उपाय नहीं रहेगा। लोगों को कमाते हुए देखा होगा आपने कि लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो वो हाथ फैलाते हैं किसी के आगे, जबकि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको देखिए, पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में कई बातें आती है। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो जैसे आप 30 साल का कोई लड़का है, आज नौकरी ज्वाइन करता है, तो 60 साल के बाद उसका एक विजन होना चाहिए कि अगर कुछ प्लान करता है तो किस तरह से प्लानिंग करेगा। जैसे किसी भी आदमी को अगर आज के डेट में 1 लाख रुपए की नौकरी लगती है तो ईयर दर ईयर क्या ग्रोथ होता है, तो सारा सरकार पहले ही प्लान कर देती है, क्या प्रमोशन होगा, कितना पैसा मिलेगा, कब कितना होगा, ये सारा आपको नियर अबाउट पता चल जाता है या प्रीवियस डाटा से आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसके आधार पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर लेना चाहिए, आपको अपना इंश्योरेंस प्लानिंग कर लेना चाहिए, आपको अपना पर्सनल फाइनेंस में इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी किसी से पूछ के नहीं आता। सपोज करिए कि आप कहीं

0: जा रहे हैं और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में क्या करेंगे? आप एक घर के मेन अर्निंग पर्सन हैं, तो आपका इलाज के लिए, आपके परिवार का सपोर्ट के लिए, आपके बच्चों का एजुकेशन होगा, उसके लिए आपने क्या जमा करके रखा? अगर आपने ऐसा कोई फंड नहीं बनाया तो निश्चित रूप से आपको जमीन बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि परिवार को सपोर्ट चाहिए, आपका इलाज चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि एक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के साथ साथ एक इमरजेंसी फंड जो आपातकाल वित्त होता है, आपातकाल के लिए धन होता है, उसी को इमरजेंसी फंड कहते हैं, अपने अर्निंग में से ऐसे कर्टेल करके रखिए कि वो भी ग्रो होते रहे। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। और इमरजेंसी फंड को हमेशा छेड़ा नहीं जाता है, वो हमेशा के लिए रखा जाता है। गांव में या किसी भी परिवार में औरतें सोना बड़ा प्यार से रखती हैं। सोना का एक क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट, नहीं, वो उसका इमरजेंसी फंड है। लेकिन इसी को अगर आप एक एजुकेटेड भाषा में यूज करें तो अपने से एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए।
1: जी, आपने अच्छा कहा कि सभी लोगों को अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट के अगर क्षेत्र में हम आते हैं और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, सामान्य तौर पर देखा गया है अगर इन्वेस्ट करना है तो हम सोना में इन्वेस्ट करते हैं या ज़मीन खरीदते हैं या फ्लैट खरीदते हैं। इससे इतर अगर हम जाएँ तो हमारा इन्वेस्टमेंट किस तरह का होना चाहिए, थोड़ा विस्तार से बताएँ।
0: अच्छा, तो आशीष जी, ये एक क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है मेरे लिए और मुझे बड़ी खुशी होगी हमारे श्रोताओं को ये बताने में कि सोना एक इन्वेस्टमेंट के लिए लोग यूज करते हैं। लेकिन देखिए, मेरा मानना एज ए इन्वेस्टमेंट प्लानर कि सोना या चांदी, जो जो प्रेशस मेटल्स हैं, इसमें आपके टोटल पोर्टफोलियो का 10-20% इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना अकलमंदी नहीं है, चालाकी नहीं है। आप शौक के लिए अगर चेन रखते हैं, रिंग्स रखते हैं, तो ये शौक के लिए एक आध गहने लीजिए, अब इसको इन्वेस्टमेंट में मत गिनिए, क्योंकि वो घिसेगा, वो एक तरह से यूजेज है। लेकिन अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो 10-20% एट द मोस्ट, ठीक है। इसके अलावे आपका एक ऐसा फंड क्रिएट होना चाहिए जो कि इन फ्यूचर आपको आपकी आवश्यकता की चीज़, आपकी ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर सके। अब देखिए, आजकल लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये सारे इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसको ट्रेडिंग के लत में बदल लेना वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है, वहाँ पर लोग नुकसान कर बैठते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण, प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण आप लॉसेस करते हैं और तब कहते हैं कि शेयर बाजार खराब है। एक्चुअली आप जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो आपको प्रॉपर नॉलेज, इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल की जानकारी होनी चाहिए, तब अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, और आज के डेट में उससे भी एडवांस वर्जन ETF है, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहलाता है।
1: जी, तो ये देखा गया है कि 2020 के बाद यानी कोरोना काल के बाद ट्रेडिंग की लत बढ़ गई है, और जैसा सेबी का रिपोर्ट भी है, लगभग 95% लोग ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
0: आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 2020 के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो लोग घर में बैठे, अब घर में बैठने के बाद उनके पास तो करने के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोगों ने एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढना शुरू किया और उसमें दिखा इनको स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी बढ़ी तो बिना जानकारी का लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना शुरू किए, और ये एक ट्रेडिंग उनका जो हुआ एक लत में बदला, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी होती है कि आप ग्रीड ऑन फियर के चक्कर में पड़ जाएंगे, तो लालच में आ करके खरीदेंगे और डर में आ करके बेचेंगे, जिसके कारण आपके प्रॉपर डिसीजन नहीं होंगे और लॉसेज हो जाते हैं, और ये एक तरह से आपको एडिक्टिव होता है, आपको नशे के लत में डाल देता है। फाइनेंस का एक ऐसा स्वभाव ही है कि नशे के लत में डाल देता है। ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है जिसको मैं कहूँगा। अगर किसी को ट्रेडिंग करना करना है तो प्रॉपर नॉलेज लेकर करें तब तो ठीक है, वरना ऐसे बस काम करना बिना जानकारी का वो जुए के लत जैसा है, वो आपको नुकसान करेगा, हेल्थ को भी नुकसान करेगा।

0: आपके फाइनेंशियल हेल्थ को भी नुकसान करेगा, आपके फैमिली लाइफ को भी नुकसान करेगा। तो जिन्हें भी करना है प्रॉपर नॉलेज लेकर के करें और हमेशा उसमें लगे रहना, कहीं चतुराई नहीं है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग के क्षेत्र में ना आए। जैसे एक मध्यवर्गीय परिवार है जिसकी मासिक आमदनी लगभग 50,000 अगर है, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान किस तरह से करे, किस तरह से म्यूचुअल फंड खरीदे, किस तरह से अपना सेविंग करे कि उसका रिटायरमेंट प्लान भी इसमें शामिल हो सके।
0: बहुत बेहतरीन चीज़। अगर कोई 50,000 रुपया अर्न कर रहा है तो उसको टोटल अर्निंग का कम से कम 20% उसको सेविंग करना ही करना चाहिए। टोटल अर्निंग का 20%, अब इसमें कितना हो जाता है, नियर अबाउट 10,000 रुपया। तो 10,000 रुपया ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है और आपका इससे आपके पर्सनल लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 10,000 रुपया अगर SIP के रूप में और अगर ट्रेनिंग लेकर के प्रॉपरली करते हैं, SIP भी करते हैं सही से सीख करके, म्यूचुअल फंड हो, ETF हो, सीख करके करते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के, तो आपका ये बहुत बेहतर रिटर्न देगा। और अगर 20 साल की बात करें तो 20 साल में एक बहुत अच्छा कॉर्पस बनाएगा। आजकल इंटरनेट पर SIP कैलकुलेटर हैं, आप इंटरनेट पर खोज करके SIP कैलकुलेटर, उसमें देख सकते हैं कि कोई फंड अगर 15% का रिटर्न दे रहा है, 20% का रिटर्न दे रहा है, तो 20 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, 30 साल के बाद आपको क्या मिलेगा। और जनरली आदमी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट वही करना चाहिए जितना आपके पास एक्स्ट्रा फंड है, ना कि आपके जरूरत की चीजों को काट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो 20% एक जस्टिफाइड है।
1: हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आशीष जी, ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है।
2: तो अभी हम सुन रहे थे,
3: कितना उपयोगी वार्ता रहे, तो एक इनका के धन्यवाद दिल बना था।
2: बिल्कुल, निर्मल कुमार प्रभात को और आशीष रंजन को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। और अब जैसा
3: कह ले रहे हैं कि और गीत सुनवाई।
2: हाँ बिल्कुल, तो देवी गीत सुनते हैं रमेश कुमार प्रभात की आवाज़ में।

0: वाह देवी गीत सुनने जा प्रिया बहन, कितना निमन लागल।
1: बहुत ही अच्छा।
0: और एकरे जोरे अब चौपाल के समय भी ओरिया रहल बा, तो खेती गृहस्थी में हमनी के फेन बती आबि जा।
1: खेती गृहस्थी में हम हर बार अपने किसान भाइयों और बहनों की फायदे की ही बात करते हैं, और ऐसे में कुछ ऐसे विषयों पर बात करते हैं जिससे कि उनके पास जो भी जानकारी हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर जो हमारे पास है वो हम अपने बातचीत के क्रम में साझा कर सके। हालांकि हम एक्सपर्ट नहीं है,
0: हमने के देखिए जानकारी तो देवे करी ला जा। और बात एगो यो बा प्रिया बहन की पहले जे गरीबन के खाना कहल जात रहे मोटा अनाज हमने के जगरा कही ला जा, मड़ुआ रागी ज्वार बाजरा जे भी इस सब मकई, तो ये कुल के पहले लोग बुझत रहे कि सब जन मजूर वाला खाना है, लेकिन ये कितना पौष्टिक बा और स्वास्थ्य खातिर कितना निमन बा ये अब हमनी के बुझा रहल बा। तो अब बुझी कि अब हमनी जैसा लोग भी ये खा रहल बाड़े,
1: और हमारी जो सरकार है वो भी इस पे जोर दे रही है कि मोटे अनाज को अपने किचन में शामिल करें,
0: अपना तो, रसोई में देखिए कि रखी ही ना बनाई भी अच्छी आई भी। और खरीफ में मोटा अनाज जेकरा कि श्री अन्न भी कहल जाला, जैसे हम बतेबे कहनी कि मकई ज्वार बाजरा रागी के खेती कल जाला, ये कुल अनाज के खेती में कम उर्वरक कम लागत लागेला, अब पैसा भी खूब भेटेला, तो फिर का दिक्कत बा करे में।
1: बिल्कुल, और खरीफ में उगाए जाने वाले मोटे अनाजों की जो बुआई है उस विषय पर भी हम बात करें। बुआई और मात्रा क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। बात बाजरा और ज्वार की करें तो 4 से 5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, मक्का 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, रागी 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, वहीं सावा या कोदो 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर खेत में मतलब लगाया जाता है।
0: और देखिए कि ये खेती में हम पहले ही रुआ के बतेनी है कि कम लागत और मुनाफा बेसी होला। मकई खरीफ के सबसे लोकप्रिय मोटा अनाज है, और एकर खेती खातिर निमन जल निकास वाला दोमट माटी उपयुक्त होकेला। बाजरा खातिर भी हल्का भुरभुरा बलुई दोमट माटी सर्वोत्तम होकेला। जुआर पहला मानसून के बारिश में जून के दूसरा पखवाड़ा से मध्य जुलाई के बीच एकर बुआई के सबसे सही समय रहेला। रागी के बिया छोट होला, ऐसे खेत में समतल भुरभुरा बनावल जरूरी है। खरीफ मौसम में बुआई आमतौर पर जून से जुलाई तक कईल जाला। सब मोटा अनाज खातिर जमीन में पानी के भराव ना होके के चाहिए, मतलब कहे के कि जल निकासी के उत्तम प्रबंध होके के चाहिए। अब बुआई से पहले बिया के फफूंदनाशी कार्बेंडाजिम से चाहे ट्राइकोडर्मा से उपचारित जरूर कर ली ही, और बिया के गहराई

0: दो सेंटीमीटर से अधिक मत रखें। रागी में कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और बाजरा ज्वार में 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। माटी के जांच के आधार पर यूरिया सिंगल, सुपर फास्फेट और पोटास के इस्तेमाल करें। मोटा अनाज जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होखेले तो कम सिंचाई में भी बेहतर पैदावार देवेले।
1: तो ये
0: जब इतना फायदा बाप तो मोटा अनाज की खेती तो जरूर करे के चाहिए।
1: खेती भी हो और जो उपज हो वो फिर मिला जुला करके हमारे रसोई में और बनाए और स्वस्थ रहें।
0: अब देखिए स्वास्थ्य खातिर भी निमन बा,
1: हाँ।
0: तो अपना स्वास्थ्य खातिर तो ध्यान आदमी के जरूर देवे के
1: और चाहिए। स्वास्थ्य अगर ठीक रहा, स्वस्थ रहे तो फिर हर तरीके की चीजें अच्छी लगती हैं। संगीत,
0: देखिए कहल भी गई बा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन के निवास हो खेला।
1: और मन फिर कहता है कि संगीत तो सुनते हैं रमेश कुमार प्रभात की आवाज में ये प्यारा सा पूर्वी।

0: वाह,
1: चलिए।
0: बहुत ही प्यारा ये पूर्वी हमने सुना रमेश कुमार प्रभात की आवाज में, और समय रहा तो जरूर आगे भी इनसे लोक गीतों का
1: एकदम
0: आनंद
1: सुना
0: लेंगे।
1: जाएगी।
0: और जैसा कि हमने अभी खरीफ में मोटे अनाज की खेती के बारे में हमने बात की, लेकिन साथ ही साथ हमारे किसान भाई और बहन इसके अलावा पशुओं को पालते जरूर हैं, तो
1: हर एक
0: ऐसे में
1: किसान के घर में देखिए तो गाय गोरु तो कम से कम दिखाइए दे रहा।
0: तो जब पशु है तो उनकी भी सुरक्षा, उनके भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है।
1: एकदम
0: तो स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें, इसके लिए जरूरी है कि कुछ विशेष बातों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए और होगी भी। तो इसी पर आधारित एक वार्ता सुनते हैं, पशुओं में संक्रामक रोग। वार्ताकार हैं डॉक्टर संजीव रंजन।
1: चलिए सुनिए जाओ।
2: भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे एक ऐसा विषय साझा करने आया हूं जो सभी पशुपालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका विषय है पशुओं में संक्रामक रोग। यह विषय केवल जानकारी भर नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, आमदनी और पशुओं की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे हम अपने बच्चों और परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पशुओं का स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। कई बार हम यह सोचते हैं कि पशु को सर्दी, बुखार या भूख नहीं लगने जैसी समस्याएं सामान्य होती हैं, लेकिन असल में यह सब किसी बड़े संक्रामक रोग के लक्षण भी हो सकते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इन बीमारियों के बारे में जानें, उन्हें पहचानें और समय रहते रोकथाम करें। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकते हैं। यह रोग हवा, पानी, चारा, संक्रमित पशु के थूक, पेशाब, मल, खून या सांस के जरिए फैलते हैं। यहाँ तक कि कई बार मच्छर, मक्खी, टिक जैसे कीड़े भी इन रोगों को फैलाने में भूमिका निभाते हैं। एक संक्रमित पशु अगर झुंड में खुला घूमे तो पूरी बाड़ा संक्रमित हो सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम इस रोग को पहचानें और पशु को बाकी झुंड से तुरंत अलग कर दें। संक्रामक रोगों के कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसे तेज बुखार आना, पशु का खाना पीना छोड़ देना, दूध कम देना, शरीर पर फोड़े या गांठें होना, सांस लेने में तकलीफ होना, पेशाब में खून आना, खुरों और मुंह में छाले पड़ना, पशु का सुस्त या कमजोर होना, अचानक गर्भपात हो जाना तथा कभी कभी अचानक मौत हो जाना। किसान भाइयों, अगर इन लक्षणों में से कोई भी एक दिखे तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। अब हम बारी बारी से कुछ खतरनाक संक्रामक रोगों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला है खुरपका मुंहपका, जिसे हम फुट एंड माउथ डिजीज या FMD भी बोलते हैं। यह रोग सबसे तेजी से फैलने वाला रोग है। गाय, भैंस, बकरी और सुअर में यह आम है। इसमें पशु के मुंह और खुर में छाले पड़ते हैं, मुंह से लार बहने लगती है, पशु खाना नहीं खाता, चल नहीं पाता, दूध कम हो जाता है और वह कमजोर हो जाता है। यह रोग एक पशु से पूरे झुंड में कुछ ही दिनों में फैल सकता है। इसका इलाज मुश्किल है, लेकिन बचाव आसान है। इससे बचाव के लिए हर 6 महीने में खुरपका मुंहपका का टीका जरूर लगवाएं। दूसरी बीमारी है गलाघोंटू, जिसे हम लोग HS या हेमरेजिक सेप्टिसेमिया भी बोलते हैं। यह रोग मुख्य रूप से गाय और भैंस में होता है। इसमें गले और गर्दन में सूजन आ जाती है, पशु को तेज बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और कई बार अचानक मौत हो जाती है। यह बीमारी खासकर बरसात के मौसम में फैलती है। इसका टीका साल में एक बार बरसात से पहले लगाना चाहिए। तीसरा, लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः गायों और भैंसों में पाया जाता है। यह रोग एक वायरस के कारण होता है। यह रोग पिछले कुछ वर्षों में भारत के कई राज्यों में तेजी से फैला है और हजारों पशुओं को प्रभावित कर चुका है। यह बीमारी एक पशु से दूसरे में सीधे नहीं, बल्कि मच्छरों, मक्खियों, टिक और जूं जैसे कीटों के जरिए फैलती है। इस बीमारी में पशु की त्वचा पर गोल गोल गांठें बन जाती हैं, जिसे देखकर ही इसका नाम लंपी पड़ा है। इस रोग की शुरुआत में पशु को बुखार आता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है और वह कमजोर हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसके शरीर पर छोटी छोटी गोल गांठें उभरने लगती हैं, जो बाद में बड़ी होकर सख्त हो जाती हैं। ये गांठें शरीर के कई हिस्सों जैसे गर्दन, पीठ, पेट, चेहरे और टांगों पर दिखाई देती है। कभी कभी ये गांठें फटकर मवाद भी छोड़ने लगती हैं। इसके अलावा पशु की आँख और नाक से पानी या पस निकलता है, मुँह में छाले हो सकते हैं।

और सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। लंपी डिजीज रोग का वायरस मच्छरों, मक्खियों, टिक, जू जैसे खून चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। इसके अलावा संक्रमित पशु के थूक, लार, मवाद, गोबर या पेशाब से भी यह रोग अन्य पशुओं तक पहुंच सकता है। अगर बीमार पशु के साथ एक ही पानी का बर्तन या चारा साझा किया जाए तो भी यह रोग फैल सकता है। किसान भाइयों, यह एक वायरस जनित रोग है और अभी तक लंपी स्किन डिजीज का पूरी तरह से इलाज नहीं खोजा गया है, लेकिन सहायक उपचार से पशु की हालत सुधारी जा सकती है। पशु चिकित्सक बुखार और दर्द कम करने की दवाएं देते हैं, साथ ही सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती है। पशु को साफ सुथरे स्थान पर रखें, उसे नरम चारा और पर्याप्त पानी दें और शरीरों की गांठों की सफाई एंटीसेप्टिक से करें। अगर मवाद निकल रहा हो तो उसे साफ करते रहें। पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट देना भी फायदेमंद होता है। लंपी स्किन डिजीज से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका टीकाकरण है। स्वस्थ पशुओं को टीका अवश्य लगाना चाहिए। बीमार पशु को तुरंत झुंड से अलग कर देना चाहिए ताकि संक्रमण ना फैले। पशुशाला में सफाई रखें और मच्छर मक्खी जैसे कीटों को पनपने से रोकें। इसके लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें, जल जमाव ना होने दें और पशुशाला में नीम के पत्तों का धुआं करें। बाजार से नया पशु खरीदने पर उसे सूधे झुंड में ना मिलाएं। कम से कम पहले 10 से 15 दिन तक उसे अलग रखें, उसकी जांच करवाएं और ज़रूरी टीके लगवाएं। भारत सरकार और राज्य सरकारें लंपी स्किन डिजीज को नियंत्रित करने के लिए अभियान चला रही हैं। इस बीमारी को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। पशुपालन विभाग कई जगह मोबाइल वेटनरी यूनिट्स भी चला रही है जो आपके पशुओं की जांच तथा उपचार कर सकती है। अगर आपके पशु में लंपी के लक्षण नज़र आते हैं तो आप तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। चौथी बीमारी है ब्रुसेलोसिस। यह रोग गाय और भैंस में गर्भपात का मुख्य कारण है। इससे पशु दूध देना बंद कर देता है और पशुओं को बार बार गर्भपात हो जाता है। यह रोग इंसानों में भी फैल सकता है। संक्रमित दूध पीने या जानवर की देखभाल करते समय संपर्क में आने से यह रोग इंसानों को भी हो सकता है, इसलिए इसे जूनोटिक रोग कहा जाता है। इसका टीका केवल बाछियों को पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार 4 से 8 महीने की उम्र में देना होता है। पांचवी बीमारी है बेबेसियोसिस और थैलेरियोसिस। यह रक्त जनित रोग है जो कीड़ों जैसे टिक और जू के काटने से फैलते हैं। इसमें पशु को तेज बुखार आता है, पेशाब में खून आता है, कमजोरी आ जाती है और जान भी जा सकती है। इस बीमारी का भी इलाज संभव है, लेकिन समय पर पहचानना जरूरी है। पशुपालक भाइयों, कई बार पशु अपनी बीमारी सीधे नहीं दिखाते, लेकिन उनकी दिनचर्या, खान पान, व्यवहार और शारीरिक गतिविधियों में जो बदलाव आते हैं वो संक्रामक रोगों के प्रारंभिक संकेत हो सकते हैं। इसलिए इन लक्षणों को समय रहते पहचानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पशु की आदतों में बदलाव देखें। अगर पशु सुस्त लग रहा है, भूख नहीं है, दूध कम दे रहा है या मुंह और खुर में घाव है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। कभी कभी खून की जांच, थूक, मल या अन्य सैंपल की जांच से भी बीमारी की पुष्टि होती है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई नहीं दें। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, जो है बीमारी की रोकथाम, यानी कि इन रोगों से अपने पशुओं को कैसे बचाया जाए। इसके लिए आप लोगों को कुछ ज़रूरी उपाय अपनाने चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पशुओं का नियमित टीकाकरण। हर रोग के लिए अलग अलग टीकाकरण कार्यक्रम होता है। खुरपका मुँहपका रोग का टीका हर 6 महीने में, गलाघोंटू साल में एक बार, लंपी स्किन डिजीज साल में एक बार तथा ब्रुसेलोसिस बाछियों को 4 से 8 माह की उम्र में एक बार लगाना चाहिए। इसके साथ साथ पशुशाला की रोजाना सफाई करें। गोबर, पेशाब और चारे के बचे हुए हिस्से तुरंत हटाएं। पानी और चारा देने के बर्तन रोज धोएं। बीमार पशु को झुंड से अलग रखें। पशुशाला में नीम के पत्तों का धुआं करें, चूना छिड़कें और कीटनाशक दवाएं प्रयोग करें। टिक और जू को हटाने के लिए दवा लगवाएं। पशुपालक भाइयों, अगर आप कोई पशु बाजार से खरीद कर नया लाते हैं तो सबसे पहले उसे कुछ दिन अलग रखें और डॉक्टर से उसकी जांच करवाएं ताकि कोई संक्रामक रोग दूसरे पशुओं में ना फैले। किसान भाइयों, सरकार पशुओं की देखभाल के लिए कई योजना

0: योजनाएं भी चला रही हैं, जैसे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशु आरोग्य मेले और टीकाकरण शिविर, मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा और पशु बीमा योजना। इन योजनाओं के तहत मुफ्त टीकाकरण, दवाइयाँ और चिकित्सकीय सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसकी जानकारी आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ रोग जैसे ब्रुसेरोसिस, रेबीज, तपेदिक आदि पशुओं से इंसानों में फैल सकते हैं, इसलिए बीमार पशुओं के संपर्क में आने के बाद हाथ धोना, दस्ताने पहनना और कच्चा दूध ना पीना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों और बहनों, पशु पालना सिर्फ दूध निकालने का काम नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। अगर हम अपने पशुओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो नुकसान केवल उनका नहीं हमारा भी होगा। इसलिए संक्रामक रोगों की जानकारी रखें, लक्षण पहचानें, समय पर इलाज कराएं और सबसे ज़रूरी रोकथाम के उपाय जरूर अपनाएं। इसलिए हमेशा याद रखें, इलाज से अच्छा है बचाव। धन्यवाद।
1: तो अभी हम लोगों ने बहुत ही उपयोगी वार्ता सुनी पशुओं में संक्रामक रोग, और वार्ताकार थे डॉक्टर संजीव रंजन, उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी।
2: देखिए कितना फरिया के बतौलन कि जीव जंतु बढ़े तो उनका अगर कुछ बीमारी बात तो तनी ध्यान दी और ज्यादा दिक्कत हुआ तो डॉक्टर से भी दिखा ली। इस तरह से अपना पशु की रक्षा करें। और अब एक और गीत सुने के मन रहा,
1: क्योंकि वादा जो किया था
2: तो चलिए सुन ली ही जाए और ही गीत
1: रमेश कुमार प्रभात की आवाज़ में। वाह गीत।

0: लोकगीत सुना रमेश कुमार प्रभात की सुमधुर आवाज में, जैसा कि हमने वादा किया अपना वादा पूरा किया, लेकिन अब समय हो चला है आप सभी श्रोताओं से विदा लेने का। कल आना है तो आज जाना ही होगा। क्यों
1: एकदम।
0: अर्चना बहन? तो नमस्कार अर्चना बहन।
1: नमस्कार प्रिया बहन।

आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चपाल और खेती गृहस्थी, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी

0: एक्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: अब हर माह के अंतिम रविवार को आपके ग्राम पंचायत में होगा पंचायत विकास दिवस।
4: ग्राम सभा में जानिए

0: योजनाएं, प्राप्त राशि, व्यय, अवशेष राशि और आगामी विकास कार्यों की पूरी जानकारी।
1: चर्चा होगी स्थानीय विकास लक्ष्यों पर, दिखाए जाएंगे उत्कृष्ट पंचायतों के विकास कार्यों के वीडियो
0: और सुना जाएगा प्रधानमंत्री जी का रेडियो कार्यक्रम मन की बात। आइए जुड़िए पंचायत विकास दिवस से।
1: जन भागीदारी से सशक्त ग्राम पंचायत, विकसित भारत, समृद्ध बिहार।
0: पंचायती राज विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी पंचायतों में कल होगा पंचायत विकास दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, भारत को विकसित बनाने का संकल्प MSME के माध्यम से होगा पूरा। और प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी सुना जा सकता है। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। बिहार सरकार की पहल पर पंचायती राज विभाग की ओर से अब प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस माह कार्यक्रम का विषय है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल मुंगेर जिले के टेटिया बंबर पंचायत से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। पंचायत विकास शिविर का उद्देश्य है ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर जन भागीदारी बढ़ाना और योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से पंचायत को सशक्त बनाना। आज MSME दिवस है। इस अवसर पर देश भर में लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के संकल्प को MSME के माध्यम से पूरा किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि आज भारत को विश्व के चौथा आर्थिक व्यवस्था में लाने में कामयाब हुए हैं जापान को पछाड़ करके, और वो चाहते हैं, उनका कल्पना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत के रूप में संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था के रूप में बनाएं, ये उनका स्वप्न है।
3: श्री मांझी ने कहा कि देश का MSME सेक्टर लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 38 करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
4: अन्य विभाग की बात नहीं करता, हम अपने विभाग की बात करते हैं। जो अभी आपने सुना कि आज MSME की जो इकाइयां हैं वो लगभग 8 करोड़ से ऊपर की बात, जिसकी बात कही गई कि 38 करोड़ लोगों को हम लोगों ने MSME के माध्यम से नियोजन दिया, ये स्पष्ट है।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि

पटना के बीरचंद पटेल स्थित शहीद देवीपद स्मारक मिलर हाई स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। श्री चौधरी ने आज विद्यालय का दौरा किया और अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये विद्यालय राज्य के सभी विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत और अनुकरणीय बनेगा। राज्य सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का अपार आईडी अनिवार्य कर दिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा

0: जो उनकी पूरी शिक्षा का रिकॉर्ड सुरक्षित और सुगम बनाता है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एनपी सिंह के खिलाफ एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्राचार्य की गंभीर लापरवाही की जांच उच्च स्तरीय समिति करेगी। श्री कुमार ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।
1: जो मैं निरीक्षण करने गया था 23 तारीख को पीएमसीएच में, प्राचार्य अनुपस्थित थे, तो उनके लिए मैंने एक जांच कमेटी उच्च स्तरीय बैठाने का आदेश दे दिया है। उसके बाद उनका पक्ष रखा जाएगा, वो अपनी बात कहेंगे कि क्यों नहीं थे, उसके बाद उन पर कार्यवाही की जाए। और हमारे विभाग की नीति एकदम स्पष्ट है कि ऐसे ऐसे किसी भी लापरवाह, कर्तव्यहीन, भ्रष्ट या अनुपस्थित रहेंगे बिना बताए, तो उन पर भी आगे कार्रवाई हो सकेगी।
0: गन्ना मंत्री संजय पासवान ने कहा है कि प्रदेश के लोगों को अब मजदूरी के लिए बाहर नहीं जाना होगा। मुंगेर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री पासवान ने कहा कि प्रदेश में आने वाले दिनों में 25 गन्ना फैक्ट्री समेत कई कल कारखाने खोले जाएंगे।
2: मेरी सरकार ने, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक पॉलिसी लाया गन्ना उद्योग विभाग का, जो मॉडल कॉम्प्लेक्स चीनी मिल होगा। आने वाले दिनों में 25 की 25 चीनी मिल खुलेंगे और बिहार से पलायन को रोकना है तो सरकार यहीं पे रोजगार देने का, बिहार में ही रोजगार देने का संकल्प लिया है और जनता के वादे पर खड़े उतरेगी।
0: श्री पासवान ने मुंगेर जिले के प्रभारी मंत्री के तौर पर आज जिले का दौरा किया। इस दौरान बगचपरा में गंगा नदी में डूबने से मृत युवतियों के परिजनों से मुलाकात की और राज्य सरकार की ओर से आपदा राहत राशि 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से कल प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 993 पदों के लिए आयोजित ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पूर्व मध्य रेलवे परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज और कल 13 विशेष परीक्षा ट्रेन चलाएगा। दानापुर मंडल की ओर से आज पटना के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से सहरसा, भभुआ, बेतिया, पूर्णिया, अररिया और सीवान के लिए कुल 6 परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल 7 परीक्षा विशेष ट्रेन संचालित की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के अधिकतर भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून का विस्तार हो जाएगा। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान मधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार और सीवान समेत कई जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, बांका, रोहतास और मधुबनी समेत राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर दोपहर बाद तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मधेपुरा के पुरौनी में सबसे अधिक 76.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 घंटों के बीच अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, गया, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, नालंदा, पटना, पूर्णिया और सुपौल जिले के कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। लोगों से कहा गया है कि अनावश्यक रूप से इस दौरान बाहर न निकलें। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि अग्नि सुरक्षा केवल एक बार का प्रयास नहीं बल्कि सतत दायित्व है। राज्यपाल ने लोक भवन में आज राज्य स्तरीय अग्नि सुरक्षा तैयारी सेमिनार में फायर सेफ्टी डिक्लेरेशन का शुभारंभ करते हुए

ये बात कही। राज्यपाल श्री हसनैन ने कहा कि आगजनी की घटनाओं से होने वाले जानमाल के नुकसान को प्रभावी तैयारी और जागरूकता के माध्यम से कम किया जा सकता है। राज्यपाल ने सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी बिहार के निर्माण के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को 24 घंटे तक ऑनलाइन सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। ऊर्जा विभाग के अनुसार आज रात 8 बजे से कल रात 8 बजे तक विद्युत संबंधी सभी ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। विभाग ने कहा है कि इस दौरान स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का रिचार्ज नहीं होने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। आज हेलेन केलर दिवस है। हेलेन केलर जन्म से ही दिव्यांग थी। देखने और सुनने की क्षमता नहीं होने के बावजूद उन्होंने जीवन में दृढ़ संकल्प दिखाया और अपने लक्ष्य हासिल किए। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इधर कल हेलेन केलर जयंती की पूर्व संध्या पर पटना में परिषद और बिहार उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लगभग 25 दिव्यांग प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज भी मुहर्रम के ताजिया जुलूस का पहलाम किया जा रहा है। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थर की मस्जिद इलाके में स्थित दरगाह में आज दूसरे दिन भी विभिन्न क्षेत्रों से निकाले गए ताजिया का पहलाम जारी है। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने मिशन शक्ति के तहत संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। जहानाबाद के जिलाधिकारी छिरिंग वाई भूटिया ने आज जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जिले में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है, इसे किसानों तक आसानी से उपलब्ध कराया जाए। अररिया जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत नारा लेखन, निबंधन लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में नशा मुक्त समाज के लिए सामूहिक संकल्प लिया गया। कटिहार के जिला शिक्षा पदाधिकारी राहुल चंद चौधरी ने तामगंज मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इन पर छात्रों से विद्यालय अवधि में कीटनाशक का छिड़काव कराने का आरोप है। वहीं नाथनगर मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक को छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। किशनगंज के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने मुहर्रम के दौरान ड्यूटी पर मोबाइल फोन चलाने के आरोप में एक महिला सिपाही को निलंबित कर दिया। रोहतास जिला भाजपा इकाई की ओर से समीक्षा बैठक की गई। पार्टी प्रदेश महामंत्री अभिषेक नितिन ने कार्यकर्ताओं से पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सक्रियता से कार्य करने का आह्वान किया है। सुपौल जिले के विभिन्न स्थानों पर आज दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सिवान जिले के दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रज्ञा प्रवाह की ओर से भारत बोध सांस्कृतिक अवधारणा विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। मुख्य वक्ता के तौर पर रामाशीष सिंह, डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी समेत अन्य ने अपने विचार रखे। शिवहर जिले के विभिन्न अंचलों में आज भूमि विवाद निष्पादन शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एक दर्जन से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। अररिया जिले में जिलाधिकारी विनोद दुहन की उपस्थिति में एनआईसी के रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर्मियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण और पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी की गई। वहीं जिले के आरएस थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दो युवकों को 101 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश की सभी पंचायतों में कल होगा पंचायत विकास दिवस का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के टेटिया बंबर में करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, भारत को विकसित बनाने का संकल्प एमएसएमई के माध्यम से होगा पूरा। और प्रदेश के अधिकांश भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता बढ़ी, अगले 5 दिनों तक विभिन्न भागों में मध्यम से तेज वर्षा का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
1: मधुबनी जिले में मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। पूरे जिले में सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए थे। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी तथा दंडा अधिकारियों की लगातार निगरानी सुनिश्चित की गई। जुलूस मार्गों पर भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। राज्य सरकार ने राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जिसमें मधुबनी जिला को भी सांझा विश्वविद्यालय की स्वीकृति मिली है। विश्वविद्यालय की मंजूरी मिलने पर सांझा विश्वविद्यालय के फाउंडर सह सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर सह विधायक आसिफ अहमद और विश्वविद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर तौसीफ अहमद ने मुख्यमंत्री समाज चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया है। इधर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा बीते दिनों मधुबनी जिला मुख्यालय में आधुनिक अटल कला भवन के निर्माण के लिए 19,73,26,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 620 दर्शकों क्षमता वाले इस आधुनिक ऑडिटोरियम एवं संस्कृति परिसर का निर्माण भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित प्रकरण के आधार पर कराया जाएगा। जिले में पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। जिले में वर्तमान में 5,79,123 पेंशनधारी हैं, जो राज्य में सर्वाधिक है। अब तक 4,71,318 पेंशनधारकों ने अपना प्रमाणीकरण करा लिया है, जबकि 1,17,800 पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण शेष है। जिला अधिकारी अनंत शर्मा ने पेंशनधारकों से अपील करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा के सभी पेंशनधारकों को वर्ष में एक बार अपना जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा समाज के 3 वर्ग वृद्ध विधवा एवं दिव्यांगों को प्रत्येक माह 1100 रुपया पेंशन सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा रही है। जिला अधिकारी ने कहा कि जो पेंशनधारी जीवन प्रमाणीकरण नहीं करा पाए हैं, उनको पेंशन भुगतान मार्च 2026 से विभाग द्वारा रोक दिया जाएगा। वहीं जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर लगातार सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। बीते दिनों जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सहयोग शिविर के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और शिविर में प्राप्त शिकायतों और आवेदनों की प्रगति की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सहयोग शिविर पोर्टल पर अब तक कुल 8,799

0: आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 88% आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। बैठक के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि जन सहयोग शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के निर्देश दिया कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का समय वृद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, किसी भी आवेदन को लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक मामले की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्त भारत सप्ताह के अवसर पर उत्कर्णित मध्य विद्यालय पंडौल में बच्चों के बीच नशे के बढ़ते दुष्प्रभाव के विषय पर पेंटिंग और निबंधन लेखन प्रतियोगिता का आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों एवं युवाओं के बीच नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। प्रतियोगिता में विद्यालय के अनेक छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिले के बेनीपट्टी में कुल 14 राजकीय नलकूप हैं, लेकिन नाला नहीं रहने के कारण इनका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इस मामले पर SDM सारंग पानी पांडे ने संबंधित अधिकारियों से सभी स्टेट बोरिंग की स्थिति पर 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन देने की निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किन किन बोरिंग में किस प्रकार की समस्या है और उन्हें दूर कर किसानों को कैसे लाभान्वित किया जा सके, इसकी सूची भी उपलब्ध कराई जाए। जिले में किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने तथा खाद की कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार सघन निगरानी और औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला अधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी द्वारा लौखी प्रखंड क्षेत्र में खाद दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। झंझारपुर मधुबनी यात्री मार्ग पर आधुनिक और स्वच्छित पिंक बस सेवा 29 जून 2026 से शुरू की जाएगी, जिसका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और आम यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। इस बस सेवा का शुभारंभ नगर विकास एवं आवास तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा किया जाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे मधुबनी जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आकिल हुसैन। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा।
2: नमस्कार, सामयिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं सविता पारीक। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नशा मुक्त भारत पर। श्रोताओं, सभ्यताएं केवल इमारतों से नहीं बल्कि उसके युवाओं के चरित्र और चेतना से निर्मित होती हैं। जब नशे का अंधकार युवा मन को अपनी गिरफ्त में लेने लगे तब समाज और शासन दोनों का दायित्व बन जाता है कि वे संकल्प की मशाल जलाएं। यही संकल्प अब एक नए अभियान के रूप में सामने आया है। जी हाँ, नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम पहल की है। नई दिल्ली में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में आने वाले 3 सालों में देश में मादक पदार्थों के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की बात कही गई है। इस डॉक्यूमेंट पर और ब्यूरो के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: यह दस्तावेज वर्ष 2026 से 2029 के लिए देश में मादक पदार्थों की तस्करी, नशे की बढ़ती समस्या और उससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने का राष्ट्रीय रोडमैप तय करता है। यह विजन डॉक्यूमेंट 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला, परिवर्तन खुफिया तंत्र और संयुक्त अभियानों को मजबूत करना। दूसरा, सिंथेटिक ड्रग्स और उन्हें तैयार करने में उपयोग होने वाले प्रीकर्सर रसायनों पर सख्त नियंत्रण। तीसरा, नशे की मांग को कम करने के लिए जन जागरूकता अभियान, नशा मुक्ति और पुनर्वास सेवाओं का विस्तार। और चौथा, केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, एजेंसियों की क्षमता वृद्धि तथा तकनीक का अधिकतम उपयोग। यह डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस अभियान के लिए डिटेक्ट, डिसरप्ट एंड डिस्ट्रॉय, यानी पहचान करो, नेटवर्क को बाधित करो और पूरी तरह समाप्त करो की रणनीति अपनाई गई है।
4: तो ये लड़ाई के 3 शब्द में वर्णन किया जा सकता है। एक डिटेक्ट, दूसरा डिसरप्ट और तीसरा डिस्ट्रॉय। हमने सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में ह्यूमन इंट और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से भी पूरे तंत्र को, तीनों प्रकार के तंत्र, विदेश से देश में ड्रग पहुंचाने

0: वाले, देश में पहुंचकर उसको राज्यों तक पहुंचाने वाले और राज्यों से उसको उपयोगकर्ता तक पहुंचाने वाले, तीनों प्रकार के कार्टेल को नष्ट करने के लिए हमने आगे बढ़ना पड़ेगा।
1: समाचार कक्ष से मैं सत्यम कुमार।
2: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
0: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
2: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
0: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
2: गृह मंत्रालय के अनुसार देश में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं कि साल 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे। वहीं 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई। ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। इधर देश में मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की गई है। इस अभियान में करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। हर साल जून महीने की 26 तारीख को मादक पदार्थों के गलत उपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर बिहार में भी कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न सरकारी संस्थानों में मादक पदार्थों का गलत उपयोग नहीं करने और इसके प्रसार को रोकने के लिए शपथ का आयोजन किया गया।
3: नशीली दवाओं का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने कार्यालय परिसर को नशीली दवाओं से मुक्त रखूंगा और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा।
2: नशा मुक्त समाज का निर्माण करना सिर्फ सरकार या फिर प्रशासन का कार्य नहीं, बल्कि इसके लिए जन सहभागिता भी बेहद जरूरी है। आइए अब जानते हैं आप किस तरह देश को नशा मुक्त बनाने के लिए इस अभियान में सहभागिता कर सकते हैं।
4: 24/7 यूजर फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्रॉम एमसीबी, जहां आप मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग से संबंधित गतिविधियों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मादक पदार्थों की अवैध खेती की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, ड्रग्स से संबंधित परामर्श और पुनर्वास संबंधी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मानस पोर्टल पर रिपोर्ट कैसे करें? टोल फ्री नंबर 1933 पर कॉल करें। वेब पोर्टल www.ncbmanas.gov.in पर टिप सबमिट करें। ईमेल info@ncbmanas@gov.in के माध्यम से जानकारी दें। उमंग ऐप पर मानस सर्च कर जानकारी साझा करें। आइए एनसीबी के इस मुहिम में भागीदार बनें, साथ ही साथ परामर्श एवं पुनर्वास भी पाएं और नशा मुक्त भारत बनाएं। समग्र भारत में ड्रग्स के विरुद्ध आओ मिलकर लड़े निर्णायक युद्ध।
2: तो श्रोताओं, नशे के विरुद्ध यह लड़ाई केवल मादक पदार्थों को नष्ट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सपनों, संभावनाओं और भविष्य की रक्षा का संकल्प है जो देश के युवाओं की आंखों में बसते हैं। जब समाज और शासन एक दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तभी बदलाव स्थायी बनता है। इसी विश्वास के साथ भारत और बिहार नशा मुक्त भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही तही कार्यक्रम सामूहिक चर्चा का

0: अंक समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया। संपादन सविता पारीक, ध्वनिंकन प्रहलाद कुमार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
3: उड़ान उड़ान उड़ान कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आप सबों के बीच में हाजिर है। इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से पूरे बिहार में हम बज रहे हैं। जी हाँ, युवा साथियों के लिए, उनके करियर के लिए माता पिता से भी बातचीत हो रही है और ये उड़ान कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा संस्थान जो पिछले 27 वर्षों से लगातार युवाओं के साथ BCA और BBA के कोर्स को लेकर लगा है, एक अच्छा शिक्षण संस्थान आर्किड बिजनेस कॉलेज। आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, आर्य कुमार रोड और सगुना मोड़ पटना में है। साथियों, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है और टेक्निकल पढ़ाई करके ही आप अपने करियर में आगे की ओर जा सकते हैं, ऊंचाइयां दे सकते हैं। अगर आप BCA और BBA की सोच रहे हैं और अगर नहीं सोच रहे तो एक बार सोचिएगा, विचारिएगा कि BCA और BBA की पढ़ाई आपके लिए कितना जरूरी और लाभदायक हो सकती है। और अगर आपने सोचा तो जरूर डायल कीजिएगा आर्किड बिजनेस कॉलेज के इस नंबर पर। नंबर है 7520800 यानी 7520800। आर्किड बिजनेस कॉलेज के डायरेक्टर आशीष आदर्श जी से लगातार जी हाँ दो एपिसोड से बातचीत चल रही है। आर्किड बिजनेस कॉलेज के विषय में एक चीज और बता दें कि ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त BCA और BBA के लिए एकमात्र संस्थान है।
4: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
5: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
4: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
5: आर्किड बिजनेस कॉलेज, जहां से BCA या BBA कोर्सेज कर सकती हो।
4: फिर तो आर्किड से ही BCA या BBA करना सेफ है।
6: आर्किड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड़ पटना। कॉल करें 7520800800, याद रखें 7520800800।
3: और अब आइए चलते हैं, आशीष जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कुछ सवाल है हमारे पास, हम सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे और ढेर सारी बातें होंगी आपके करियर के लिए, क्योंकि ये करियर काउंसलर भी हैं। आशीष जी, बहुत बहुत पहले तो आपका स्वागत है एक बार फिर से उड़ान कार्यक्रम में। और हम आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहते हैं और वो ये है कि BCA और BBA या कोई भी कोर्सेज अगर करने स्टूडेंट जाते हैं ना, तो संस्थान का चुनाव हाँ कैसे करें, क्योंकि आज बहुत ज्यादा चकाचौंध है, इतने ज्यादा संस्थान हैं, हाँ तो इसमें संस्थान का चुनाव बहुत मायने रखता है।
7: देखिए, एक बात बताता हूँ, आप कोई भी संस्थान का विज्ञापन उठा के देखिए, हर संस्थान अपने आप को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगा। आपको यह देखना है कि उस संस्थान के जो पहले के जो छात्र हैं उनका क्या मंतव्य है। अगर आपको कोई वैसे स्टूडेंट मिल जाए जो आर्किड बिजनेस कॉलेज से पढ़ा हो, आप जरा उससे बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि वो किस प्रकार का स्टूडेंट है, क्या उसको पढ़ाई की कैसी उसको चीजें मिली। नंबर वन। नंबर टू, आपको ये देखना है कि जिस ध्येय से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने BCA किया या BBA किया, उसके बाद आपको जॉब मिलता है कि नहीं मिलता, परसेंटेज कितना है, जॉब कितना परसेंटेज। अभी मैं आपको जस्ट अभी बताऊं, अभी तकरीबन पिछले महीने 2026 के प्लेसमेंट्स की बात में करता हूं, अभी तक लगभग हमारे यहाँ 450 स्टूडेंट करीब पास आउट करके निकले हैं, लगभग 200-225 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है, 200-225 के बीच में। और बाकी अभी कंपनियां, 4-5 कंपनियां, बहुत सारी कंपनीज ऐसा बोलती है कि भाई एग्जाम के बाद हम, परीक्षा के बाद हम उनको इन कैंपस इंटरव्यू आपके यहाँ करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए हम छुट्टी नहीं देंगे। अब परीक्षा खत्म हो चुकी है पार्ट 3 की, रिजल्ट भी अब एक दो दिन में आने वाला है, तो इसीलिए अब बहुत सारी कंपनीज लाइनअप कर रही हैं, वो आ रही हैं। और हम ये बात आश्वस्त करते हैं हर स्टूडेंट को कि आपके लिए कम से कम 10 कंपनी का हम इन कैंपस इंटरव्यू लेकर के आएंगे, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन होगा ही। बस आपको अपनी क्लासेस में अपनी जो अटेंडेंस रखनी है और अपने कोर्स के ऊपर में पूरा फोकस करना है, बाकी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं।
3: एंड फैकल्टी, टीचर्स?
7: देखिए, टीचर तो किसी भी संस्थान का की आत्मा होती है। आपके यहाँ अगर अच्छे टीचर होंगे तभी वो एक अच्छा

0: ज्ञान दे सकते हैं, अच्छा एक आपको नॉलेज दे सकते हैं। टीचर्स के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते। हमारे यहाँ आप स्टूडेंट से बातचीत करेंगे तो वो हमेशा ही, अभी आप रिव्यूज़ देखिए, आप आर्केड बिजनेस कॉलेज के वेबसाइट पर चले जाइए, abcollege.org भी है और abcollege.in भी है। abcollege.org राजेंद्र नगर कैंपस का है, abcollege.in सगुना मोड़ कैंपस का है। आप वहाँ जाकर रिव्यूज़ देखिए या गूगल में डालकर रिव्यूज़ देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आर्केड बिजनेस कॉलेज का क्या स्थान है, उसकी क्या विश्वसनीयता छात्रों के बीच।
1: बहुत खूब आशीष जी, आपने एकदम सिलसिलेवार तरीके से बता दिया और ये भी ऑनेस्टी के साथ कहा कि हर संस्थान जो है बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन देता है और दो तीन चीजों को आपने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा एंड ऑफ द डे जो रोजगार की बात होती है कि पढ़ने के बाद रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आपने खुलकर बातें की हैं एकदम साफ साफ। यही चीजें मुझे पसंद हैं। इसके अलावा टीचर्स को आपने संस्थान की आत्मा कहा, जो 100% सही है। खुले मन से, खुले दिमाग से बातें होनी चाहिए क्योंकि ये स्टूडेंट के करियर का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है। बीसी और बीबीए बहुत ही वाइब्रेंट है। टेक्निकल पढ़ाई अगर हम जानना चाहें ना तो बीसी और बीबीए की पढ़ाई बहुत वाइब्रेंट है, रोजगार भी मिल जाता है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं जिन्होंने 27 वर्षों से बीसी और बीबीए की पढ़ाई जारी रखी है और आज एक स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का आर्केड बिजनेस कॉलेज। हम नंबर दे रहे हैं, जरूर बात कर लेंगे, डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। और कोई सोचिएगा नहीं, विचारिएगा नहीं, एक फोन कॉल जरूर बनता है आपके अपने अच्छे फ्यूचर के लिए। और नंबर है 7520800800। आशीष जी, हम दूसरे संस्थानों पर बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें कुछ बुरा लग सकता है, एक जनरल बातचीत हो रही है और हमने आर्केड बिजनेस कॉलेज को हाँ इसके सेंटर में रखा है क्योंकि एडमिशन ले ना ले लेकिन सही जानकारियां लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपने जो सफर 27 साल पहले बीसी और बीबीए को लेकर शुरू किया, लेकिन अभी तो एकदम बंच ऑफ कोर्सेज हैं आपके पास, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, एडमिशन हो ना हो ये बाद की बात आती है, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि कोई भी इस तरीके के कोर्सेज में जाने से पहले 7520800 नंबर है, जरूर फोन करके बात कर लेंगे। बहरहाल बताइए अपने कॉलेजेस, अपने इस तरीके के टेक्निकल कोर्सेज के बारे में।
0: देखिए, आर्केड ग्रुप के ऑल टुगेदर 3 कॉलेजेस हैं, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर, एक आर्केड बिजनेस कॉलेज सगुना मोड़ और एक एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन एक नया परिसर है, 2017 में शुरू हुआ, ये नेवरा में है, मतलब दानापुर स्टेशन से लगभग 10 मिनट लगता है जाने में। वहाँ पर हमने बीसी बीबीए के अतिरिक्त एमबीए एमसीए, बीएड पहले से वहाँ चल रहा है, एमबीए और एमसीए ये दोनों प्रोग्राम शुरू किए हैं और ये हमने 2025 से शुरू किया है। और आपको सुनकर के अच्छा लगेगा कि सारी जो जितने भी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो सब हमारी फुल हो रही हैं और काफ़ी अच्छे संख्या में छात्र आ रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी लगता है कि जब हमारे पास एमबीए एमसीए की व्यवस्था है यहाँ पे, अब वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के साथ, हमारे यहाँ जो है छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड खुद आराम से हम सारा प्रोसेसिंग करा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है कि हम कैसे इसको करेंगे, तो हम तो सभी स्टूडेंट्स को ही कहते हैं कि भाई तुमको कोर्स करना है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी लेनी है, तुम हमारे पास चले आओ, तुम्हारा सारा काम, सारा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, सारा कुछ हम तुमको समझाएंगे, समझा करके सारा प्रोसेसिंग तुम्हारा करा करके तुमको हम पेपर दे देंगे। तो सारी चीज़ें उसके बाद से फिर एक दो प्रक्रिया है जो प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ता है, जा करके एक जगह फॉर्म जमा करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जितनी भी सारा गाइडेंस हमारी तरफ से होगा, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सारी इन सुविधा के दौरान के साथ साथ में आप एक बहुत ही स्मूथ तरीके से अपना कोर्स हमारे यहाँ से पूरा कर सकते हैं।
1: कितना कितना चेंजेज आया है बच्चों के टेम्परामेंट।
0: देखिए, ऐसा है कि अगर आपके पास अच्छे टीचर हैं और आपकी पढ़ाई अच्छी है तो छात्र कभी भी आपको कभी कुछ नहीं बोलेगा, वो हमेशा आपके आपके साथ रहेगा। तो स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट सही है, अगर आप अपने काम में ठीक हैं, अगर आप अपने कॉलेज में अच्छे से बच्चों की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से उनको आप ट्रीट कर रहे हैं, उनको सारा, आज आपको बताऊं कि बिहार का शायद ये एक ऐसा एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जिसमें इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब कभी हम लोग किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाते हैं, कभी किसी को, वेबसाइट पे आप जाके देखिए, आपको दुनिया भर की चीजें, एक्टिविटीज होती हुई नजर आएंगी।
1: उड़ान कार्यक्रम चल रहा है, लगातार हम आते हैं हर एक साल इसी समय और इस रेडियो कार्यक्रम उड़ान के माध्यम से अपने युवा

0: साथियों को जानकारियां देते हैं टेक्निकल पढ़ाई की, खास करके बीसीए और बीबीए के बारे में। और ऐसी स्थिति में हम गार्जियन से भी कहते हैं, हमारे बड़ों आप भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जरूर इससे कुछ आपको भी पता चल रहा होगा कि संस्थान के अंदर जहां आपके बच्चे पढ़ने जाएं क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उन्हें मिलनी चाहिए जो उनके अपने करियर में उन्हें ऊंचाइया देगा। आप भी फोन कर सकते हैं, खुलकर फोन कीजिए, सवाल पूछिए, जो भी आपके अंदर में है ना सवाल उसको पूछ डालिए, आफ्टर ऑल आपके बच्चों का सवाल है। और नंबर है 7520800800। अब जैसे हम इसमें बताते हैं कि स्थायी मान्यता प्राप्त, हाँ किसी को टेम्प्रोरी मान्यता भी दे दी जाती है, किसी को 2 साल 4 साल इस तरीके से भी होता है, लेकिन संस्थान यदि स्थायी मान्यता प्राप्त है ना तो कहीं से कोई डरने की जरूरत भी नहीं है। और आर्केड बिजनेस कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से स्थायी मान्यता प्राप्त संस्थान है।
1: मेरे कॉलेज की मान्यता समाप्त हो गई है।
2: क्या तुमने स्थायी मान्यता वाले कॉलेज में दाखिला नहीं लिया था?
1: स्थायी मान्यता का कौन सा कॉलेज है बिहार में?
2: आर्केड बिजनेस कॉलेज, जहां से बीसीए या बीबीए कोर्सेज कर सकती हो।
1: फिर तो आर्केड से ही बीसीए या बीबीए करना सेफ है। आर्केड बिजनेस कॉलेज, राजेंद्र नगर एवं सगुना मोड, पटना। कॉल करें 7520800800। याद रखें 7520800800।
0: आशीष जी, अब एक सवाल ऐसा जिस पर बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं ऑलमोस्ट पूरे बिहार से, कि गांव के रहने वाले हैं, हमारा कम्युनिकेशन स्किल या अंग्रेजी हमारी थोड़ी कमजोर है, हमें झिझक है, हम शहर में आके वैसे बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, इसके विषय में बताइए कि आप कहाँ डिफरेंट हैं दूसरों से।
3: देखिए वही मैं बता रहा हूँ, देखिए गांव के लड़कों बच्चों के साथ में एक ही डिमेरिट है, वो है कि उनका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा पुअर है, वो ना अंग्रेजी ढंग से बोल पाते हैं ना हिंदी ढंग से बोल पाते हैं, और उसके अलावा स्किल्स की कमी नहीं है। आप आज देखिए ना, जितने भी टॉपर्स हैं सब गांव देहात के स्कूल्स के निकलते हैं, कहाँ कल टैलेंट में कमी है। तो मैं समझता हूँ कि उस सभी स्टूडेंट्स को हमारे पास आना चाहिए। मैंने जैसा भी आपको बताया कि हम लोग शुरू में जो भी बच्चे जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं उनके लिए एक स्पेशल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप कराते हैं, जो उसको अटेंड करना पड़ता है, जिसके बाद वो लड़का स्मार्ट हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें वो उसके दिमाग से निकल जाती है, जो एक जो टैबू जो है काफ़ी दिमाग में जो चीज़ें मतलब भ्रांतियां हैं वो ख़त्म हो जाती है, और अपने आप को वो अपने आप 3 महीने के बाद खुद को उसको समझ में आएगा कि मेरे अंदर क्या तब्दीली हुई। जो बच्चा आपको मैं ऐसे ऐसे बच्चों से मिला सकता हूँ अपने यहाँ से, जो जिसको एक लाइन बोलना नहीं आता था, डरता था बोलने में, आज वो स्टेज पर खड़ा होकर के परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम बेहतर से बेहतर वहाँ पे वर्कशॉप कराएंगे जिससे उन बच्चों के अंदर का जो झिझक है वो खत्म होगी, क्योंकि झिझक अगर करके कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा तो कभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको निश्चित तौर पर अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, और उसमें हम उसकी पूरी मदद करेंगे।
0: जवाब मिल गया जिन लोगों ने भी फोन कॉल करके पूछा था उड़ान में कि हमारा क्या होगा। अरे आशीष जी ने कहा आप किसी से कम नहीं है, बस चंद दिनों के बाद आप कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकते हैं। टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी मित्रों। बीसी और बीबीए बहुत ही उम्दा कोर्स है, और उतना ही उम्दा है आर्केड बिजनेस कॉलेज। आप एडमिशन लें ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फोन करके जरूर बात कीजिएगा, जानकारियां लीजिएगा, जिससे इंस्टीट्यूशन को चुनने में आपको मदद मिल सके। नंबर है 7520800800। जी हाँ आशीष जी, चलते चलते कुछ कहना चाहिएगा।
3: ये जो समय है, दो समय में से कोई एक समय चुनना है, या तो अभी 5 साल की मेहनत पूरे जीवन भर का आराम, या अभी 5 साल का आराम पूरे जीवन भर कशमकश, चुनना आपको यही है। और स्टूडेंट्स को भी अपने लिए स्वार्थी हो जाना चाहिए पूरी तरह से, और ये 5 साल वो अपना पूरा फोकस करे अपने पढ़ाई में और अपने करियर को बनाने में।
0: थैंक यू आशीष जी, बिल्कुल सही कहा, एकदम सेल्फिश हो जाना चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड। 5 साल या जो भी साल अभी के हैं उसमें खूब मेहनत और भविष्य निर्माण की बातें होनी चाहिए। बहरहाल टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, बीसीए और बीबीए बहुत ही उम्दा कोर्स है, इसमें आगे चल के आप एमबीए और एमसीए करके अपने करियर को और सजा सकते हैं। फिलहाल उड़ान कार्यक्रम का लक्ष्य है सही चीजें आप तक पहुंचाना, हम सिर्फ ऐसी बात कर रहे थे जिससे कि आपको आधार मिल सके, जानकारियां मिल सके, उड़ान कार्यक्रम इसीलिए आता है। बहरहाल आर्केड बिजनेस कॉलेज का हम नंबर बताना चाहेंगे जहां से आप जानकारियां ले सकें, 7520800800। फोन कीजिएगा, जानकारियां लीजिए, सवाल पूछिए, और करियर में आगे बढ़ जाए।

0: आइए राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आर्किड बिजनेस कॉलेज राजेंद्र नगर और सगुना मोड़ पटना।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए आनंद ले फिल्म संगीत का।

मोहित चौहान की आवाज़ में आइए सुने फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का ये गाना, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत।

नीरज श्रीधर की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म तुम बिन का ये गाना। इस गाने को लिखा था कुमार ने और धुन तैयार की थी प्रीतम ने। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म राज का ये गाना। इस गाने को लिखा था सईद क्वादरी ने और धुन तैयार की थी राजू सिंह ने। इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारे कलाकार हैं तनु गांगुली, इनसे सुनते हैं कुछ गीत।

0: आपने भी कार्यक्रम सुगम संगीत सुना। हमारी कलाकार थीं तनु गांगुली, इनके स्वर में आपने कुछ गीत सुना। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, MSME क्षेत्र

0: की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पेगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पेगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेन देन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जिस व्यवसाय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट

0: kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच दो सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।

0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें योम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जना मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वजीर आजम ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जनाब मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं, जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम के मफाद में इश्तराक में इजाफा करना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोटानिकल गार्डन भी गए और वहाँ पौधा लगाने की तकरीब में शामिल हुए। तकरीब के दौरान जनाब मोदी ने सेशेल्स के सदर की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। वजारत खारजा के मुताबिक पौधा लगाने की तकरीब एक पेड़ माँ के नाम पहल का एक हिस्सा थी और इससे पायदारी और माहौलियात की खातिर भारत सेशेल्स के दरमियान मुश्तरक अज़्म की अक्कासी होती है। वो बोटानिकल गार्डन में जॉइंट टॉर्टोइज एनक्लोजर भी गए। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वहाँ आबाद भारतीय बिरादरी से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय बिरादरी ने दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा एक मुतहरिक पुल का काम किया है, इससे अवाम के दरमियान रबते मुस्तहकम हुए हैं। खैर सगाली के खसूसी कदम के तहत वजीर आजम मोदी ने सेशल्स के सदर को भारत में तैयार करदा गश्त के लिए तेज रफ्तार बहरी जहाज सुपुर्द किया। उन्होंने उन्हें 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी गाड़ियां और 5 लेजर रेडियल कश्तियां भी सौंपी, जो सेशल्स की तरक्की और सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बनाएंगी। वजीर आजम मोदी सेशल्स के तारीखी यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी होंगे। वो सेशल्स की कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम हैं। दिल्ली से अक्षत की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय बहरिया का अंदरून मुल्क तैयार करदा निगरानी से मुतालिक बहरी जहाज INS इक्षक जनूबी मगरबी बहरे हिंद खित्ते में इसकी तैनाती के हिस्से के तौर पर सेशेल्स में विक्टोरिया बंदरगाह पहुंच गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि सेशेल्स के 50वें कौमी दिन के मौके पर यह बहरी जहाज वहां पहुंचा है। इसने मजीद कहा है कि इससे भारत और सेशेल्स के दरमियान बढ़ती बहरी शराकतदारी और देरीना दोस्ती का इजहार होता है। इस दौरान INS इक्षक कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत करेगा और सेशेल्स की दिफाई अफवाज के साथ सिलसिलेवार पेशावराना रबते कायम करेगा, जिनका मकसद बहरी इश्तराक और एक दूसरे के तरीक़ेकार से वाकफियत में इजाफा करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरे के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज गांधीनगर में नायब वजीर आला हर्ष सिंघवी की मौजूदगी में जिला तरक्याती तालमेल और निगरानी कमेटी की सदारत की। वजीर मौसूफ ने मरकज की कई अहम स्कीमों पर अमल आवरी का जायजा लिया। किसानों को माली एतबार से बाख्तियार बनाने की गरज से जनाब शाह ने एक तेज रफ्तार सर्वे कराए जाने की बात कही, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जमीन रखने वाले हर किसान को कम अज कम 2 मवेशी मुहैया कराए।

0: जाए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि दुनिया भर में किसी भी मईशत की मजबूती बहुत छोटे छोटे और मुतवस्सित कारोबारी इदारों के इसके शोबे के इश्तराक पर मबनी होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई के दिन 2026 उद्यमी भारत की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एमएसएमई का शोबा पहले सिलसिले के एंटरप्रेन्योर्स के हौसले और कारोबारी जज्बे की अक्कासी करता है। नायब सदर ने कहा कि यह शोबा मुसलसल आला मियारात को बरकरार रखते हुए मुल्क की कुल बरामदात में तकरीबन 50% का तआवुन कर रहा है। जनाब राधाकृष्णन ने मजीद कहा कि एमएसएमई का शोबा 2047 तक विकसित भारत की जानिब मुल्क के सफर में एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
1: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
0: इज्तम से खिताब करते हुए एमएसएमई के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने कहा कि मरकजी बजट से एमएसएमई के शोबे के लिए हुकूमत की तरजीह और अज्म का इजहार होता है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत एक ऐसे इको निजाम की तश्कील के लिए अहदबंद है जहां हर कारोबारी को इख्तरा तरक्की और मुल्क की तामीर में तआवुन करने के बराबर के मौके मयसर हों।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
0: वज़ीरे आज़म के म्यूजियम और लाइब्रेरी पीएमएमएल में आज आंजहानी वज़ीरे आज़म पीवी नरसिम्हा राव के 105वें यौम पैदाइश के मौके पर उनकी हयात और विरासत के तई वक्फ एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह पीएमएमएल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदरनशीं नृपेंद्र मिश्रा ने किया और प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगी इस नुमाइश को देखने वालों के लिए खोल दिया। इस नुमाइश में ऐसी नायाब तस्वीर, सरकारी दस्तावेजात, तकारीर, खतों मुरासले और आर्काइव से मुतालिक साजो सामान रखा गया है जिससे अवामी जिंदगी में नरसिम्हा राव के काबिल कद्र सफर का इल्म होता है। वजारत दिफा ने आज कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी पोस्ट्स गर्दिश कर रही हैं जिनकी रूह से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पिछले बरस 28 जुलाई को पार्लियामेंट के ऐवान में दिए गए खिताब की गलत तर्जुमानी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि इन पोस्ट्स में उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को अलग करके इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे ये झूठा गुमान गुजरता है कि जनाब सिंह ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय फौजी की जान तलफ नहीं हुई है। वजीर दिफा के बयान के तनाजुर की वजाहत पेश करते हुए वजारत ने कहा है कि जनाब सिंह के खिताब के वक्त मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक मखसूस मुस्तकिल और पुर असर बयानिया उभरा जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलट्स की जानें तल्फ हुई हैं। वजारत ने कहा है कि ये बयान कतई गलत था, इसके बावजूद इसे बहुत शिद्दत के साथ तूल दिया जा रहा था जिसमें वाज़ेह तौर पर ऑपरेशन की कामयाबी को कम करने और अवामी जज्बात को मजरूह करने की नीयत कार फरमा थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का एतराफ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर खोज किया जाएगा। इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश आए हालिया वाकयात से उसे इंतहाई अफसोस और सदमा पहुंचा है। इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि SIT की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अतियात से मुतालिक मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है जिसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी से मुतालिक पेपर लीक होने के एक बड़े वाकये का राज भिवंडी में फाश हुआ है। इम्तिहान के इनेकाद से एक दिन कबल इस बात का इल्म हुआ और पेपर लीक मामले में मुलव्वस 3 मुबैना अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि

0: मुलाजमीन टीईटी के सवालनामे दिल्ली से लेकर आए थे और वो मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की मालियत के एक सौदे में उन्हें फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे। एक सुराग मिलने पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी की पुलिस ने एक जाल बिछाया और लेन देन तय पाने से कबल ही तीन मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने इतवार को होने वाले टीईटी के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस वाकये के सबब महाराष्ट्र भर में लाखों उम्मीदवारों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। मगरबी एशिया में 4 महीने से जारी महाजराई को खत्म करने के गरज से 2 हफ्ते पहले तय पाई कमजोर जंगबंदी को इंतहाई दबाव का सामना है। पिछले 48 घंटे में अमरीका और ईरान के दरमियान कई हमले और जवाबी हमले हुए हैं। हमलों ने जुमेरात के रोज उस वक्त जोर पकड़ा जब आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल जहाज पर किए गए ईरानी हमले के जवाब में अमरीका की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद तेहरान के बकौल आज खत्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन के खिलाफ उसका हमला एक दिफाई हमला था। दोनों ही मुल्क अबूरी माहदे की खिलाफवर्जी का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं जबकि अमरीका और ईरान दोनों ही जैसे को तैसा मुहावरे पर अमल करते हुए फौजी कार्रवाइयों के एक सिलसिले में मुलविस हो गए हैं जिससे 40 मुल्कों की सिफारती कोशिशों को खतरा लाहक हो गया है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खत्ते में आज शाम भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:04 पर 6.2 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया। जलजले के झटके भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत शिमाली भारत के कई हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा और जम्मू जिलों समेत मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। अहलकारों ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में साइंसदान संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि यह जलजिला अपनी नौयत के एतबार से मोतदिल था और इसके मरकज के नजदीक तवक्को है कि नुकसान भी काफी कम हुआ होगा।
1: जो गहराई है वो 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और इसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज गर्मी की पेशगोई की है। दिल्ली में कल आरजी तौर पर मतला अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। US ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में टाइटन जिम में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जूफू को 21-9, 12-21, 21-8 से शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल के लिए इस इम्कान को बरकरार रखा है कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आजादी की तकरीबात में मेहमान आजादी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेज और दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुद बोर्ड से मुतालिक मामलों के बाद अखलाक की बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका ज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को मिलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्य जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है
1: जी।
2: उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन
1: जी।
2: जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहाँ जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहाँ पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहाँ पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहाँ पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहाँ बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन सेस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प्स शुरू होके फिर वो जैगरोस यानी कि ईरान, इराक, और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदू कुश, और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा, और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही हैं या वो रुक रुक के जा रही हैं
1: जी।
2: अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही हैं तो यानी कि रुक रही हैं, इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है, और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है, तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो, इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है, और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है। लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं, कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है, और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी, तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं, जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप

नहीं आएगा। छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं, वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है, और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है, जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं। हम ही नहीं, सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है, साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि

0: टेबल है, तो मैं जरा देख लूँ इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है। अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊँ, बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूँ, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊँ। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं किसी सुरक्षित, जैसे पलंग है, बेड बहुत मजबूत होता है, आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं, तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर, उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है, ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और डेथ हो गई, तो उस घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें। जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहाँ आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से भेंटवार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
2: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है, क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
3: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
2: जी।
3: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
2: जी,
3: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
2: जी।
3: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में और उनकी जीवन शैली को सुधारने में और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहाँ पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था उस समय ये।

0: आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीब आवाज उसको रिले करता था
1: जी,
0: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
0: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गांव के सारे लोग सुनते थे उस टाइम
1: जी।
0: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट सुनाई देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गाँव में भी स्मार्टफोन है। जहाँ पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई हैं वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
0: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
0: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस आदमी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी। जी
0: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
0: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
0: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
2: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण पर, और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
3: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
4: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
3: जी।
4: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9 महीने 10 महीने प्रचुर मात्रा में

0: प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य की ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं। तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
1: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने में सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेट जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
2: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती हैं। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्त

0: हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा, और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। इसी चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता। आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अगर किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
1: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नैथानी, सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग, जी गोपाल रेड्डी कैंपस, गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
2: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
3: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत में आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
2: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर

0: हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की, जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुँच गयी। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरू प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगोगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक

0: सुपरहिट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केन्या और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Taleem from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्वरी से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला, विलंबित रचना झपताल और दुत रचना तीन ताल में निबद्ध है।
1: Today he is accompanied on tabla by Mustafa Hussain. Prabhat Mukhopadhyay begins his Santur recital with Rag Rageshri. He now presents Alap, Vilambit Lay composition set to Jhaptal, and Drut Lay composition is set to Teen Tal.

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय

0: समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Pätrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and two of them were gifted to the